लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना जिंदगी फिल्म से। 1964 रिलीज ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। नवजीवन नव सुबह का शुभ आरंभ, सुहानी भोर का पदार्पण, दूर कहीं से आ रही मुरली की आवाज, ऐसा सुंदर संयोग और उस भोर को और भी सुहाना बना देता है।

सुरैया की आवाज़ से सजी ये रचना दिल लगी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1949 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना।

पंडित जसराज की आवासी सजी ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। आशा उम्मीद का दामन थामे सुनते हैं ये रचना।

किशोर कुमार की आवाज़ से सजाई ये गीत मशाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना। आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

आशा भोसले की आवाज़ से सजा ये गीत पगला कहीं का इस फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। सवेरे के 5:53 और 42 सेकेंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दिए देते हैं आज के प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में।

छह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं 6:05 पर। कार्यक्रम अर्पण का प्रसारण समय रहता है 6:10।

6:44 पे आप सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड प्रसारित किया जाएगा भाग 5। 6:55 पर संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, हिंदी में समाचार 7 बजे और अंग्रेजी में समाचारों का वक्त 7:05 पर। गोल्ड सुप्रभात सुनेंगे आप प्रातः 7:10 पर। आज सवेरे सुनिएगा ये कार्यक्रम प्रातः 7:30 पर। हिंदी में समाचार प्रभात के तहत सुनिएगा प्रातः 8:00।

अंग्रेजी में समाचार मॉर्निंग न्यूज में 8:15 पर। उर्दू में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:45 पर। हिंदी में समाचार 9:00 और अंग्रेजी में 9:05 पर। ये था झरोका। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का कुछ कार्यक्रमों के बारे में हमने आपको जानकारी दी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Neena Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests, resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China in Beijing, and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Misri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India in China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Ho Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishuk, yesterday, following the attack on commercial vessel MV Omorphi, in which an Indian national was killed. Conveying its serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The ministry reiterated that such actions endanger the lives of innocent civilian seafarers, are unacceptable and must be avoided. The Ministry of Tourism has signed a memorandum of understanding with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the Ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F57 final in Glasgow last night. The victory saw India's medal tally reach 10 by the end of day 5, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. With a season best throw of 9.81 metres, Sharmila also made history as India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para athletics. The F57 classification is for athletes with lower limb impairments, limb deficiencies or reduced muscle power. In the same time, Shilpa K. Shaila was upgraded to the bronze medal, further boosting India's tally. In weightlifting, Valuri Ajay Babu produced a remarkable performance to win silver in the men's 79 kg category. And that is the end of this news bulletin.

जब हर ओर निराशा और अंधकार हो, तब श्री हनुमान का ध्यान ही असीम शक्ति, ऊर्जा और बल प्रदान कर देता है। भक्ति में अर्पण है जरूरी। आइए करते हैं अर्पण मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ।

अंजन माहे निरंजन करया, जोगी शिव का रूप धरया। संत कहते हैं कि जो अंजन यानी के सांसारिक माया के बीच रहता हुआ अपने भीतर के विकारों को मिटाकर निरंजन अर्थात पवित्र हो जाता है, वही योगी साक्षात शिव का रूप बन जाता है।

मीराबाई का पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम का प्रतीक रहा। सत्य भी है, मीराबाई के जीवन को देखकर प्रेम की दिव्यता का एहसास भी होता है और इसकी ताकत का भी पता लगता है। लिखा गया है, अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोए, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होए। ये वाणी सिखाती है कि जीवन में जो भी रिश्ता या काम हम चुन रहे हैं उसमें अपना पूरा दिल लगा दें। जब कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य को सींचते हैं तो अंत में आनंद की प्राप्ति होती ही है।

इस एक प्रभु का नाम जपते रहें, इस एक प्रभु को अर्पण करते रहें, तो देखें जीवन में कितना आनंद आता है। फिर शिकवे और शिकायतें नहीं होंगी, फिर केवल शुक्राना होगा। छह बजकर 30 मिनट और ठीक 28 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं अर्पण।

राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है अर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले वो जन है सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो साथ न जाने वाला है, राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है, राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव सौदा सच का सदा किया है संतों ने।

परमात्मा के होने का एहसास हमेशा बना रहे, हर क्षण ये साथ है ये विश्वास बना रहे। इसी कामना के साथ फिलहाल अर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत आपसे चाहेंगे। 6:44 और ठीक 22 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो ये था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

0: राम भावि योजनाश्च श्रुत्वा हर्षम अभिव्यक्तवान् तेनोक्तम् यत्तयोः ऊर्जा महत्वाकांक्षा सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अंतरिक्ष परितंत्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिंबयति। प्रधानमंत्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्या स्थितस्य राममंदिर न्यासाय प्राप्त दान राशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठारक्षक अधीक्षकः, एकश्च अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्यप्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषणदले पञ्चमसदस्यरूपेण न्यायिक लेखापरीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्वप्रथमस्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकं च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar's State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut of time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests resulting in the arrest of 13 persons. However, the state government has decided that no adverse legal action will be initiated by any of the police authorities within the state against those persons who have been involved in these protests. Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs in China, in Beijing and reviewed the entire gamut of bilateral relations. Mr. Mishri also discussed means of advancing the vision that India and China are partners. According to the Embassy of India and China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Mr. Mishri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The External Affairs Ministry summoned the Ukrainian ambassador to India, Dr. Oleksandr Polishchuk, yesterday following the attack on a commercial vessel MV OMORFI in which an Indian national was killed. Conveying a serious concern over the incident, the ministry condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring the adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation and international commerce. The External Affairs Ministry said in a statement that the ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels. The Minister of Tourism has signed a Memorandum of Understanding MOU with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. Under the MOU, the ministry and Air India will undertake joint promotional campaigns, co-branded destination marketing and tourism storytelling across digital and offline platforms. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F57 final in Glasgow last night. The victory saw India's medal tally reach 10 by the end of day 5, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. With a season best throw of 9.81 meters, Sharmila also made history as India's first ever Commonwealth Games gold medalist in para athletics. The F57 classification is for athletes with lower limb impairments, limb deficiencies, or reduced muscle power. In the same event, Shilpa Keshila was upgraded to the bronze medal, further boosting India's tally. India Meteorological Department IMD has forecast very heavy rainfall today over parts of Chhattisgarh, Odisha, Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Madhya Maharashtra, Punjab, South Interior Karnataka, Uttar Pradesh, Uttarakhand and coastal Karnataka. And that is the end of this news bulletin.

गुड मॉर्निंग गोल्ड सुप्रभात उन सभी को जो सूरज के पहली किरण के दीवाने हैं और सुबह की चाय के परवाने हैं। जी हाँ, मैं हूँ मुक्ता, आपके फेवरेट आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। हवा कुछ ठंडी है, अक्सर रिमझिम फुहार है और अब तो सावन की भी बस होने वाली शुरुआत है। तो इस सारे कॉम्बिनेशन के साथ कामना करते हैं एक सफल दिन की। जुड़े रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर।

यकीनन दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही होगी। हालांकि मेरे स्टूडियो की खिड़की से मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है। बूंदे देखने की कोशिश कर रही थी, वो दिखी नहीं, पर हालात पूरी तरह से बारिश के साथ ही हैं। जी हाँ, और आज तो वैसे भी दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट है। गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है और तापमान यकीनन इतनी बारिश के बाद कम तो होगा ही। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सूर्य दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन इसकी किरणें पहुंच रही हैं नीचे तक। सूर्योदय हुआ था सुबह 5:40 पर। फिलहाल बादलों ने ढका हुआ है, देखते हैं कौन जीतेगा आज। सूर्यास्त का समय आज शाम 7:14 का है और इतनी खूबसूरत मौसम में हल्की फुल्की हवा के साथ वायु की गुणवत्ता का स्तर भी सुधरा है, तकरीबन 100 के आसपास है। और अगर बारिश नहीं है तो ज़रूर निकलिए पार्क में और इतने खूबसूरत मौसम का आनंद उठाइए। देखिए ना, पंछी भी अपनी खूबसूरत आवाज़ों के साथ पार्क में आपका इंतज़ार कर रहे होंगे।

जी हाँ, आपकी प्रभात को गोल्ड सुप्रभात बनाने का प्रयास है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मुक्ता का। जी हाँ, 7:19 और ठीक हुए हैं 50 सेकंड। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

जी हाँ जनाब, अगर जीवन में ऐसी मोहब्बत मिले तो उसकी कद्र करनी सीख लीजिएगा, क्योंकि इस मोहब्बत से जीवन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। अच्छा, बारिश का वक्त है और ऐसे में बहुत मन करता है ना कि अच्छी तरह से खाए पिए, फ्राइड की क्रेविंग जो है वो लगातार होती है और फिर पकौड़ी खाने का मन करता है। लेकिन जनाब, लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि पकौड़े खा लिए जाएं, तो हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार तो फिर भी चल जाता है, लेकिन आप सोचते हैं कि कुछ नहीं है, चलिए अब बाहर से ऑर्डर किया जाए, तो ये है गलत। आपको हेल्दी रहना है तो जंक फूड को ना कहना ही होगा। जनाब, होम कुक फूड की बराबरी बाहर का खाना कभी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि घर का खाना फ्रेश होता है, ज़्यादा हाइजीनिक होता है। अब आप मेन्यू में से डिसाइड करते हैं ना, नहीं ये तो लाइट है, खा सकते हैं, पैक्ड फूड है तो वो लाइट नहीं है। अपने घर के किचन के महत्व को जानिए, उसकी कद्र करना सीखिए।

कहीं जाने नहीं देंगे आपको। आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ ही। अभी आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात और अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। 8:45 पर म्यूजिकल दिल लगी लिए फिर से करेंगे आप और हम मुलाकात।

0: नमस्कार सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही है मेरी सहयोगी नीना अरक्कल। सुबह के 7:30:30 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1। इस समय मुझे कासिर नाज़मी का एक शेर याद आ रहा है, वक्त अच्छा भी जाएगा नासिर, वक्त अच्छा भी जाएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। जी हाँ, वक्त का सफाक बहाव ही जिंदगी को नित नई सूरतों से दो चार करता है। कभी सूरत खुशगवार होती है और कभी तकलीफ दे, तो दोनों सूरतों में वक्त को अपनाएं, घबराएं नहीं और जिंदगी को जीने की नई वजह दें। क्यों नीना?
1: Yes, Farah, time doesn't ask permission, it just moves. So the question is, are you moving with it or letting it move past you? Hello, Farah. And a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 28th of July 2026.
0: बिल्कुल नीना, और आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। विश्व हेपेटाइटिस डे है आज और दूसरा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति को बचाना है और क्या क्या उपाय इसके लिए किए जा सकते हैं। लेकिन आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य समाचारों से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिक आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरैक्टेड विद पवन चंदन एंड नागा

0: कहा है कि ये दावा बिल्कुल निराधार है। इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
1: The National Democratic Alliance, NDA, parliamentary party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 21st of this month when Prime Minister Narendra Modi had called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. The Prime Minister had also reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth.
0: पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: Foreign Secretary Vikram Misri met with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China, and reviewed the entire gamut of bilateral relations in Beijing. Foreign Secretary Vikram Misri, who is on China visit, also discussed means of advancing the vision that India and China are partners and development opportunities for each other, including through mutually beneficial outcome across trade and economic ties. According to the Embassy of India and China, both officials also acknowledged the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. Earlier in the day, Secretary Misri discussed ways to enhance bilateral exchanges between India and China at the political and people-to-people levels during his meeting with Hong Liang, Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC, in Beijing. The embassy noted that they also discussed ways to enhance bilateral exchanges at the political and people-to-people levels. India's ambassador to China, Vikram Doraiswamy, was also present during the meeting.
0: पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ।
1: The 16th Hockey India Junior Men National Championship 2026 began this morning in Coimbatore, Tamil Nadu. The tournament features country's finest junior men's hockey teams who compete over 12 days till 8th of August to decide the national champions. Action on the opening day began with Assam taking on Mizoram in a Division C Pool A match. A total of 30 teams are participating across Division A, B and C, with promotion and relegation adding further significance to every fixture. Speaking ahead of the championship, Hockey India President Dr. Dilip Tirki said the tournament continues to play a crucial role in strengthening India's hockey ecosystem by providing young players with a highly competitive platform to showcase their abilities. Hockey India Secretary General Bholanath Singh added that the Junior Men National Championship is an important step in the development pathway for aspiring hockey players across the country.
0: और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की कर लेते हैं। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी भी बनी। भारतीय हाई जम्पर सर्वेश कुशारी ने स्कॉटस्टाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जम्प स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके अलावा भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक जीता, जिससे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए एक और शानदार दिन रहा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुक करेंगे महानगरों की खबरों का। तो नीना, सबसे पहले क्या है चेन्नई में खास?
1: Yes, Farhat, from Chennai, Muthupandi Raja, who won a silver in the 65-kilogram category Commonwealth Games, is the son of a daily wage labourer parents. Muthupandi and Pechiamal, he belongs to Sankaralingapuram village in Tuticorin district. His brother Suresh is also a national-level lifter for company. It

0: It was a tough time for the parents since they had to take loans from villagers for the sake of their children. He kept working hard to come up to this stage. And Farhat, this is a great achievement from the background that he's coming. And what do we have from Delhi now?
1: जी, दिल्ली में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संग्रहालयों से जुड़ी समझौते से जुड़ी खबर से। नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA राजधानी की रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 लाख देसी पेड़ और 81,700 झाड़ियां लगाई जाएंगी। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलाश और खेजड़ी जैसे प्रजातियां भी शामिल हैं। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है।
0: सो दैट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। एंड नाउ वी मूव टू बेंगलुरु। Karnataka Chief Secretary Dr. Shalini Rajneesh has emphasized that AI must go beyond urban centers and reach every talented youth in rural areas for a genuine development of the country. She was speaking at the inaugural of the Rural Shores AI Skilling and Experience Center organized at Satya Sai Gram near Chikkabalapur. She advocated infusion of AI with compassion, ethics and values to enhance human intelligence with virtues. She felt that setting up an AI skilling center in a rural area is a sacred and service-oriented decision. She appreciated the role played by Rural Shores organization and Sadhguru Madhusudan Sai in stemming migration of rural youth to urban areas in the last 18 years by creating local employment opportunities. She informed that the organization has trained over 30,000 young men and women in different skills. The Chief Secretary also praised them for establishing India's first completely free rural medical college.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र पालघर जिला प्रशासन ने जुलाई की शुरुआत में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 170 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया है, जिसमें सड़क, पुल और लोक निर्माण विभाग के अन्य बुनियादी ढांचे शामिल हैं। जिले में जुलाई के पहले सप्ताह और फिर से 22 से 24 जुलाई के बीच भीषण बाढ़ आई, खासकर बसई, विरार, पालघर, केलवे और सफाली में, जिससे हजारों घर, घरेलू सामान और पशुधन क्षतिग्रस्त हो गए। जुलाई की शुरुआत में हुई बारिश में 20 लोगों की जान चली गई, जबकि हालिया बारिश में 3 लोगों की मौत होने की खबर है। प्रशासन ने बताया कि नुकसान का आकलन और मुआवजे का वितरण तेज कर दिया गया है। बाढ़ से प्रभावित 7,469 परिवारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। वहीं मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े ने कल मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के साथ बैठक के दौरान महापौर चिकित्सा सहायता कोर्स से पंजीकृत डब्बा वालों के लिए 25,000 रुपए की चिकित्सा सहायता की घोषणा की। महापौर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि बृहन्मुंबई नगर निगम एसोसिएशन की मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
0: मूविंग फ्रॉम Mumbai to Hyderabad now. Telangana Chief Secretary Sanjay Jaju visited major industrial hubs in E-City and Maheshwaram yesterday to review state industrial growth and employment generation. Accompanied by TGIICVC and MD Shashank alongside senior government officials, the Chief Secretary inspected several high-profile manufacturing facilities across the clusters. The visit included Premier Energy's photovoltaic, solar module plant built with an investment of 1,240 crore rupees, employing 1,200 people, and Avantel Limited, a defense electronics and satellite equipment unit set up at 59.22 crore rupees. Commending the state's ongoing initiatives to boost local employment and secure commercial investments, Chief Secretary Jaju directed officials to further accelerate industrial development across Telangana.
1: तो तो श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। नीना, कल रात में हल्की बारिश का मौसम बना था, कुछ जगहों पर बारिश भी हुई थी, लेकिन कुछ जो जगह हैं वो अधूरे रह गए थे। लेकिन आज हो सकता है बारिश पूरी हो जाए, क्योंकि आज मौसम विभाग ने अधिकतम बारिश का अनुमान लगाया है। दिन में बारिश तेज हो सकती है, न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मुंबई में आप जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है और वहां पर अभी भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता की बात की जाए तो आज हल्की बारिश की वहां पर संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: वेदर न्यूज फ्रॉम चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 29 degree and maximum 39 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degree while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 23 degree to 30 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, आज 28 जुलाई 2026 है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको शुरुआत में बताया था कि आज विशेष महत्व है, महत्वपूर्ण दिन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज ही के दिन 1925 में हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारूक ब्लम्बर्ग का जन्म हुआ था, और इसीलिए आज के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
0: वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व today globally. This day is an opportunity to step up national and international efforts on hepatitis, encourage actions and engagement by individuals, partners and the public, and highlight the need for a greater global response as outlined in the WHO's Global Hepatitis Report of 2017. The theme for this year is Hepatitis, Let's Break It Down, focusing on removing financial, social and healthcare barriers to reach the 2030 elimination goals. The date of 28 July was chosen because it is the birthday of Nobel Prize winning scientist Dr. Baruch Bloomberg, who discovered hepatitis B virus, HBV, and developed a diagnostic test and vaccine for the virus.
1: और अब बात कर लेते हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। ये दिन प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव जंतु और वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, जंगलों को ना काटें, इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके अलावा जमीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तब ही करना चाहिए जब उसकी जरूरत हो, और कार्बन जैसे नशीले गैसों का उत्पादन बंद होना चाहिए। उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण भी करना चाहिए। जमीन के पानी को फिर से स्तर पर लाने के लिए वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी आप इसके संरक्षण की ओर ध्यान दे सकेंगे। और इसके अलावा प्लास्टिक के लिफाफे छोड़ने चाहिए हमें, और कागज के लिफाफे या कपड़े के थैले भी जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये हमारे संरक्षण में जो है योगदान देगी। इसके अलावा वनों के घटने से वन्य जीव और इंसानों के करीब आ रहे हैं, जिससे संघर्ष और जूनोटिक वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो ऐसे में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने प्रकृति को बचाने के लिए करनी होगी, और ये सिर्फ एक शख्स की जिम्मेदारी नहीं, यानी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है।
0: क्यों नहीं? Yes, of course, every citizen, every human on this earth, he or she has to take care of the environment, and moreover, it's very easy to pollute the river. It's very easy to cut the trees. But imagine a tree takes hundreds of years to grow.
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम हर दिन जो है वो कोई ना कोई एक छोटा पौधा जरूर लगाएंगे जो हमारे भविष्य में आगे चलकर हमें ही फल देगा।
0: Definitely.
1: तो आइए अब हम अंत में बढ़ते हैं, कुछ जानी मानी शख्सियतों को याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रही हैं महाश्वेता देवी की। भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। उन्होंने ने बांग्ला भाषा में बेहद संवेदनशील और वैचारिक लेखन के माध्यम से उपन्यास और कहानियों से साहित्य को समृद्धशाली बनाया। अपने लेखन कार्य के साथ साथ महाश्वेता देवी ने समाज सेवा में भी सदैव सक्रियता से भाग लिया और उसमें पूरे मन से लगी रही। स्त्री अधिकारों की बात हो या फिर दलितों की या फिर आदिवासियों के हितों की, उन्होंने हमेशा उस व्यवस्था से संघर्ष किया और इनके लिए सुविधा और न्याय का रास्ता बनाती रही। 1996 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
0: On 28 July 1914, World War I began as Austria-Hungary

0: declared war on Serbia. On 28 July 1858, the fingerprint was first used for identification by Sir William James Herschel.
1: और एनीना, आपको आलू तो बहुत पसंद होगा मुझे लगता है.
0: श्योर.
1: जी, तो आपको बता दें इतिहास में इस पे भी एक घटना जिक्र का है.
0: स्पेशली इन द रेनी सीजन
1: आलू के पकौड़े. जी, 1586 की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड से वापस लौटने पर सर थॉमस हैरियट ने यूरोप को आलू के बारे में परिचित कराया था. तो ऐसे में जो है इसकी शुरुआत हुई.
0: In 1821, Peru declares independence. The Peruvian War of Independence against Spain began in 1811 and ended with a declaration of independence under the leadership of José de San Martín. In 1851, the first photograph of a total solar eclipse was made on 28 July 1851. The first photograph of a total solar eclipse was made. The photograph was a daguerreotype, had a 24-second exposure and was taken by Herr Barkowski and Königsberg, Germany. At the next opportunity, at the 1860 eclipse, photographs obtained by
1: और जी नीना, और अब बात कर लेते 1741 की. कैप्टन बेरिंग ने माउंट सेंट एलियास अलास्का की खोज की. 1821 में पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की. 1866 की अगर बात की जाए तो अमेरिका में मापने की मीट्रिक प्रणाली को वैधानिक मान्यता मिली थी आज ही के दिन. 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी. और 1914 की बात की जाए तो SS कामागाता मारू को वैंकूवर से निकाला गया और भारत रवाना किया गया था.
0: And now we move into the section of our birth and death of famous personalities, Farah.
1: जी बिल्कुल. और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध सहायक अभिनेताओं में से एक इंद्र कुमार, यानी इंदर कुमार की. भारतीय हिंदी सिनेमा में इनका काफी योगदान रहा. इन्होंने 20 से भी अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. इंद्र कुमार ने 1996 में फिल्म मासूम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी.

0: उन्होंने अभिनेता सलमान खान के साथ तुमको ना भूल पाएंगे और कहीं प्यार ना हो जाए जैसी सफल फिल्मों में भी काम किया।
1: Alfonso of the Immaculate Conception, born Anna Muttupudathu in Kerala, holds a special place in Indian history as the first woman of Indian origin to be canonized as a saint. Joining the Franciscan Clarist congregation at a young age, she dedicated her life to teaching and spiritual service. What makes her story remarkable is not just her devotion, but her resilience. Alfonso endured immense physical suffering throughout her life, yet she remained cheerful, radiating faith and compassion. Her canonization by the Catholic Church was a recognition of her extraordinary strength and unwavering spirituality. Today, she is remembered as a symbol of hope and perseverance, inspiring millions across the world to find joy even in adversity.
0: और श्रोताओं, अब हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके नाम 144 अलग अलग फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर बनने का रिकॉर्ड है। इससे पहले कि हम उनका नाम बताएं, आइए ये सुन लेते हैं।
2: आप हिरासत में हैं, मैं सब सुन चुका हूँ। अभी अभी आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है।
3: तो मुनीम जी यहाँ बैठते थे
4: जी,
3: तो और कोई नहीं था वहाँ पे?
4: जी नहीं
0: जी। तो हम बात कर रहे हैं जगदीश राज खुराना की। हिंदी फिल्मों में ये प्रसिद्ध अभिनेत्री अनीता राज के पिता थे और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इनकी लोकप्रिय फिल्मों में दीवार, डॉन, शक्ति, मजदूर, ईमान धर्म, गोपीचंद जासूस, सिलसिला और आईना जैसी फिल्में शामिल हैं। और बताया जाता है कि जगदीश राज ने पुलिस इंस्पेक्टर किरदार निभाते निभाते खुद भी पुलिस की वर्दी सिलवा ली थी और जब भी किसी फिल्म को लेकर बात होती, डायरेक्टर उन्हें फोन करते तो वो सीधे वर्दी पहनकर पहुंच जाते, क्योंकि उनको ये आभार खास हो चुका था कि उन्हें जो ज्यादातर जो रोल हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर के ही मिलने वाले हैं।
1: Richard Wright, the quiet architect of Pink Floyd's sound, was born in Middlesex in 1943. As the band's keyboardist and vocalist, he shaped iconic albums like The Dark Side of the Moon and Wish You Were Here. Wright's jazz influences and improvisational flair gave Pink Floyd its atmospheric depth, even though he often stayed away from the spotlight. His journey wasn't without challenges. He left the band in the early 80s, but returned later, contributing to The Division Bell and The Endless River. Overshadowed by bandmates Roger Waters,

और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री कुमकुम, जिनका असली नाम था जेबुनिसा खान। उन्हें आंखें ललकार, मदर इंडिया, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, दिल भी तेरा हम भी तेरे, सन ऑफ इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, श्रीमान फंटूश, एक सपेरा, एक लुटेरा, गंगा की लहरें, यानी बहुत सारी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। अपने युग की कई फिल्मी नायिकाओं के साथ ये जोड़ी गई और किशोर कुमार के साथ भूमिकाओं में काफी लोकप्रिय रही। कुमकुम की खोज गुरुदत्त ने की थी। गुरुदत्त को अपनी फिल्म आर पार के लिए कभी आर कभी लागा तीरे नजर गाना फिल्माया था और बाद में कुमकुम को प्यासा में एक छोटी सी भूमिका में देखा गया। इसके अलावा सीआईडी का प्रसिद्ध गीत ये है बॉम्बे मेरी जान, गीता दत्त द्वारा ही गाया गया, उन पर ये फिल्माया गया था। तो हमने उन पर एक मेडली तैयार की है, आइए श्रोताओं को सुनवा देते हैं।

और श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का का। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर की अंजलि हो या फिर अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी में नेहा का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया। उनका जन्म आज ही के दिन 1972 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ। आयशा ने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कदम रखा। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म कैसे कैसे लोग में और उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके अलावा 1990 में तेलुगु फिल्म नेति सिद्धार्थ से लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और 1992 में रिलीज हुई जो जीता वही सिकंदर ने आयशा की किस्मत बदल दी। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई और फिल्म का गाना भी काफी लोकप्रिय हुआ। तो आइए सुन लेते हैं उसी फिल्म का ये गीत।

0: तो इसके साथ ही अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। और अगर आप राजधानी दिल्ली में हैं तो हम आपको बता दें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज कविता पाठ का आयोजन किया जाएगा। देश भर के कलाकार यहाँ पर कविता की प्रस्तुति देंगे।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया।

0: लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन

0: प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की, विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स इंडियाज ग्रोइंग प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, मीट स्काईरूट एरोस्पेस फाउंडर्स आफ्टर विक्रम 1 सक्सेस। Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
6: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
5: Bihar and Assam governments have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protest over NEET examination. Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
7: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices

0: Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. After protest, Parliament to debate tougher paper leak bill, leads Hindustan Times. Pradhan resignation fails to break Parliament logjam as opposition blocks business, headlines the Statesman. The Pioneer, in its editorial piece, A Digital Fix for a Crisis of Trust, says restoring trust in examination system demands a secure and tamper-proof architecture, and who better than Nandan Nilekani to help build it. India's weightlifters continue to do the heavy lifting, bring home three more Commonwealth Games medals, reports Hindustan Times. Kiyoko Higashino, who made Japanese crime fiction a global obsession, dies at 68, reports the Indian Express. And finally, the Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का अहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्ट पुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नागभारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दिगर दिलचस्प मौजूदात पर खासतौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाज़े फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तई नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी।
3: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी

0: के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतल्लिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदु किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदामात के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्व सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवियत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के ज़ेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि यह टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मरबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिश्री ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तिजारती और इक्तिसादी रबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिश्री ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के रबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔

0: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने, जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौ इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिनहा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने आज पेरू के यौम आज़ादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तिजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तिजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदे जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेट लिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेट लिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी, जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे, जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया गोनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की 6 सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाक़े पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। अखबार इनकलाब ने ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामेनाई

0: इस बयान को अहमियत दी है कि अमन मुआहदा लबनान पर इसराइली हमलों के खात्मे से मशरूत। अखबारात की दीगर अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, गिरफ्तारी के वारंट के बावजूद नेतन्याहू अमरीका रवाना।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इयादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

बहुत खूबसूरत और बेहद मासूम है ये दिल। इसके सुन लेने में कोई बुराई नहीं है जनाब, क्योंकि ये दिल सिखाता है प्यार करना, वो प्यार जो जीवन को आसान ही नहीं सुंदर भी बना देता है। इसीलिए कहते हैं कीजिए थोड़ी दिल लगी। फिलहाल संगीत के साथ म्यूजिकल दिल लगी लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मंगल की मुक्ता है आपके साथ।

कितना अधूरा लगता है तब, जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो।

8:53 और ठीक 50 सेकंड सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। दोस्त, जिंदगी को बैलेंस करके चलना भी एक कला है। खुद को देखें, रिश्तों को समझें, समाज का ध्यान रखें या फिर अपने काम पर फोकस करें, इन सब को मैनेज करके जो चल लेता है ना, वो अपनी लाइफ को सुकून से भर लेता है, है ना। शुरुआत सुबह से की जा सकती है। बहुत एनर्जी है सुबह के वक्त, भाग दौड़ शुरू हो चुकी है, हमें पता है। लेकिन दोस्त, उठने के बाद खुद को 15 मिनट कम से कम जरूर दीजिए और अपने डे को सॉर्ट कर लीजिए। ईश्वर का शुक्रिया, गहरी सांस और फिर आज के 3 दिन के काम, आज के जो 3 इम्पॉर्टेंट काम है जो सबसे जरूरी है, उन्हें लिख लीजिए पेपर पर। उन पर फोकस करके उन्हें निपटाने में दिन भर प्राथमिकता दीजिए। छोटे छोटे बेहतर बदलाव को आदत बनाया जा सकता है। जानते, एक स्कॉलर कहते हैं कि हम अपनी आदत जैसा ही बन जाते हैं, और अच्छी आदत बनाना आसान नहीं है। लेकिन याद रखिए, हमारी आदतें मायने रखती हैं, क्योंकि वो हमें वैसा बनाने में मदद करती हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। धीरे धीरे ही सही शुरू करके तो देखिए, बदलाव होकर रहेगा।

0: ऐसे ही खूबसूरत संगीत का आनंद लेते रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आज के दिन के मौसम को जरूर जरूर इंजॉय कीजिए। यह वक्त दोबारा नहीं आएगा। इंदु के साथ म्यूजिकल दिल लगी रहेगी जारी, लेकिन उससे पहले हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
2: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक, जिसे मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती हैं, जिसका उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में निहित है। श्री मोदी ने संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि राष्ट्र की परंपरा सभी को इस नेक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है और हमारे संस्कार भी हमें इसी धर्म सम्मत आचरण की प्रेरणा देते हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ और कांस्य पदक जीतने पर शिल्पा के शायला को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अर्केल। The National Democratic Alliance, NDA, parliamentary party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on 21st of this month when Prime Minister Narendra Modi had called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. The Prime Minister had also reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in recent NEET examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India NCPI, have also been invited to attend the alliance meeting. Bihar and Assam governments have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over NEET examination. Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. More from our correspondent.
3: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period will be initiated immediately. The government has also announced that all persons arrested or detained in connection with these cases will be released at the earliest. It has further clarified that no direct or indirect action will be taken against the individuals named in these cases in future. Savita Parikh, Akashvani Samachar, Patna.
4: Assam government has also decided to withdraw all criminal cases registered in connection with NEET protests. Authorities have also been instructed to review all arrests and detentions made in connection with these cases and expedite the release of the arrested persons. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandan and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Ministry of Tourism has signed a Memorandum of Understanding with Air India to promote India as a preferred global tourism destination under the iconic Incredible India brand. The agreement was signed in New Delhi in the presence of Union Tourism and Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat. The collaboration aims to leverage Air India's extensive domestic and international network along with the Ministry's destination promotion initiatives to enhance India's global tourism visibility. India and China have reaffirmed the importance of maintaining peace and tranquility along border during Foreign Secretary Vikram Misri's meeting with Hua Chunying, Vice Minister of Foreign Affairs of China in Beijing yesterday. The discussion between them focused on strengthening bilateral ties, expanding exchanges and advancing cooperation in trade, culture and people-to-people relations. They reviewed the entire gamut of bilateral relations. They discussed ways to advance the vision of the two leaders that India and China are partners in development. In the Commonwealth Games, India's Sharmila Dhankar clinched the nation's second gold medal, winning the women's shot put F57 final in Glasgow last night. This victory saw India's medal tally reach 10 by the end of day 5, including 2 gold, 5 silver and 3 bronze. President Draupadi Murmu has congratulated Sharmila Dhankar on winning the gold medal in the women's shot put F57 event at Glasgow Commonwealth Games 2026. And that is the end of this news bulletin.

हमें तो लगता है कि कह देने में ही भलाई है, क्योंकि जहाँ पे बात है वहीं पे बात थम जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर समझ में आ ही जाएगी, है ना। हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई बात कह देने में लगता है कि सुकून है, और चुप रहने में आदमी अपने अंदर ही कुछ न कुछ होता रहता है। अब भला ये भी कोई बात हुई कि आपने कुछ कहा नहीं और हम आपका इशारा भी समझ जाएं, ये तो टू मच है ना।

वैसे तो मौसम ने इशारा कल शाम ही कर दिया था कि भाई देखिए घर से निकलेंगे तो मौसम का पता करके चलिएगा, लेकिन फिर भी हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि जब बारिश होती थी तब हम छाता लेके नहीं आ पाए और जब बारिश नहीं होती थी तब छाता लेके आते थे, ये सोचते हुए कि चलो कम से कम छाता धूप में ही काम आ जाएगा। लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दिस, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने आप को हम कितना खुश पाते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन में जो ऊपर वाला हमारे लिए तैयार करके रखता है, यही तो है जिसे हम प्यार कहते हैं।

पल पल दिल के पास, क्या आपके पास भी है काम, कॉफी या चाय, या फिर नींद में उलझा हुआ हमारा दिल दिमाग? अगर हाँ, तो फिर इस पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसी चीज़ पे रिसर्च की गई है कि भाई दिन भर आखिर हमारे दिमाग में चलता क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं खाने पीने की। हम क्या खाएं, पकौड़ा खाएं कि नहीं खाएं, चाय पिए कि नहीं पिए, कॉफ़ी पिए कि नहीं पिए। फिर दूसरी तरफ चलता है कि भाई बहुत थकावट है, बहुत सस्ती है, अब क्या होगा। और 50% लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें जो ना सोची जाए, लेकिन फिर भी अनवांटेड चीज़ें आ ही जाती हैं हमारे आसपास। तो कुल कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सोच है उस पर क्या हमारा कंट्रोल है, ये तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा ना। यह है म्यूजिकल दिल लगी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपका साथ हमारा साथ बना रहे, यानी कि गानों के साथ है, तो फिर रुकी रुकी सी जिंदगी भी झट से चल पड़ती है। यकीन नहीं होता, बने रहिए और फिर उसके बाद आपको ये महसूस होगा।

लेकिन कुछ चीजें हमें बड़ी हैरान करती हैं और तब हम सोचते हैं कि क्या ये नसीबों का खेल है। तो कुछ हैरान करता है वो ये है कि जब आपको पता चले कि हमारे यहाँ गधों की संख्या अब कम हो रही है, तब आप क्या कहेंगे?

वैसे हम जब हैरान होते हैं तो मानिए ना मानिए कुछ तो ऐसा होता है कि जल्दी से ऐसा लगता है कि सब कुछ जाग गया। तो फिर हैरान करने वाली एक बात ये भी है कि हम सबको घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस घूमने के साथ एक नई चीज़ जुड़ गई है, और वो ये है कि आजकल पता है छुट्टियों की जगह चुनने के लिए लोग सिर्फ समुद्र, पहाड़ और ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। वो देखते हैं कि हमारी जो जन्म कुंडली है उससे कौन सी जगह मैच करेगी, और इस टर्म को एस्ट्रोकार्टोग्राफी कहते हैं। अनोखी है, अब रेखाएं बताएंगी कि दुनिया के कौन से हिस्से में, किस दिशा में हमको कब जाना है। अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जितना मस्त होके रहें, नेचर के पास रहें, और उतना बेफिक्री आती है और अपने आप ज़िंदगी चलती चली जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है

0: आप माने या ना माने, लेकिन अभी भी हमें जरूरत पड़ती है बार बार ये देखने की कि आखिर वक्त क्या हुआ है। तो हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 9:40 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे ये है म्यूजिकल दिल्लगी।
1: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

तो फिर थोड़ा सा रुकना है और रुक के ये सोचना है कि हम जो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो और शामिल करनी चाहिए। तो मेट्रो के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए जो चलेगा 14 अगस्त तक। ये सर्वे में आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी जो भी आपका कहना है, मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं तो अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी और आपकी बेहतरी के लिए हैं, है ना। म्यूज़िकल दिल्ली है ये। और अगर मैं आपको बोलूँ तो फिर ये बात है कि मथुरा और आगरा कैंट पर अस्थाई ठहराव हो चुका है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है कि हज़रत निज़ामुद्दीन से मदुरई जाने वाली गाड़ी को मथुरा और आगरा कैंट स्टेशन पर आगामी 31 जुलाई तक अस्थाई ठहराव दिया गया है। तो ये जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उनको भी ये सारी चीज़ें जान लेनी है। और फिलहाल तो जब आप घर से निकलें तो ट्रैफिक का ज्ञान थोड़ा सा अगर मिल जाए तो फिर अच्छा लगेगा।

अब जब ट्रेन की बात पता चली है तो फिर एक बात और हम आपको बता दें कि हरिद्वार के लिए चलेगी विशेष रेलगाड़ी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली शाहदरा से हरिद्वार के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या है 04314। हरिद्वार से आगामी 30 जुलाई से 13 अगस्त तक दोपहर 3 बजे। लेकिन फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसको एक बार आप रीचेक जरूर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको शौक है फोटोग्राफी का तो फिर उत्सव के लिए 15 अगस्त तक अपनी जो फोटोग्राफी है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी काबिलियत है। वो ये कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 24 से 26 सितंबर तक होने वाले 7वें नदी उत्सव के तहत यमुना पर विशेष फोटो प्रदर्शनी लगेगी। आयोजकों ने लोगों से 15 अगस्त तक यमुना की तस्वीरें भेजने की अपील की है, जिसमें आप जा सकते हैं और जा करके आप अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं उस पर वहाँ पर दे भेजिए और फिर बताइएगा आप हमें कि हाँ आपकी कौन सी फोटोग्राफ्स थी। और म्यूजिकल दिल्ली का साथ आपके साथ यूं ही बना रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। तो ये जो सफ़र है आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर।

जरा रुकी तो सही, अभी कुछ और भी है आपको बताना। क्या आप जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में? तो ये केंद्र सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी देश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी राशन की दुकान से अपने हक का राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अगर जानना चाहते हैं तो पता कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे म्यूजिकल दिल्ली है, ये 9:56 हो चुके हैं और मैं आपके साथ हूँ और हमारे साथ है ये इतना अच्छा गानों का सिलसिला जो हमें काफ़ी सूदिंग एहसास दिलाता है और ये कहता है कि जिंदगी की सरगम चाहे कैसे भी हो गुनगुनानी तो पड़ेगी जनाब, है ना?

तो हैं जो हमें चलने पे, दौड़ने पे या फिर कुछ सोचने के लिए हमेशा इंस्पायर करती हैं। और म्यूजिकल दिल्लगी का साथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। वक्त होने वाला है 10, जो समय है समाचारों का। मिलती हूँ इसके बाद फिर से आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम वन, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम के राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चेन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापक तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के बीच वार्ता का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा के दौरान दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन प्रक्रिया के विस्तार, लंबित सीमा विवादों के समाधान और पिछले महीने दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित ढांचागत समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में निहित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़

0: Hepatitis Day is being observed today. Globally, the theme for the year is hepatitis. Let's break it down. Focus on removing financial, social and healthcare barriers to reach the 2030 elimination goals. The date of 28 July was chosen because it is the birthday of Nobel Prize winning scientist Dr. Baruch Bloomberg, who discovered hepatitis B virus and developed a diagnostic test and vaccine for the virus. World Nature Conservation Day is also being observed today globally to raise awareness about protecting nature. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काईरूट के संस्थापकों से की मुलाकात। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम-1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम-1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम-1 की सफलता की सराहना की थी।
2: विक्रम-1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमता मजबूत करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारम्भ किया। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
3: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत

0: मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविंद्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक रिपोर्ट।
2: पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, जो अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया। प्रतिद्वंद्वी दलों के समर्थकों के बीच झड़पों के कारण कुछ केंद्रों पर मतदान कुछ समय के लिए बाधित रहा। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है, जबकि संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने JAAC के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक में अशांति रही। विश्व दर्पण समाचार के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शरण प्रणाली में बदलाव किया है, ताकि आवृजन अधिकारी कुछ आवेदनों को साक्षात्कार लिए बिना ही आवृजन न्यायाधीशों के पास भेज सकें। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस कदम से लंबित आवेदनों की संख्या में भारी कमी आएगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के बीच वार्ता का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा के दौरान दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन प्रक्रिया के विस्तार, लंबित सीमा विवादों के समाधान और पिछले महीने दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित ढांचागत समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रोम में होने वाली बैठक में इसराइल और लेबनान के तकनीकी समूह शामिल होंगे। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हेपेटाइटिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने, व्यक्तियों और आम जनता को कार्रवाई तथा भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे खत्म करें। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

कहते हैं कि वाकई में हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी के हर सफर में जब इंसान की कोशिश लक्ष्य के रूप में तब्दील हो जाती है तो हर पल ऐसा लगता है कि हम भाग रहे हैं। हाँ, और उसी भागती हुई जिंदगी में जब थोड़ा सा पल हम रुक के आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़ते हैं तो फिर दिल का मेल बॉक्स अपने आप फिल हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी चॉइसेस हैं कि हमें फला टाइम में फला गाना क्यों अच्छा लगता था, वो पूरी की पूरी कहानी याद आ जाती है और उसी को लेकर के हम हाजिर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ FM गोल्ड पे। तो ये रहा आपका गीत, फिल्म का नाम है इश्क, 1997 में आई थी और मेरा नाम बड़े सारे लोगों ने पूछा है, बताऊंगी ना, सुनते रहिए

वैसे दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन जो गाने हमारी जिंदगी में आते हैं उसके पीछे की कहानी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दुर्गा कालोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, आपका गाना बस हमने तैयार करके रखा है। लेकिन उससे पहले ये भी हैं, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी, हरियाणा झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीता रजत मयंक, कोई भी सदाबहार गीत, भाई कोई भी नहीं, हर गीत सदाबहार है, हर गीत अनमोल है और नगीना है हमारा। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है दिल का मेल बॉक्स। और वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष, और हमें कहते हैं कि भाई रह रहकर जब किसी की याद है तो फिर आती है तो फिर बेचैनी बढ़ जाती है, दिल की आवाज़ जब किसी अपने को पुकारने लगती है तो फिर यही तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो गाने हैं ना, असल में ये हमारे दिल की आवाज़ ही हैं और कुछ नहीं। अब इसको आप किस तरह से कितना समझते हैं ये तो हर एक की काबिलियत पर डिपेंड करता है ना।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: मुलाकात का तोहफा दीजिए, कहने को बहुत कुछ है, कुछ भी न कहा फिर भी फकत शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये तो शील ने हमें मेल किया है। ये है दिल का मेल बॉक्स। मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे।

और दिल का मेल बॉक्स खुल गया हमारे लिए। मधु किरण कहती हैं कि भाई देखिए सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन आपका नाम समझ में नहीं आता है, तो मैंने अपना नाम बता दिया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो छोटा नाम होता है ना, कब आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ है, इन्होंने एक लंबी लिस्ट हमें भेजी है, कहते हैं कि इसमें से कोई भी गाना बनवा जी आप सुनवा दीजिए। तो फिर आपने अपना गाना सुन लिया होगा। अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक, आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से, और इसके अलावा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। थैंक्स करते हैं अग्रसेन यादव, शकुंतला, गरिमा नई दिल्ली से, शिवाजी चौक कटनी से, अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जक जैन और लालू, सोना, मोना, हनी। यस, मतलब यस नाम है एक्चुअली। नमस्ते करते हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु और इनका गाना है हमारे पास। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा हमको लगातार सुन रहे हैं। राम शरण विश्वकर्मा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। तो फिर हम भी तो आपसे यही कहते हैं कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। यूं ही सफ़र चलता रहेगा। और ये है गाना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में आपके लिए।

दिल से नहीं जाता, ये बात मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ कि जिनके नाम और जिनके सॉन्ग्स हम नहीं शामिल कर पाए, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि भाई आपका नाम कहीं गायब तो नहीं हो गया, बिल्कुल हमारे सामने रहता है और आपकी जो चॉइसेस हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत ही शानदार हैं। और इन सब बातों को लेकर के हम हमेशा इसके लिए बहुत ही सतर्क रहते हैं कि सबके नाम, सबकी जो चॉइस हैं वो हम प्ले कर सकें और बता सकें कि नहीं देखिए आपकी जो बात है वो है हमारे पास। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रा, रोजी, पर्ल और विलिस हैं। मेरा नाम स्वरूप आनंद है, श्रजल जोड़ा पीपली अंबिकापुर सीजी से, और इन्होंने गाने की जो फरमाइश भेजी है वो आई एम श्योर आपने सुन ली होगी। मजनू कटीला से कमल, मधु, सागर हैं, और सतना एमपी से उमंग मलिक हैं, आकांक्षा मलिक हैं, माही मलिक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल का मेल बॉक्स में हमारे साथ इतने प्यार से जुड़े होते हैं, और इसी तरह से आप अपनी चॉइस, अपने गाने ढूंढ ढूंढ के निकालिए कि कौन से दौर में कौन सा गाना था जो आपको बहुत अच्छा लगता था, कौन सी ऐसी बात थी जो अभी तक याद है, उस गाने के पीछे की कहानी अगर बताएंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बजने वाले हैं 11, समय है ये समाचारों का, और उसके बाद फिर से आपकी और हमारी मुलाकात होगी ज़रूर, इसलिए कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आप हमारे साथ FM Gold Channel।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट पवन चंदना और नागा भारत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम एक की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम एक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इन परियोजनाओं से उत्तर भारत भोपाल की रेल और सड़क संपर्क और मजबूत होगा। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ और कांस्य पदक जीतने पर शिल्पा शायला को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने रजत पदक जीतने पर सर्वेश अनिल कुशारे और पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर बिंद्यारानी देवी सोरोखैबम को बधाई दी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।

अगर मैं कहूँ कि चलो चले घूमने चलते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि सारे के सारे गिले शिकवे सब चले गए, हम बिल्कुल तैयार हैं घूमने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं केरल के आलप्पी में। बहुत ही सुंदर, मतलब अद्भुत, जिसको कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट, वहीं घुमाएंगे हम आपको, दिखाएंगे तस्वीर।

ऐसा लगता है कि कश्ती चल रही है। नारियल के पेड़ों की मीठी छांव है, अलप्पी में बसता है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का ही एक गांव है। केरला का अलप्पी बहुत ही प्यारा है। मतलब देखिए, मैं आपको विजुलाइज करवा रही हूँ कि देखिए आपके चारों ओर हरियाली है, बारिश हो रही है, कुछ कुछ मौसम जाना पहचाना सा है, शांत जल में तैरती हाउस बोट प्यारी सी है। हाँ, गाने में आई लव यू है, लेकिन अगर हमें प्यार है घूमने से, तो फिर हमें हर गीत ऐसा लगेगा कि हमें घुमा रहा है कहीं पे। तो आप सबका स्वागत है तस्वीर में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

नेचर की खूबसूरती को ये कहते हुए कि हाँ मुझे बहुत प्यार है, आगे बढ़ते हैं तस्वीर में। ये है अलप्पी। अलप्पी की खास बातें क्या हैं? बैक वाटर्स है, शांत नहरें हैं, झीलें हैं, लगून हैं, जो अलप्पी की सबसे बड़ी पहचान है। उसके बाद हाउस बोट है, पानी पर तैरते शानदार घरों जैसे कि नाव में रहना यहाँ का सबसे फेमस एक्सपीरियंस है। नारियल के पेड़ और हरियाली चारों तरफ फैली जो प्रकृति की सुंदरता है वो ना सच में मन को सुकून तो देती है। अलप्पी बीच चले जाइए, सुंदर समुद्र तट है, लाइट हाउस है, मनमोहक सनसेट है, और क्या चाहिए मैं बताती हूँ, और चाहिए ये प्यारा सा गाना जो इस मौसम को और हसीन बना दे।

अब तो आप ये मानते हैं कि मौसम का असर हमारे दिल और दिमाग पे कितना अच्छा पड़ता है ना। सोचिए कि झीनी झीनी बारिश हो रही है, सूरज की चमक थोड़ी सी मध्यम हो गई है। सोचिए कि नारियल के पेड़ और चारों तरफ जो फैली हरियाली है वो इतनी प्यारी लग रही है। और अगर आप

चांस मिले अलप्पी में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस देखने का तो फिर उसको जरूर देखिएगा। वो हर साल होती है, जिसको कि स्नेक बोट प्रतियोगिता भी कहते हैं और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आप और खूबसूरती थोड़ा सा दाएं बाएं देखिए तो फिर धान के बड़े बड़े खेत, पानी के बीच फैले हरे भरे खेत अलप्पी के जो वहाँ का ग्रामीण जीवन है उसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। और उन खेतों पे जब नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही होती है ना, आहा, मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। यह है तस्वीर अलप्पी की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे।

और इस वृष्टि पे तो हम बिल्कुल जिसको कहते हैं सदके जाते हैं, पर फिर भी कई बार स्वाद हमें जगाते हैं कि भाई आइए अलप्पी में आइए और स्वादिष्ट केरल के पारंपरिक भोजन और बहुत ही फ्रेश सी फूड के लिए जो फेमस है कुछ तो ट्राई कीजिए। तो फिर आप देख सकते हैं कारीमिनी पोलिचाथू को, जो केले के पत्ते में मसालों के साथ पकाई गई एक बड़ी वहाँ की फेमस मछली है, अलप्पी की खास पहचान है। केरल फिश करी है, अप्पम है, स्ट्यू है, मुलायम अप्पम के साथ नारियल के दूध से बनी सब्जी, आहा बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद सदिया है, केले के पत्ते पे परोसे जाने वाला जो वहाँ का बहुत ही ट्रेडिशनल शाकाहारी भोजन माना जाता है, जिसमें बहुत तरह की सब्जियाँ हैं, सांभर है, अवियल है, पचड़ी है, पायसम है, और बताइए क्या चाहिए आपको। पुट्टू और कड़ला करी है, चावल और नारियल से बना पुट्टू है, साथ में काले चने की मसालेदार करी है, नहीं तो फिर प्रॉन है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको वहाँ पर डिशेस मिल जाएंगे। पायसम चावल दूध और नारियल की दूध और गुड़ से बनने वाली पारंपरिक मिठाई है। तो ये सारी चीज़ें आप मौसम के साथ साथ इनको भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है, सच्ची कह रही हूँ, ये सब हमें बहुत ही प्यारा लगता है। और उसके साथ साथ

0: जब दिल आंखें सब कुछ खुश, तो ये गाना आपको और खुश कर देगा।
1: Four, three, two, one, let's start the fun.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

रुक जाइए, ये है अलप्पी। अलप्पी की तस्वीर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अलप्पी में आपने बहुत कुछ सुना होगा और जब वहाँ गए तो आपने बहुत कुछ देख भी लिया। यहाँ पे घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च। इस दौरान मौसम बड़ा सुहाना रहता है। मानसून जून से सितंबर तक है। हरियाली बहुत सुंदर होती है, बारिश होती है पर कई सारे लोगों को बारिश अच्छी लगती है। छाता अपना लेके जाइए और उसके बाद शांत और आरामदायक माहौल में गुनगुनाइए जो भी आपका प्यार वाला गीत है या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है। हॉट सूप, चाय, कॉफ़ी और बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें।

कितनी अच्छी बात कही है ना कि अगर मौसम अच्छा हो तो आंखें बेखाब हो जाती हैं। मतलब ये कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी पल में जी रहे होते हैं, और ऐसा ही आपको लगेगा तब जब आप जाएंगे केरल के अलप्पी। पुन्नमदा झील और अलप्पी बैक वाटर्स में हाउस बोट की सवारी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके जो रेट हैं समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो जाने से पहले इसका पता कर लीजिएगा। कृष्णपुरम पैलेस में ज़रूर जाइएगा और उसके बाद पांडवन बारा की तरफ निकल जाइए। फिर आप यही कहेंगे थैंक यू वेरी मच तस्वीर अलप्पी की दिखाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। शांत पानी जिस पे तैरती हाउस बोट बड़ी प्यारी लगती है, और साथ में हवा हमारे साथ बहती है। सूरज की किरणें जब पानी में मिलती हैं तो फिर हर किरण एक सुनहरी कहानी कहती है, और अलप्पी की सुंदरता, वहाँ की हर याद आपको लगेगा कि उसकी यादों का मुसाफिर बना दिया है। घूमना जो एक जादू से कम नहीं होता है, इस जादू को आप भी महसूस कीजिए। और मौसम चाहे कहीं भी आप हों, अगर अच्छा है तो आपकी खिड़की से दिख रहा है तो वहीं से देखिए।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

अलप्पी की इतनी तारीफ सुनने के बाद अगर आपका मन करता है कि भाई चलो चलते हैं, तो फिर निकल जाइए, क्योंकि जब हम सफर में होते हैं तब हमारे पास सबसे खूबसूरत साथ मिलता है। बड़ी सारी कहानियां होती हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है, और इसके अलावा बहुत कुछ जो हम शेयर करते हैं जब हम सफर से लौट के आते हैं। तो फिर ये अलप्पी आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। वैसे आप जब गर्मियों में जाएंगे, यानी कि अप्रैल मई में, तो बहुत वहाँ पे उमस रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये वाला सीज़न जो अभी है बेस्ट है।

0: तो तस्वीर आज एलएफपी की यहीं तक, समय होने वाला है 12 और ये है समाचारों का वक्त। मैं तो चली समय और मौसम जो है इस वक्त उसको देखने। बाय बाय।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आंगन। दोस्तों, कहते हैं मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी और कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। और मौसम सिर्फ बाहर से नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है। इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए और हम भी आपका स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम घर आंगन के इस प्यारे से शो में मैं हूँ आपकी दोस्त रहो सिमरन कौर,
1: और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर।
1: जी, और सिमरन काली घटाएं छा गई हैं और बारिश बरस रही है, जगह जगह बारिश हो रही है और मन भी खिल उठा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे जहां भी हो संतुलित बारिश हो, और बारिश के मौसम में कुछ छोटी छोटी सावधानियां बहुत काम आती हैं। और वही जो है हमारा सवाल है आज हमारे श्रोताओं से कि बारिश के मौसम में आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं छोटी छोटी सी। तो ये इस सवाल का जवाब हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी प्यासा सावन और आवाज थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की।
1: जी, और जहाँ एक और बारिश हो रही है, मेघ गरज बरस रहे हैं, तो आज का दिन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सिमरन, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं है बल्कि हमारे जो अस्तित्व है उसका आधार है। जो पेड़ है, नदियां, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी और स्वच्छ हवा, ये सभी मिलकर ही तो हमारी धरती को जीवन प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा रश्मि जी आपने। और लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण की गंभीर नुकसान हो रहा है।
1: और देखिए, जो ये आज का दिन है ना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को समझाना कि अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी, स्वच्छ
0: बिल्कुल
1: वातावरण कैसे मिल पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा। और हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये सच भी है कि
1: जिम्मेदारी
0: छोटे
1: है
0: बिल्कुल
1: हमें लगता है ऐसा।
0: और लेकिन ये सच भी है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: जैसे हम मिलकर एक पेड़ लगा सकते हैं, या घर में अपने पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, और जब आप कमरे से निकलें तो भाई बिजली का जो बटन है वो बंद कर दें और बिजली की बचत करें और अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है, और हम अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं।
1: तो क्यों ना हम एक संकल्प लें आज के दिन कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और इस धरती को हरा भरा रखने में अपना योगदान करेंगे। याद रखिए, प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सही।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी नजदीकियां।
1: और सिमरन, हमें ये मेल आ चुकी है जो हमने सवाल पूछे थे। मधु किरण जी दिल्ली से कह रही हैं कि मैं तो अपने घर के आसपास और छत पर पानी खट्टा नहीं होने देती, बाजार से कटे हुए फल नहीं खरीदती और मच्छरों से बचने के लिए उचित साधनों का भी प्रयोग करती हूँ, लेकिन भाई बरसात में नहाने से जो आनंद आता है ना, भाई वो तो मैं बता ही नहीं सकती। और फोड़े फुंसी भी नहीं होते, त्वचा के जो रोग हैं उनसे भी निजात मिलती है। और एक और मेल हमारे पास आया है।
0: कौन सा है
1: जी? जो हमेशा सबसे पहले मेल करते हैं नवीन भाटिया जी।
0: आज रश्मि जी ने पहले वो वाला पढ़ दिया और नवीन भाटिया जी का रह गया। चलिए आप पढ़ दीजिए।
1: मोती नगर नई दिल्ली से कह रहे हैं कि मैं बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं हम लोग, और मजबूरी में अगर बाहर जाना पड़े तो अम्ब्रेला, रेनकोट और अपनी स्कूटी की डिग्गी में भी हम रख लेते हैं। तो भाई जैसा कि कहा कि बाहर का खाना अगर आप खाते हैं ना तो रहता है कि बीमार पड़ने का थोड़ा डर रहता है बारिश के मौसम में।
0: तो इस मौसम में तो सावधानी बहुत ही अच्छी है कि ऐसा
1: जी
0: ही
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: क्योंकि लिवर को प्रभावित करता है अगर उसमें कोई भी देर से कटा हुआ रखा हुआ ढका हुआ ना हो, और लिवर से जुड़ी भी जो बीमारी है हेपेटाइटिस, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रही थी।
0: बिल्कुल, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग लीवर यानी यकृत को प्रभावित करती है, और ये वायरस के संक्रमण दूषित भोजन और पानी, असुरक्षित रक्त चढ़ाने और संक्रमित सुई के उपयोग और असंतुलित जीवन शैली के कारण हो सकती है
1: जी। और भाई ये जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता पैदा करना और इसके बचाव के उपयोगों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके लक्षणों के बारे में हम थोड़ा समझ लें कि आरंभिक जो लक्षण है, थकान महसूस होना, भूख कम लगना, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, ये सारे हेपेटाइटिस के लक्षण हैं।
0: ये तो अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस से बचाव संभव है, इसीलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भोजन, पानी का सेवन करें, केवल सुरक्षित और नई सुई का उपयोग सुनिश्चित करें, और रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच की पुष्टि जरूर कर लें और डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं।
1: जी बिल्कुल। और जो इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि अपने लिवर का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और समय समय पर जाँच भी कराएंगे और हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देंगे, तो तभी तो हम बरसात के मौसम का आनंद ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वामी। और रश्मि जी, एक मेरे पास मेल आया है सुनैना गुप्ता का मेरठ से
1: जी।
0: इन्होंने ये लिखा है कि बारिश के मौसम में सबसे अच्छी सावधानी है

0: आप भीग जाएं, बाहर से आएं, तुरंत गीले कपड़े बदल दें, क्योंकि ठंड लग जाएगी और बुखार आ जाता है। इससे अच्छा है लौंग, तुलसी, अदरक वाली चाय जरूर पिएं।
1: जी,
0: तो हम
1: और
0: सबसे पहले यही काम करते हैं।
1: सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति अगर और जुड़ गए हैं सोनीपत से और कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, घर का ताज़ा भोजन करना चाहिए। ये मेल हमें प्राप्त हुई है। और साथ ही एक और हमें मेल प्राप्त हुई है, सुरभि कह रही हैं मयूर विहार से कि बाहर का खाना तो न खाएं, लेकिन गीले जूते कपड़े बदल लें, पैरों को सूखा रखें और अगर फिसलन वाली जगह है वहाँ पर धीरे चलें। विशेषकर वो कह रही हैं बुजुर्गों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत तेज़ बारिश हो या जल भराव हो तो अनावश्यक यात्रा से भी बचें। और साथ में बहुत अच्छी उन्होंने एक बात कही है कि मौसम की चेतावनी और स्थानीय प्रशासन की सलाह पर अवश्य ध्यान दें। तो सुरभि जी, बहुत अच्छी सलाह के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जी, अब बात कुछ करें, कुछ खास
1: जी
0: मजेदार
1: जरूर
0: बात करें। बात करते हैं मैट्रिमोनियल साइट पर ध्यान देने योग्य बातों की।
1: भाई वाह, मतलब सीधे बारिश से आप विवाह की ओर मुड़ गई हैं।
0: विवाह, क्योंकि आज के दौर में रिश्ते ढूंढने का तरीका काफी बदल गया है।
1: जी,
0: पहले जहां परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते तय होते थे, वहीं अब मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐसा भी लोगों की पहली पसंद बन गया है। क्या
1: जी
0: करें?
1: लेकिन भाई ये तो ठीक है कि भाई ये देखना पड़ता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का जब आप उपयोग करें ना, तो कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि उस प्रोफाइल की सच्चाई को जांचें। किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल को देखकर तुरंत विश्वास ना करें। उसकी शिक्षा और नौकरी और पारिवारिक जानकारी उसको अच्छी तरह से समझें और जहां तक संभव हो जानकारी की पुष्टि भी करें।
0: और इसके अलावा दूसरी बात ये कि अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें और शुरुआत में अपना घर का पता, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। ऑनलाइन सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: जी, और अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत पड़े तो फिर ऐसा ना करें, कुछ बातचीत ज़रूर करें, एक दूसरे को समय दें और वीडियो कॉल या व्यक्तिगत मुलाकात से पहले सावधानी बरतें। पहली मुलाकात हमेशा किसी सार्वजनिक स्थल पर करें या परिवार या करीबी लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दें।
0: और इसके अलावा अगर वीडियो कॉल का व्यक्तिगत मुलाकात से पहले की बात जो आपने की वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो कॉल में भी ये ठीक नहीं रहता कि हम एक दूसरे के साथ जब
1: सावधानी हमें रखनी चाहिए, जी
0: हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी आर्थिक लेन देन से बचें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से पैसों की मांग करता है तो एकदम होशियार हो जाएं, और धोखाधड़ी का संकेत ये हो सकता है।
1: देखिए, अब समय बदल रहा है दोस्तों, तो मैट्रिमोनियल साइट्स अच्छे रिश्ते ढूंढने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकती है, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। तो जो एक सही रिश्ता जो है वो विश्वास से बनता है, सम्मान से बनता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पारदर्शिता पर आधारित रहता है। तो सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लीजिए और सुरक्षित रहिए।
0: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी वक्त की दीवार और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। रश्मि जी, एक मेल आया है।
1: जी बोल, बताएं।
0: ये आया है चंद्र विहार से, रीना गुप्ता, नीना गुप्ता और रितिन गुप्ता का।
1: जी,
0: इन्होंने लिखा है कि बारिश के मौसम में खास तौर पर इस घर का निरीक्षण जरूर करते रहें, क्योंकि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें और घर के आसपास नजर बनाए रखें कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी का खतरा है।
1: जी बिल्कुल, सावधान रहना चाहिए और घर में हम रह रहे हैं तो उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। एक और मेल मेरे पास आया है, आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, आप कह रहे हैं कि जब भी बारिश का समय हो तो फिर ऐसे समय पे बिजली भी कड़कती है, तो बिजली कड़कने के समय पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें और खुले मैदान से में रहें और घर में जो बिजली के तार और प्लग हैं वो स्विच वो गीले हाथों से ना छुए, तो ये भी सावधानी जरूरी है। अगर पानी अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पानी भरा हुआ है तो ध्यान रखें कि थोड़े बिजली खंभों से बच कर रहे,
0: क्योंकि
1: बहुत अच्छी जानकारी।
0: बिल्कुल, और इस समय रश्मि जी क्या होता है कि गीले हम हाथ तो लगा देते हैं जल्दी जल्दी स्विच पर, एकदम देखते भी नहीं है, घर में आए और दरवाजा खोला और लगा दिया, तो उससे फिर वो वही दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा।
1: जी, और ऐसा भी होता है सिमरन कि जब बारिश का समय होता है तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि सीलन वगैरह ना हो, जैसा कि आपने

0: बताया। तो अगर सीलन का ध्यान रखना है और हम चाहते हैं कि घर में खुशबू बनी रहे तो एक जड़ी बूटी ऐसी है जो बहुत काम की है, जड़ी बूटी तो नहीं है बल्कि अच्छी खासी पेड़ होता है, पेड़ होता और है। वो है चंदन का पेड़।
1: क्योंकि ये सच है कि ये रोग मुक्त और त्वचा के लिए प्रसाधनों में जो है वो यूज होता है चंदन, है
0: जी, इस्तेमाल होता है,
1: इस्तेमाल होता है। और खास तौर पर कपूर, नींबू, खीरा, गुलाब और पुदीना का जो निचोड़ होता है वो भी इसमें यूज होता है, जो हमारे हम जो जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे क्रीम पाउडर कुछ कई चीजें इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की।
0: आप कहना चाह रही हैं, आप कहना चाह रही हैं
1: जी
0: आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम रोग मुक्त त्वचा अगर चाहते हैं तो चंदन के साथ ये सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर हम चंदन की बात करें तो इसमें सिर्फ औषधीय गुण ही नहीं होते बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से त्वचा को प्रभावित करते हैं और दर्द में भी आरामदायक होते हैं। और अगर सौंदर्य प्रसाधन को ले लीजिए तो ये सारी जड़ी बूटियां तो इस्तेमाल होती ही हैं।
1: और अगर हम बात करें चंदन की तो भारत में लोकप्रिय चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसकी लकड़ी, इसका पाउडर, इसका लोशन तीनों ही तरह से काम में लाया जा सकता है
0: जी। और त्वचा के लिए तो ये बहुत लाभकारी होता है भाई। भारत में जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि चंदन से सौंदर्य और त्वचा दोनों की रक्षा होती है, जलन और खरोंचों को भी दूर करता है और त्वचा को कम उम्र दिखाने में चमत्कारी प्रभाव देता है।
1: और ये सभी तरह की त्वचा के लिए लाभदायक होता है क्योंकि हल्का लोशन होता है, इसीलिए रूखेपन को दूर करके चेहरे की चमक लाता है। और चंदन युक्त क्रीम त्वचा को प्रदूषण, सूर्य की तेज धूप से भी बचाती है
0: जी। और सिमरन, अगर आपके पास चंदन की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है और उसको अगर आप रगड़ ले और उसका जो लेप है माथे पर लगा ले तो विश्वास कीजिए ये गर्मी के मौसम में ठंडक भी देता है, खुशबू भी देता है और आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताजा कर देता है, तो रूखेपन को भी दूर करता है। और चंदन युक्त जो क्रीम होती है वो तेज धूप से जैसे बचने के लिए आजकल कहते हैं ना सनस्क्रीन, तो जो उसका लेप होता है एक तरह से सनस्क्रीन का भी काम करता है। और चंदन का तेल कई प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है भाई वाह उसके तो क्या कहने। तो चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी का, हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो क्या कहते हैं, चंदन एक रूपनिक

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी आंगन की कली।
1: जी, और कितना खूबसूरत बोलते हैं
0: और
1: सिमरन भाई, सुख के लिए पड़े दुख भी सहना है ना। तो भाई अगर आपको सुख चाहिए जिंदगी में तो ये तो एक पहिया है, एक दुख आता है उसके बाद सुख आता है, और यही आप शायद मुझे लग रहा है अगली
0: बात
1: बात बताने वाली है। लेकिन इस बात से पहले हम कुछ मेल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हैं, आप कहें तो शामिल करें।
0: बिल्कुल करिए
1: जी। इदरीस सैफी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं भी रोड पर अगर पानी भरा हो तो और रास्ता अनजान हो तो वहां पर गाड़ी ना चलाएं, भाई ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अनवर साबरी कह रहे हैं, लेकिन अनवर साबरी जी ने अब कोई वो लिखा नहीं है, संदेश नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखकर भेज दिया है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ जो है प्रीति मोहन जी से मिलती जुलती है। रश्मि जी आपकी आवाज़ और
0: बहुत अच्छी, ये तो बहुत
1: जी।
0: तारीफ
1: इसके
0: किया
1: अलावा
0: भी
1: हमारे पास
0: रश्मि
1: एक
0: जी
1: और
0: की।
1: संदेश आ गया है, आप हैं विवेक विहार से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी, वो कह रहे हैं कि जब आप बारिश में वाहन चलाएं और बाहर निकलें तो ध्यान रखें, क्योंकि तेज़ बारिश में जो दिखाई देना कम हो जाता है, तो वाहन धीमी गति से चलाएं। और साथ ही वे लिखते हैं कि अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, और साथ में जो रेन गियर रखें, माने आप कुछ बरसाती वगैरह साथ लेकर चलें, और पानी में वाहन बंद हो जाए तो उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, भाई ये मेरे लिए भी जानकारी है। और अंडर पास और निचले इलाकों में और तेज बहाव वाले रास्तों से वो कह रहे हैं बचें, ये भी बहुत ज़रूरी है, भाई अंडर पास में जो है पानी भरने का डर रहता है, वहाँ सावधान रहें, और सड़क पर चलते समय खुले मेन होल और टूटे फुटपाथ से सावधान रहें। हमारे श्रोता कितने जानकार हैं, जागरूक हैं, और क्यों ना हो भाई, FM गोल्ड से जुड़े हैं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हैं, ये तो वाकई बहुत जागरूक और सावधान है, और हम भी उनसे बहुत कुछ रोज सीखते हैं।
0: मैं भी ये कहने वाली थी, इसीलिए परेशानी में साहस को बनाए रखें, परेशान ना होइए क्योंकि जीवन एक यात्रा है, इसमें सुख दुख दोनों आते हैं, कभी खुशियों की धूप होती है और कभी कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परेशानी के समय हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए।
1: जी, अभी जैसे ट्रैफिक की ही बात हो रही थी, तो अंधेरी रात के बाद जैसा आपने कहा कि नया सवेरा आता है और

0: हर परेशानी कोई ना कोई सीख सिखा कर जाती है। कई बार ऐसा होता है सिमरन कि हम परेशानी में ना घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं और हम अपने अंदर जो छिपी शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते।
1: बिल्कुल सही।
0: भाई जिन लोगों ने मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखा वही आगे चलकर सफलता की मिसाल भी बने।
1: देखिए चाहे बीमारी हो, आर्थिक समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ना, हर चुनौती का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए।
0: जी, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका परिवार है, मित्र है, आपके अपने हैं। ये सब आपको मानसिक शक्ति देते हैं। और साथ में अच्छी बातें पढ़ें, संगीत सुने, प्रार्थना करें और अपने मन की बात अपने विश्वसनीय व्यक्ति से या किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें।
1: और साहस का अर्थ है डर और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। छोटी छोटी कोशिशें भी हमें बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं।
0: तो सिमरन, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें विश्वास रखना चाहिए प्रभु पर कि ये समय भी गुजर जाएगा और अपने मन में उम्मीद की एक लौ जो है वो हमेशा जगा कर रखनी चाहिए।

0: और रश्मि जी, चलते चलते एक मेल और पढ़ दूँ?
1: जी जरूर।
0: ये आया है रानी शर्मा का और इन्होंने लिखा है कि हर मौसम अपने साथ कुछ परेशानी तो लेकर आते हैं, लेकिन इस मौसम में कमरे के बाहर पैर पहुंचने के लिए पायदान जरूर रखें और खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे और कालीन का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश हमारे पास आया है, वो कह रहे हैं आप हैं तिलक नगर से उदयन, आप कह रहे हैं भाई बारिश में सावधानी बरतनी जरूरी है, पहले तो छाते का ध्यान रखिए और सड़क पर अगर पानी दिखे तो धीरे चलिए, क्योंकि पता नहीं नीचे सड़क है या गड्ढा है भाई, और मच्छरों से बचकर रहना वो कह रहे हैं जरूरी है, क्योंकि भाई अब घर घर घूमने का सीजन आ गया, क्योंकि इस समय भाई ध्यान रखना जरूरी है। अगर पार्क में बच्चों के साथ जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ मच्छर जो बचाने की जो क्रीम है बच्चों पर जरूर लगा लें, क्योंकि इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का भी मौसम आ गया है, हम आप बता दें सभी सुनने वालों को। तो सिमरन आगे क्या कहना चाह रही हैं?
0: आगे बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि समय जो देख रही हूँ घड़ी का, वो होने वाला है
1: जी
0: समाप्त।
1: तो अनुमति लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से,
0: तो यू ही सुनते रहिए और इसी वादे के साथ रश्मि जी और मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 PM following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 AM, Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the public examinations prevention.

ऐसे गीत जो आज भी घर घर में गुनगुनाए जाते हैं, जिनके रिमिक्स बने हैं, लेकिन उनके बारे में आज भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। बात हो रही है राजा मेहंदी अली खां की। इन्हीं पर आधारित है हमारा आज का कलाकार बेमिसाल, जिसे लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। शुरुआत करते हैं एक मुसाफिर एक हसीना के लोकप्रिय गीत के साथ। आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

23 सितंबर 1915 को पाकिस्तान के करीमाबाद में राजा मेहंदी अली खां का जन्म हुआ। हालांकि कुछ सोर्सेज उनकी पैदाइश का दिन 25 जून बताते हैं। वो 4 वर्ष के भी नहीं थे जब उनके पिता ये दुनिया छोड़ के चले गए। उन्होंने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। उनकी माँ हुबिया खातून भी शायरी करती थी और शायद यहीं से उनके भीतर भी शायरी का शौक पैदा हुआ। प्रारंभिक वर्षों में राजा मेहंदी अली खां मशहूर शायर अल्लामा इकबाल से काफी प्रभावित थे। साहित्य के प्रति उनकी लगाव ने दो लोकप्रिय उर्दू पत्रिकाओं में यानी कि फूल और तहजीब निस्वा के संपादक के पद तक उन्हें पहुंचाया। अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म दुल्हन एक रात की से, आवाज है मोहम्मद रफी की।

1942 में राजा मेहंदी अली खान ने लेखक के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। यहीं उनकी मुलाकात जाने माने लेखक सादत हसन मंटो से हुई। मंटो पहले से ही फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अशोक कुमार से राजा मेहंदी अली खान को फिल्मों में काम दिलवाने को कहा और जल्द ही उन्हें एक फिल्म में डायलॉग लिखने का काम मिल गया। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। इस फिल्म का नाम था 8 दिन, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी। इसके अगले ही साल एक गीतकार के तौर पे उन्हें फिल्म मिली दो भाई, जिसके गीत काफी लोकप्रिय हुए, खासकर ये गीत जो अभी मैं आपको सुनवाने वाली हूँ गीता दत्त की आवाज में।

इस गीत ने गीता दत्त को रातों रात सिंगिंग स्टार बना दिया। इस फिल्म का यानी कि दो भाई का संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। इसके बाद विद्या और कमल जैसी फिल्मों में भी राजा मेहंदी अली खान ने एस डी बर्मन के साथ जोड़ी बनाई। ओपी नैयर के साथ भी उन्होंने कुछ ही फिल्में की, लेकिन उनके जो गीत थे काफ़ी हिट रहे, जैसे कि एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत तो हम आपको सुना ही चुके हैं। इसके अलावा कल्पना, हांगकांग और जाली नोट जैसी फिल्मों के गीत भी ओपी नैयर के साथ काम करते हुए राजा मेहंदी अली खान ने लिखे। और राजा मेहंदी अली खान ने कई ऐसे संगीतकारों के साथ भी काम किया जिन्होंने बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन राजा मेहंदी अली खान के लिखे ये गीत भी काफ़ी पॉपुलर हुए। ऐसी एक फिल्म थी रेशमी रुमाल, जिसका संगीत दिया था बिपिन बाबुल ने, और इसके गीत बहुत पॉपुलर हुए थे। इसी फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज़ों में।

वैसे तो राजा मेहंदी अली खान ने एस डी बर्मन, ओ पी नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस एन त्रिपाठी, बिपिन बाबुल, के दत्ता, श्याम सुंदर, इकबाल कुरैशी, एस मोहिंदर, गुलाम मोहम्मद, सी रामचंद और चित्रगुप्त जैसे अपने समय के लगभग सभी संगीतकारों के लिए गीत लिखे, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही मदन मोहन के साथ। मदन मोहन की संगीतकार के तौर पर जो पहली फिल्म थी आंखें, उसके गीत भी राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे। इसके बाद अदा, मदहोश, जागीर, आपकी परछाइयाँ, वो कौन थी, मेरा साया, दुल्हन एक रात की, नीला आकाश, जब याद किसी की आती है और अनपढ़ जैसी यादगार फिल्मों के गीत लिखे मदन मोहन के लिए राजा मेहंदी अली खान ने। अनपढ़ फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जब याद किसी की आती है फिल्म से गीत आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में, कलाकार बेमिसाल में आज बात गीतकार राजा मेहंदी अली खां की। राजा मेहंदी अली खां को उनके रोमांटिक गीतों के लिए वैसे तो याद किया जाता है, लेकिन उन्हें जानने वाले उन्हें एक जिंदा दिल और मजाकिया इंसान के रूप में याद करते हैं। अपने आखिरी दिनों में भी वो लोगों को जोक सुनाते, हंसी मजाक करते हुए देखे जाते थे। अपनी बीमारी के चलते 29 जुलाई 1966 को राजा मेहंदी अली खां दुनिया से विदा हो गए। 1970 में आई कौन हो तुम उनकी आखिरी फिल्म थी। फिलहाल अगला गीत उनका लिखा हुआ बेहद लोकप्रिय गीत फिल्म वो कौन थी से, आवाज है लता मंगेशकर की।

राजा मेहंदी अली खान ने लगभग 125 फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखे, रोमांटिक से लेकर देशभक्ति, दर्द से लेकर कॉमेडी और दर्शन तक हर तरह के गीत राजा मेहंदी अली खान की कलम से निकले। जैसे कि अगला गीत जिसे आप सुनेंगे आपकी परछाइयां फिल्म से, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की।

फिल्मी गीतों के अलावा राजा मेहंदी अली खान ने कई विषयों पर कविताएं भी लिखी। उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं में कड़वाहट को जगह नहीं दी। उनकी ज्यादातर कविताएं व्यंग्यात्मक शैली में हैं। उन्होंने मिर्जा गालिब की कुछ गजलों की पैरोडी भी की, जिसे पढ़ने वालों ने काफी पसंद किया। और अभी सारी बातों को विराम देते हुए आज का आखिरी गीत फिल्म मेरा साया से, आवाज आशा भोसले की।

आदाब, आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। खबरों के साथ मैं असलम बेग। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मुअत्तल कर दी गई। लोकसभा में आज पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। एयर इंडिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पंजाब को 27 आलमी मकामात से जोड़ने वाले इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का आगाज किया है। झारखंड में 16 माओ नवाजों ने, जिनमें चोटी के 6 कमांडर भी शामिल हैं, हिफाजती दस्तों के साथ खुद सपर्दगी की। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम केसेस में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया। और IMD ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में इंतहाई शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मुजाहिरा करने वाले उन तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने हुक्काम से यह भी कहा है कि वो नीट पेपर लीक के मामले पर हालिया मुल्कगीर मुजाहिरों से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद भी महफूज रखें। अदालत ने यह भी कहा है कि पिछले हफ्ते तलबा के मुजाहिरों के दौरान तलबा और पुलिस

0: अफसरान के जख्मी होने के इल्जाम की एक शफाफ और आजादाना तफ्तीश कराए जाने की जरूरत है। दरखास्तों के एक जत्थे की समाअत करते हुए, जिनमें मुजाहिरों के दौरान पुलिस का मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हिदायत जारी की है। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीतने पर पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद दी। बाद में जनाब ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज के दौरान तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के मामले पर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि ऐवान में कामकाज खुशसलूबी के साथ होना चाहिए और पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बामकसद बहस मुबाहसा होना चाहिए। जनाब बिरला ने सरकार और अपोजिशन दोनों पर जोर दिया कि इत्तेफाक राय कायम करके मजकूरा बिल पर बहस शुरू की जाए।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: जब शोरगुल होता रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामाराई के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आज कहा है कि एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग के दौरान अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत की तिजारत और आज़ाद तजारती समझौतों के मुतालिक ताज़ा तरीन हालात के बारे में मालूमात फराहम की गई। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने उम्मीद जाहिर की कि सभी सियासी पार्टियां सरकारी इम्तहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे में तामीरी रुख अपनाएंगी।
2: आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने रियासत में बार बार मुबैना पेपर लीक के वाकयात के बारे में पंजाब सरकार की नुक्ताचीनी की और पंजाब के वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 साल के दौरान पंजाब में पेपर लीक और नकल के 6 बड़े वाकयात हुए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने आज कहा है कि अपोजिशन पब्लिक इम्तहान में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के बिल पर लोकसभा में होने वाले बहस मुबाहसे के तई पुरुद है। पार्लियामेंट के इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने पूरे निजाम का जायजा लेने और उसमें बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद थे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तृणमूल से अलग होने वाले अरकान पार्लियामेंट के धड़े एनसीपीआई ने भी इत्तेहाद की इस मीटिंग में शिरकत की। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इम्तहानात में पेपर लीक के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतालिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वज़ीर आज़म ने नीट इम्तहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये मालूमात फराहम करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकज मुतासरीन की मदद

के लिए आसाम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने हरेक की हिफाजत और खुशहाली के लिए भी दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी बैन अल-अक्वामी हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकामात से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोदी नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अल-अक्वामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए की कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक के तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर मम्लकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए की कदर वाले 1-1 अरब रुपए चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज भेजी है। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातिहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म माओनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। हुकूमत ने 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर क्राइम मामलों में E0 FIR दर्ज करने का निजाम शुरू किया है। उमूर दाखिला के वजीर ममलकत बी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए इंतहाई तेज बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमाल मशरकी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मौतल कर दी गई।

0: Magnitude 7.1 quake occurred in Kumamoto Prefecture this afternoon. The agency issued a tsunami advisory for the coasts of Ariake Sea and the Yatsu Shiro Sea. The operator of the Genkai Nuclear Power Station in Saga Prefecture and the Sendai Nuclear Power Station in Kagoshima Prefecture said it is working to confirm whether there are any abnormalities at either facility. The Kyushu Railway Company said services have been suspended of all its trains, including the Kyushu Shinkansen, after the quake. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange color warning for very heavy rainfall has been issued for northern states including Delhi, in parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbha. Heavy rainfall conditions will continue over the next 2 days. Delhi and adjoining NCR witnessed heavy rainfall today. According to the weather agency, another spell of light rain is expected at many parts of the national capital towards evening. In Himachal Pradesh, Met Center Shimla has identified the next 4 days as highly sensitive. The Meteorological Center has also issued a flash flood warning for the next 24 hours for the districts of Chamba, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur and Solan. A report.
1: The Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall today in 5 districts, Chamba, Kangra, Mandi, Shimla and Sirmaur. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for Una, Bilaspur, Hamirpur, Solan and Kullu districts. In view of the forecast of heavy rainfall, all educational institutions in the Paonta Sahab subdivision of Sirmaur district have been ordered to remain closed today. According to the State Emergency Operations Center, 108 roads across the state remain blocked due to landslides and heavy rain. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra routes have been blocked at several locations due to landslides. Keeping the safety of pilgrims in mind, the Char Dham Yatra has been suspended till tomorrow. Continuous rainfall has caused the water level of major rivers in the state to rise. The state government is closely monitoring the situation and disaster response and rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both Houses of Parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
3: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
2: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
4: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
2: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
5: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
2: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है।

0: है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
1: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी

0: शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस लोकप्रिय कृषि कार्यक्रम किसान की बात के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ है
2: मैं हूं अश्वनी,
1: और हम दोनों मिलकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अश्वनी, देखिए मौसम कितना खूबसूरत हो चुका है, बड़ा ही सुहावना हो चुका है। रिमझिम बरसती फुहारें जब धरती की हरियाली की चादर ओढ़ाती है ना, यानी जब बारिश होती है तो हरियाली की चादर चारों ओर छा जाती है ना। सूखे सूखे जो गर्मी के कारण हमारे पौधे पेड़ हो जाते हैं, वो भी हरे भरे हो जाते हैं। तो मौसम

0: बहुत ही खूबसूरत है, और इसी बारिश के मौसम में हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर भी मुस्कान रहती है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस समय में जो बागान वो लगाएंगे तो वो बागान आने वाले समय में बहुत ही अच्छी उनके आय का एक स्रोत बनेगा, अच्छे बाग तैयार होंगे, अच्छे फलदार पौधे भी तैयार हो जाएंगे।
1: तो किसान मित्रों, आप समझ गए होंगे, आज हम बागों के विषय में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, आपको विषय बता देते हैं। बागों की सफल स्थापना हेतु प्रमुख सावधानी, यानी कि जब हम बाग लगाते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे।
0: और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, अध्यक्ष फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, सभी किसान
0: और
1: भाइयों को नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, ये जो बारिश का मौसम होता है, ये कहा भी जाता है कि हमारे पौधों के लिए, पेड़ों के लिए, पूरी धरती के लिए
1: जी
0: एक जीवन नया लेकर आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और इस नए जीवन में न जाने कितनी उम्मीदें होती हैं हमारे किसान भाइयों की, और
1: बिल्कुल
0: वहीं हमारी सरकार भी जो प्रयास करती है तो उनको भी ये उम्मीद है कि हाँ, आने वाले समय में किसानों को एक अच्छा मौका भी मिलेगा, और वहीं वर्षा का जल संचयन करने का भी एक नया हमें तरीका भी मिल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो डॉक्टर साहब, जो पौधे हैं जिनकी हमें रोपाई करनी है, उनका सही और उचित समय क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं आपसे।
1: देखिए, ऐसे पौधे का जो सबसे उचित समय होता है वो जुलाई अगस्त के महीने में होता है, कि वर्षा ऋतु जब होती है उस समय सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन इस बार चूंकि मानसून थोड़ा सा लेट हो गया है, तो किसान भाई अभी जो है, आज जैसे कि अच्छी बारिश हुई है, तो बारिश अधिक हुई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है पौधों की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पौधों की रोपाई तो बाद में आती है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि जब भी किसान भाई कोई भी बाग स्थापित करने जाते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल वृक्ष जो है बहुवर्षीय होते हैं, उसमें लंबे समय तक उसमें जो है खर्च होता रहता है, और शुरू में कोई भी चूक या कोई भी गलती होता है तो इसका प्रभाव जो है लंबे समय तक
0: जी
1: पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपने पूछा कि पौधे की रोपाई कब है, लेकिन इसके
0: सही
1: पहले
0: समय।
1: किसान भाइयों को इन बातों पे भी ध्यान देना
0: डॉक्टर
1: चाहिए।
0: साहब, जब बातों की ध्यान रखने वाली बातों की हम बात करते हैं कि बागा लगाने से पहले भूमि और जलवायु का चयन किसान भाइयों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: ये देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। भूमि और जल का जो है, किस तरह का जल होना चाहिए या किस तरह की सिंचाई के साधन होने चाहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कई बार हमारे पास किसान आते हैं, हमारे किसान मिलने आते हैं, तो सीधे एक प्लानिंग लेकर के आते हैं कि सर हमको ये आम लगाना है, अमरूद लगाना है, या कोई दूसरे फल वृक्ष लगाना है, किन्नू लगाना है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न मैं जो उनसे पूछता हूँ कि आपने पहले क्या सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई, तो उनका प्रश्न यही रहता है जब आपकी, नहीं साहब अभी तो मैंने ही कराया। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आप मिट्टी का जांच करा लीजिए, क्योंकि आपकी मिट्टी की जांच में आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपकी भूमि कैसी है, उसका पीएच कितना है। खास करके पीएच की अगर बात करते हैं तो पीएच फल वृक्ष के लिए आमतौर पर 7 से 7.5 के बीच में होता है, तो सबसे पहले पीएच का जांच कराना चाहिए। उसमें विद्युत चालकता कितना है, विद्युत चालकता जो है कहीं 0.5 डेसी साइमन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह कई बार क्या होता है कि किसान भाई शुरू में बिना मिट्टी जांच किए हुए पौधे लगा देते हैं, खास करके नींबू वर्गीय फसलों में ये देखा गया है कि वो पौधे लगा देते हैं और ऐसी भूमि में लगाते हैं जिसमें 10% से अधिक चूना की मात्रा हो या 5% से कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शुरू में बाग तो 2-3 साल तक उसका प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही उसके जड़ जो है कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम के कांटेक्ट में आते हैं तो पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। तो इन चीज़ों पे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए, मिट्टी का उसका जांच कराना चाहिए, क्योंकि अगर पीएच 7 से 7.5 के बीच में है तब तो ठीक है, ठीक है, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे अच्छा रहता है फल वृक्षों के लिए। लेकिन अगर कहीं खारा है तो फिर आपको फल उसी हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा। जैसे कि अच्छी मिट्टी है तो उसमें आम, अमरूद, कटहल जो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई खारा मिट्टी है या कंकड़ीली मिट्टी है तो फिर आपको दूसरे फल जैसे कि बेर है, बेल है, आंवला है, जो कठोर वृक्ष है, या जो शुष्क या अर्ध शुष्क वाले फल वृक्ष है, फालसा है, वैसे फल वृक्षों का चयन करना चाहिए। तो
0: डॉक्टर
1: मिट्टी का
0: साहब,
1: चुनाव बहुत ही जरूरी
0: जी,
1: होता
0: डॉक्टर
1: है।
0: साहब आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और अगले सवाल पर जाने से पहले किसान मित्रों को बता देते हैं, जो अभी कार्यक्रम में नए श्रोता जुड़े हैं,
2: तो आप भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और अगर आपने बाग लगाए हैं या आप किसी भी जो फल वृक्ष है उसका बाग लगाना चाहते हैं तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं 0112342104।

0: लक्ष्य होते हैं, तो इसका चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप किन किस्मों का चयन करने जा रहे हैं। और पौधे हर समय विश्वसनीय नर्सरी से लेना चाहिए। कई जो है एक्रीडेटेड नर्सरी होती हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से एक्रीडेटेड होती हैं, या आपको विश्वविद्यालय या किसी गवर्नमेंट नर्सरी से ही पौधा, कोशिश करें कि वहीं से पौधा लेना चाहिए। और जहाँ तक किस्मों की बात रही, तो किस्मों का लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण के रूप में दो चार फल वृक्षों के बारे में बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि किसानों का रुझान आम तौर पे जो है आम की तरफ ज़्यादा रहता है, आम अमरूद या फिर किन्नों की आजकल खेती बहुत कर रहे हैं, या मौसम्बी की। तो आम में जो है बहुत सारी उन्नत की किस्में हैं, जैसे हमारे संस्थान द्वारा जो है 10 से 12 हाइब्रिड जो है किस्में विकसित की गई हैं, जो हर साल जो है फल देते हैं। क्योंकि आम में एक समस्या होती है कि एक साल फल आती है एक साल नहीं आती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी किस्में हैं, जैसे पूसा प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पूसा अरुणिमा है, मनोहरी है, आम्रपाली और मल्लिका जो है पुरानी किस्मों से, उसी तरह से और भी दूसरे किस्में हैं जो कि विकसित की गई हैं। दूसरे संस्थान से भी जो है आम के अच्छी किस्मों को विकसित किया गया, जैसे IHH बेंगलोर से या CIH लखनऊ से भी जो है अच्छी किस्मों का जो है आम की विकसित की गई हैं। उसी तरह अमरूद में जो है पुरानी किस्मों में, जैसे कि इलाहाबाद सफेदा काफ़ी प्रचलित किस्म है, उसके बाद आपका पूसा, हमारे यहाँ से पूसा आरुषि है, पूसा प्रतीक्षा है, ये दो किस्में विकसित की गई हैं। ललित है, श्वेता है, बहुत सारी अन्य किस्में हैं। नींबू में हमारे यहाँ कागजी कलां है, कागजी कलां जो है बहुत ही अच्छी किस्म है, जो कि साल में जो है 2 बार फल देती है, 1 बार गर्मी में 1 बार सर्दी में, तो उसका उपज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। किन्नू जो है आजकल आमतौर पर किसान का रुझान किन्नू की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि उपज बहुत ज़्यादा होती है, बाजार में उसकी जो है जूस के लिए भी उसकी मांग ज़्यादा होती है और दूसरी चीज़ों के लिए भी, तो इसलिए जो है किन्नू की तरफ रुझान है। तो इस तरह से 2-4 किस्मों
1: तो डॉक्टर ओपी अवस्थी, क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी अपनी कुछ किस्में निकाल रहा है या इस पर कुछ काम चल रहा है अभी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, जो है हम जो है 4-5 क्रॉप्स पे जो है काम करते हैं, फसलों पे। एक तो जैसे कि आम के बारे में बताया कि 10-12 हाइब्रिड जो है उसमें विकसित की गई हैं, मैंने नाम तो आपको बताई दिया, आम्रपाली, मल्लिका, पूसा प्रतिभा, श्रेष्ठ, अरुणिमा, मनोहरी, बहुत सारी किस्में हैं। इस तरह
1: तो किसान भाई पूसा से भी ले सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आते हैं, बहुत डिमांड होती है पौधों की। और उसकी जो है उसकी प्रतिक्रिया ये है कि किसान भाइयों को अगर पौधा लेना है तो जैसे कि पिछले साल जो 2025 में इंडेंट होता है, इंडेंट फॉर्म होता है, उस पर जो है वो अपनी मांग देते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद जो है जब पौधे तैयार हो जाता है तो हम उनको फोन करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि भाई पौधे तैयार हो गए, आप आ करके ले जा सकते हैं। तो आम में जैसे हुआ, फिर अंगूर में भी हमारे यहाँ से बहुत अच्छी किस्में गई हैं, पूसा स्वर्णिका है, पूसा पर्पल सीडलेस है, और भी पूसा उर्वशी है, पूसा नवरंग है, बहुत सारी किस्में हैं। अमरूद में प्रतीक्षा है, आरुषि है, और उसी तरह कागजी कला लेमन में है, और उसके बाद किन्नू के हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने हाल में ही ऑरेंजेलो करके एक हाइब्रिड डेवलप किया है, जिसकी जूस की मात्रा और कैल्शियम जो है उसमें 25% अधिक होता है। तो ऐसी किस्में बहुत सारी।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पहले वो बता दें हमें, तो कितना समय पहले उनको अप्लाई करना होगा कि भाई हमें ये पौधे चाहिए?
0: अभी तो हम लोग अगस्त सितंबर तक पौधे देते हैं, अगस्त सितंबर तक पौधे देंगे उनको, जो पिछले साल की डिमांड है, डिमांड के हिसाब से अगस्त सितंबर तक देते हैं। अगर पौधे बच जाते हैं, जैसे कई बार किसान होता है वो पौधे नहीं लेने आते हैं या पौधे बच जाते हैं, तो फिर जो है जो भी किसान आता है, हम लोग की पूरी कोशिश ये रहती है कि सभी किसानों को कम से कम नहीं तो 5 से 10 पौधा अवश्य मिले।
1: डॉक्टर साहब, बागों की स्थापना पर और भी बातें करेंगे अश्वनी, उससे पहले हम कुछ संदेश सुन लेते हैं और सुना देते हैं अपने श्रोताओं को।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे हैं?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और आज का हमारा विषय है बागों की सफल स्थापना हेतु प्रमुख सावधानियां। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, अध्यक्ष फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और मेरे साथ हैं हमारे मेरे साथी अश्वनी। अश्वनी कुछ पूछना चाह रहे थे आप डॉक्टर साहब से।
10: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे युवा साथी हैं और वो बाग लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जगह का चुनाव और एक जो परफेक्ट बोलते हैं आइडियली कितना बड़ा साइज होना चाहिए अगर वो एक नया बाग लगाना चाहते हैं।
11: देखिए, ये जो है मिट्टी के चयन और स्थान के चुनाव के बाद जो है सबसे पहले ये आता है कि आप रेखांकन कैसे करते हैं। आप रेखांकन के जो है 3-4 विधियाँ होती है, अर्घकार विधि होती है, वर्गकार विधि होती है, पूरक विधि होती है। तो सबसे अच्छा जो इसमें सिस्टम होता है वो वर्गकार विधि होता है, यानी कि उसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है बराबर रखी जाती है, और दूरी जो है वो पौधों और किस्मों पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर आप दशहरी या लंगड़ा का किस्म लगानी है तो आमतौर उस पर तौर पर उस पर 8 से 10 मीटर की दूरी रखी जाती है, क्योंकि बहुत ओजस्वी किस्म के होते हैं। और उसी तरह अगर आपको अम्रपाली या मल्लिका लगाना है तो उसको आप 4x4 या 6x6 मीटर पे लगा सकते हैं। हालांकि अम्रपाली के लिए अनुशंसा 2.5x2.5 मीटर की भी है, लेकिन उसको 4x4 या 6x6 मीटर पे लगाने की अनुशंसा हम करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ट्रैक्टर वगैरह की जो है आसानी से जा सकते हैं, उसमें जो है कृषि क्रियाएँ जो है आसानी से की जा सकती हैं। उसी तरह जो है कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे पपीता है, पपीता के लिए आपको जो है इतनी उस जो पौध से पौध और पंक्ति की पंक्ति जुड़ी हार्डली जो है 1 मीटर या 1.5 मीटर आप रख सकते हैं, 1x1 मीटर पे या 1.5x1.5 मीटर पे आप पपीता लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है विधि के हिसाब से वर्गकार विधि सबसे अच्छा होता है। पूरक विधि में ये होता है कि जो किसान प्रगतिशील किसान है तो उसमें क्या काम करते हैं कि पौध से पौध की दूरी जब उसकी 6 मीटर है, 6x6 मीटर का है, तो उसमें बीच में जो है कोई दूसरा फल वृक्ष लगा लेते हैं, जो कि जल्दी समय में जो है वो फल तैयार हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के बीच में आप पपीता बीच में डाल सकती हैं, या दूसरे कोई फल वृक्ष है आप बीच में लगा सकती हैं। बीच में जैसे दूसरे पौधे बड़े होते हैं वर्गकार विधि में, फिर बाद में उसको आप काट करके हटा।
9: डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा आ रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है और किसान भाई जब हमारे इन पौधों की रोपाई करते हैं, बागान लगाते हैं, तो गड्ढे बनाते हैं, तो गड्ढे में खाद भी भरते हैं, तो ये गड्ढा बनाना और वैज्ञानिक विधि तरीके से अगर अपनाते हैं खाद की भराई और कितना गहरा गड्ढा बनाना है, इस पर भी थोड़ा विस्तार से बताएं।
11: देखिए, ये जो है प्रतिभा जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे किसान जो है बहुत ही गलती करते हैं। मैं अक्सर ये देखा हूँ कि किसान जो है ये शिकायत लेकर के आते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं रहती कि गड्ढे की आकार कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम मकान बनाते हैं तो मकान की फाउंडेशन हम सोचते हैं कि जितना अच्छा हमारा फाउंडेशन रहेगा उतनी ही आगे चल करके हम चाहें तो 2 तला 3 तला मंजिला जो है वो मकान बना सकते हैं। तो पौध वृक्ष के लिए जो है ये गड्ढे जो होते हैं

0: एक्चुअली फाउंडेशन का काम करते हैं।
1: जी
0: जैसे बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे आम की बात करें या अमरूद की बात, जिसके जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं,
1: जी
0: तो उसमें आमतौर पर 1 बाई 1 बाई 1 मीटर का गड्ढा खोदना चाहिए। और गड्ढे खोदने की प्रक्रिया जो है, गर्मी के मौसम में जब बिल्कुल तप रही होती है भूमि, उस समय वो गड्ढे खोदते हैं 1 बाई 1 मीटर का,
1: जी
0: और उसके बाद जो मिट्टी है जो निकाल के बाहर रख देते हैं, और उसके बाद जो है बारिश का इंतज़ार करते हैं। जब 1-2 बारिश हो जाती है तो ऊपर से पूरी सतह से जो है अच्छी मिट्टी बह करके आती है और नीचे जमा हो जाती है। फिर उसके बाद जो है जब थोड़ा सा बारिश रुकता है तो उसमें जो है फिर आप अच्छी तरह से उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, करीब 50 किलो जो है सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके, नीम की खली मिला लीजिए, क्योंकि दीमक की समस्या कभी कभी आती है,
1: जी
0: तो उसके बचाव के लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस के बजाय मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नीम की खली मिला लीजिए, और उसके बाद फिर गड्ढे की बढ़ाई कर दीजिए।
1: जी
0: गड्ढे की बढ़ाई करते समय ये ध्यान रखें कि कम से कम 1-2 इंच या 15 सेंटीमीटर करीब वो ऊपर रहे,
1: जी
0: जैसे कि अगर बारिश होती है तो गड्ढे में वो जा करके मिट्टी बैठ जाए। जब अच्छी तरह से बैठ जाती है तो जुलाई अगस्त में जो भी आपकी किस्में होते हैं उसको आप लाइए और उसको लगा सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन ये बहुवर्षीय फसलों के लिए है। अगर पपीता को आपको लगाना है या दूसरे कोई जो है जो 1 साल 2 साल में तैयार हो जाते हैं, उनके लिए इतने बड़े गड्ढे की आवश्यकता नहीं होती,
1: जी
0: उसमें 45 बाई 45 सेंटीमीटर का गड्ढा पर्याप्त होता है।
1: जी
0: एक चीज़ और मैं यहाँ पे इस कड़ी में
1: हाँ जी
0: बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि देखिए, किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ठीक है गड्ढा उन्होंने बना लिया, बहुत मेहनत किया, लेआउट रेखांकन अच्छी तरह से कर लिया, लेकिन जब पौध की रोपाई करने जाते हैं
1: जी
0: तो उनसे 2-3 गलती होती है। कई बार किसान क्या काम करता है कि पॉलीथीन में वो रहता है, पौधा जो किस्म रहती है पॉलीथीन में रहता है, तो
1: हाँ जी
0: पॉलीथीन के साथ ही उसमें लगा देता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो उसको जो है किसान को हर समय ये ध्यान देना चाहिए कि पॉलीथीन को काट करके फिर पिंडी सहित वो लगाए, वहाँ पे पिंडी के साथ जो है उसको लगाए, और पिंडी टूटने ना पाए। अगर पिंडी टूट जाती है, अगर उसमें हवा लग जाता है, तो पौधा फिर मर जाता है। और कई बार दूसरी किसान ये गलती करता है कि
1: हाँ
0: बिना
1: जी
0: गड्ढा खोदे नर्सरी से पौधा लाया, और जितनी बड़ी पिंडी है उतना बड़ा उसने गड्ढा खोदा और उसको लगा दिया, तो वो पौधा आगे चल करके समस्या देगा आपको।
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, और हमारे किसान भाई और हमारे जो दिल्ली और उसके आसपास के जितने भी हमारे किसान भाई या जो बागवानी का काम करते हैं और या
0: हाँ
2: नर्सरी
0: जी
2: बनाने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर साहब, जैसे बारिश तो हो रही है, आपने कहा था कि जुलाई का वक्त जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस कार्य के लिए। अगर ये बारिश नहीं होती है तो सिंचाई और नमी का कैसे ध्यान रखा जाए?
0: देखिए, सिंचाई ऐसा है कि कुछ किसान भाई ये क्या काम करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि बारिश, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, फॉर वेदर फोरकास्टिंग होता रहता है, तो उस हिसाब से लोग जो है पौधे को अपना लगा लेते हैं। पौधे को लगाने के बाद जो है अगर सिंचाई नहीं होती है तो हल्की सिंचाई जो है किसान भाइयों को करते रहना चाहिए।
2: जी
1: जी
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको हम ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना
3: सर
2: नाम बताएं।
3: मैंने गमले में पौधा लगाया आम का,
0: जी,
3: तो उसकी चोटी पे तो पत्ते हैं, नीचे पत्ते नहीं है, और उसके पत्ते जो वो मुरझाए हुए टूटे हुए हैं, तो उसका क्या उपाय हो सकता है?
2: अच्छा, आप ये तो बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सा आप बोल रहे
3: मैं
2: हैं?
3: दिल्ली से, दिल्ली से, दिल्ली द्वारका से।
2: दिल्ली द्वारका से कौन, नाम बताएं?
3: भूप सिंह राजपूत।
2: भूप सिंह राजपूत जी, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जी सर,
3: जी
2: बताइए।
0: हाँ, भूप सिंह जी नमस्कार। सबसे पहले ये है कि ये जो आम वगैरह फल वृक्ष हैं, जैसे मैं अभी आपको चर्चा कर रहा था कि ये बहुवर्षीय होते हैं, और जो बहुवर्षीय फल वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें भी बहुत काफ़ी गहराई तक जाती हैं। अब देखिए, जो आपकी समस्या आपने बताया कि नीचे पत्ती नहीं है, ऊपर जो पत्ती है वो मुरझा गई हैं, एक्चुअली गमले में उसको उतना जगह नहीं मिल पाता, ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसकी जड़ें जाती हैं, उसके बाद नीचे जा करके रुक जाती हैं, और जो भी दूसरे जड़े हैं उसमें घूमते रहती हैं आपस में, ठीक है, वहीं पे जो है कॉइलिंग होता रहता है रूट्स का, और उसकी वजह से जो है पौधों का विकास भी नहीं होता, और धीरे धीरे पत्ती मुरझाने लगती हैं, और बाद में चल करके आगे हो सकता है कि आपका पौधा मर भी जाए।
2: डॉक्टर
0: तो ऐसी
2: साहब,
0: स्थिति में आपको पौधे को निकाल करके, अगर आपके पास कहीं थोड़ा भी जगह हो, तो उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको तो गड्ढे खोद करके 1 बाई 1 मीटर का उसको जमीन में आप लगा दीजिए, तो
2: उसी में
0: आपके
2: होते
0: पौधे
2: हैं
0: बच
2: ये,
0: सकते
2: क्योंकि
0: हैं।
2: आम का है, बड़े कुछ पौधे ऐसे हैं जो गमले में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
0: गमले में जैसे लगाना है, अगर भूप सिंह जी को अगर शौक है तो स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं,
1: जी
0: या कुछ नींबू के जो है बोनसाई टाइप के प्लांट्स होते हैं, हजारा वगैरह से लिमोना वगैरह होता है,
1: जी
0: वो लगा सकते हैं। बाकी ये जो है बहुवर्षीय पौधे जो है गमले में नहीं लगाए जा सकते, आम, अमरूद, ये जो है ये सब उसमें नहीं लगते हैं, या किन्नू भी नहीं लगेगा उसमें। नींबू के कुछ किस्में हैं जो बोनसाई टाइप के हैं, वो लग जाते हैं उसमें।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बात आती है कि इनका जो पोषण प्रबंधन है या खाद व्यवस्था है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, कब कब देनी है, ये भी हमें बताएं।
0: देखिए, पोषण प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। दो चीज़ बहुत जरूरी होता है, एक तो फल वृक्ष लगाने के बाद जो है उसमें जो है स्टेकिंग करना, मतलब कि पौधों की सिधाई के लिए आपको जो है एक सहारा देना पड़ता है। दूसरा पोषण प्रबंधन होता है। पोषण प्रबंधन का जहाँ तक वो प्रश्न है, वो अलग अलग होता है। जैसे आम के लिए जो है अलग पोषण प्रबंधन है, अमरूद के अलग है, केला के लिए अलग होता है, लीची के लिए अलग होता है। तो ये सभी जानकारी जो है आपके पास में किसी कृषि विज्ञान केंद्र या आजकल नेट में भी ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अवश्य किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा आप गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद जो है बिल्कुल जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर आपके पास उपलब्ध है, आप गोबर की खाद डालते जाएं, उसके साथ साथ जो है दूसरे एनपीके फर्टिलाइजर भी जो भी अनुशंसित मात्रा है उसकी आप देते जाएं। और आमतौर पर फसलों में, बहुवर्षीय फसलों में दो बार दिया जाता है, एक बार फरवरी मार्च में, दूसरा जो है सितंबर अक्टूबर में जो है वो दिया जाता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, आपने कहा कि बहुवर्षीय ये पेड़ होते हैं, जैसे आम की बात करी आपने, और भी बहुत सारे हैं, तो किसान भाई ने एक बार ये बागान लगा दिए, पौध की रोपाई कर दी, और एक लंबा समय तक उनको इंतजार करना होता है फल के लिए।
0: बिल्कुल,
2: तो
0: बिल्कुल।
2: क्या इस बीच वो कोई अंतर फसल भी ले सकते हैं?
0: हाँ, हम उसी भूमि पर बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, आमतौर पर ये देखा गया है कि किसान भाइयों का रुझान जो है फल वृक्षों की तरह कम होता है, क्योंकि उनके मन में एक अनुशंसा होती है कि भाई अभी हम फल वृक्ष लगाएंगे, उसके बाद जा करके जो है पता नहीं कब फल लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं, अच्छे अच्छे किस्में विकसित हो गई हैं। आमतौर पर 3-4 साल में आपको फल मिलने लगते हैं, और इकोनॉमिक यील्ड जिसको कहते हैं वो 7-8 साल बाद मिलता है। और शुरू के वर्ष में बिल्कुल ही किसान भाइयों को मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि अंतर फसलें लगाना चाहिए, और उसमें जो है आप सब्जी भी लगा सकते हैं, जैसे बैंगन है या मिर्च है या दूसरे कोई फसल है, जैसे कि हाँ दलहनी फसलें हैं, वो लगा सकते हैं आप, उससे अधिक जाय ले सकते हैं उसमें।
4: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों ने बाग लगाया हुआ है, तो उसमें क्या खरपतवार की कोई समस्या भी आती है, और अगर आती है तो उसका कैसे
2: निदान किया जाए?
0: देखिए, खरपतवार की समस्या बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई बारिश का मौसम है तो खरपतवार तो आएगा ही। लेकिन फिर भी मैं यहाँ किसान भाइयों को यह सलाह देता हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके वो खुद उसकी निराई गुड़ाई करें। जैसे कि उसमें जो है बीच में अगर 6x6 मीटर की दूरी है, तो उस बीच की में जो है इतनी उसको उसको खरपतवार को नियंत्रण करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी बेसिन है आपका, जो भी बेसिन आप बनाते हैं, जो थाला बनाते हैं, उसमें आप बिल्कुल जो है निराई गुड़ाई आपको करते रहना चाहिए। और वीडिसाइड का जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक आपका प्रयास हो, उसको उपयोग न करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जीवाणु वगैरह का नुकसान होता है, और उसमें जो है माइक्रोब्स जीतते हैं वो मर जाते हैं, तो इसका लंबे समय तक इसका असर पड़ता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बारिश हो रही है और हमारे बहुत सारे किसान भाई बागान लगा चुके हैं, पौध रोपाई कर चुके हैं, तो ये बारिश कितनी उनके लिए लाभदायक है पौधों के लिए?
0: ये लाभदायक ही नहीं है मैडम, ये तो अमृत है।
2: अमृत,
0: ये अमृत है उनके लिए, पौधों के लिए इस समय जो है वो अमृत है। और इस समय अगर जो किसान भाई लगाए हों, और जो टेम्परेचर पहले था और इस समय जो बारिश हुई है, सीधे जो है पौधों का एस्टेब्लिशमेंट जो है आप ये मान के चलिए करीब 100% आप मान के चलिए।
2: तो डॉक्टर साहब, हम भी बुला लेते हैं मेघा को कि और बरसे आगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बरसाइए।

0: डॉक्टर साहब, वाकई में मौसम जब ऐसा हो तो ऐसे गीत बड़े ही कामयाब हो जाते हैं और मन को प्रफुल्लित करते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि जो बागान तैयार कर रहे हैं उन किसानों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: हाँ, तो मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, देखिए दिन पे दिन जो है वो आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो है भूमि सिकुड़ता जा रहा है।
0: जी
1: तो हो सकता है कि आने वाले समय में आज से 20 साल बाद भूमि जो है फल वृक्ष के लिए उपलब्ध ही न हो।
2: हाँ जी
1: और चूंकि पोषण सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं किसान भाइयों को जाऊँ ये सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक आप फल वृक्ष लगाइए और पोषण सुरक्षा जो है।
0: बहुत अच्छा। और डॉक्टर रूपी अवस्थी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार। और अश्वनी,
2: हाँ
0: इस
2: जी,
0: कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन करने वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि कार्रवाई लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने लोक परीक्षा अनुचित साधा निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। लोकसभा की कार्यवाही इस समय जारी है। राज्यसभा में भी हंगामे की स्थिति थी। सुबह सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर

0: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई जीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि ई जीरो एफआईआर के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं।
1: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
0: झारखंड सरकार की नक्सल विरोधी अभियान नई दिशा नई पहल के तहत आज बड़ी सफलता मिली है। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार मौजूदा स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The Supreme Court today directed the release of student protesters who are under 18 and have no criminal records. The court asked authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the recent nationwide protests over the NEET paper leak. The Apex Court also observed that there was a need for fair and independent investigation into the allegations of injuries to students and police officials during the student protests last week. Hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations, the Apex Court issued a slew of interim directions. The 3-judge bench headed by Chief Justice Suryakant directed all states where protests were held to preserve CCTV footage, drone recordings, body camera footage, wireless communication records, PCR logs and other digital evidence pertaining to the protests. The court said the allegations prima facie warrant consideration of a fair and independent probe, which must also address the concerns of families of over 200 injured police personnel. The Lok Sabha has taken up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over alleged police action during student protest over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., Micro, Small and Medium Enterprises, MSME Minister Jitan Ram Manjhi introduced the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. During the introduction of the bill, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students. As the uproar continued, the Deputy Chairman Harivansh adjourned the House till tomorrow to meet again at 11 a.m. BJP MP Manoj Tiwari today said that during the NDA parliamentary party meeting, MPs had been briefed on developments relating to India's trade and free trade agreements with various countries. Talking to reporters on parliament premises, the BJP MP expressed hope that all political parties would participate constructively in the discussion to be held in the Lok Sabha on the bill to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Congress leader Shashi Tharoor said the opposition is looking forward to the discussion to be held in the Lok Sabha on the anti-paper leak bill. He was talking to reporters in Parliament premises. Punjab has been connected with 27 global destinations across North America, the UK, Europe and Australia with the launch of Air India's Easy Connect hub and spoke model at Sri Guru Ram Das Ji International Airport, Amritsar today. With the launch, two daily Easy Connect flights have been operationalized from Amritsar. Minister of Civil Aviation K. Ram Mohan Naidu, who addressed the gathering virtually, said, "Statistics show that approximately 150,000 passengers travel from Amritsar to Delhi every year to catch international flights." The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, was held today at the Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. A strong earthquake has struck southern Japan today. The Japan Meteorological Agency said the magnitude 7.1 quake occurred in Kumamoto Prefecture this afternoon. The Inter-Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for northern states including Delhi, in parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbha. Heavy rainfall conditions will continue over the next 2 days. Delhi and adjoining NCR witnessed heavy rainfall today. And with that, we end this news bulletin.

दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं प्राजिता आप सभी का मन भावन में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मौसम तो बहुत सुहाना है ही, और सुहाने मौसम में जब आप ही की पसंद के गीत आपको सुनवाए जाएं, तो ये जो मज़ा होता है ना मौसम का, ये दोगुना हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, मौसम के साथ पकौड़े हों, चाय हो और आपके पसंदीदा गाने हों, तो भाई बस क्या कहने। सब हिल स्टेशन, सब बड़ी बड़ी छुट्टियों पर जाना, पहाड़ों पर जाना, सब फेल हो जाता है। घर में बैठकर सुकून से ये सब चीज़ें अगर आपको मिल जाएं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने सुने आज, तो आपको एक आसान सा काम करना है। हमें ईमेल लिखकर भेजनी है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट के साथ, और हम सुनवाएंगे आपकी पसंद के गाने अब से लेकर 4 बजे तक। फिलहाल ये प्यारा सा गाना आप सबके लिए,

जी, ढेर सारे संदेशों के साथ हम देख रहे हैं कि मेल बॉक्स जो है वो अब भर चुका है। तो मैं शुरुआत करती हूँ राशिद हुसैन अंसारी के मैसेज के साथ, जिन्होंने हमें संदेश भेजा है नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी के साथ। और आप कुरावली मंदिर वाली गली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, मेरे हुजूर से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया भी हैं हमारे साथ, और आपने मैसेज भेजा है हमें एंजल सोनू पप्पी भाटिया के साथ। और जमशेदपुर से आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका, ये गाना सुनना चाहते हैं। बोधराज खोरवाल का भी हमें मैसेज मिला है, उत्तम नगर दिल्ली से। आपके साथ कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, अजनबी फिल्म से आपने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। और अगला मैसेज जो पहुंचता है हमारे पास वो आर कुमार का आया, वड़िंगखेड़ा पंजाब से। मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आप सुनना चाहते हैं कोई भी गाना। राजू मिगलानी भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और आरजू फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू आपके साथ हैं। पीएस नवांकर का भी मैसेज हमें मिलता है, और आप मेरे महबूब से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं निर्मला, विशाल नवांकर, नलेश, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुहरेकर, आप सब भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अशोक देशमुख प्रोग्राम सुन रहे हैं निम्भोरा महाराष्ट्र से, आदिनाथ वाघ और सुनील कोंडे के साथ। और आपको गाने सुनना पसंद है ऐसा बताते हैं। प्रवीण रंपारा का मैसेज हमें मिलता है गुजरात गांधीग्राम से, आपके साथ हैं पूजा, पायल, जगदीश जौहरी, और आप प्रेम पर्वत फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अगला गाना है, यानी कि मैं कह सकती हूं कि आज का जो पहला रिक्वेस्ट बेस्ड सॉन्ग है, उसकी फरमाइश की है गोविंद परमार, ज्योत्सना, हर्ष परमार, दीपल और जी के परमार ने, और आप सुनना चाहते हैं कर्ज फिल्म से ये गाना जो है किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

मन भावन सुन रहे हैं आप, अपराजिता है आपके साथ और आपकी पसंद के गाने भी तो हैं यहाँ पर। जानते हैं कि अगला गाना किसकी पसंद का होगा, कुछ नाम शामिल करते हैं और फिर बीच में से किसी का तो गाना होगा जो अब नेक्स्ट प्ले होने वाला है। अनवर साबरी का मैसेज हमें मिलता है, शन्नू मुदस्सिर जरीफ अंसारी के साथ आप सहारनपुर से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और साथ ही मैसेज मिलता है हमें होली चौक उत्तम नगर से राम जयराम खोरवाल, सचिन अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और आप हमजोली फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज जो हमारे पास आया है वो ओम कुमार का है, आप मिलन फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं विजय सुरलकर और रतनमाला भी, मोताला महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। नवाब अहमद भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली और सिराज मिथुन। अगला मैसेज कुमकुम जी का हमें मिलता है, साथी फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहती हैं और गुड़िया भी आपके साथ है। साथ ही जाकिर का भी संदेश हमें मिलता है, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दोस्त गाना पसंद कर रहे हैं वही सुनना आज अच्छा लग रहा है। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास गाजियाबाद से शीशपाल अकेला का, और आफताब अंसारी भी धर्मवीर फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजते हैं। गंज डुंडवारा से आपके साथ है रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जो अगला गाना है वो है प्यार का मौसम फिल्म से, जिसे सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजी है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार ने ख्याला से।

जी, तो बताते हैं आपको कि अगला मैसेज किसका मिला है हमें। संदीप मकड़ मैसेज भेजते हैं, और प्यार का मौसम, अरे ये गाना तो हमने सुनवा भी दिया आपको। ज्योति मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी जालंधर से इसी गाने की रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं, जो अभी अभी बिल्कुल आपने सुना। और प्रकाश गोगिया भी प्रोग्राम पसंद

0: हैं। दिनेश वर्मा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और उमराव जान से आपने एक गाने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजी है। आपके साथ हैं करुणा वर्मा रिंगिनी छत्तीसगढ़ से। नीटू मल्होत्रा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं खूबसूरत इमोजीज के साथ। हमें पानीपत से मैसेज करते हैं लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा के साथ। और आपके साथ हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का। अगला मैसेज हमें मोहसिन हाशमी का मिलता है और आपगंज डुंडवारा से नाजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद कलीम के साथ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और मैसेज आता है हमारे पास राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा कपिल चिंपा ईशान और पूजा परिहार का। और मैसेज ज़रूर ज़रूर शामिल करना, बिल्कुल ज़रूर ज़रूर शामिल हो चुका है। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज ताज मोहम्मद का आया हमारे पास और आप गुलाम साबिर राही महराज जहां के साथ आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से प्रोग्राम सुन रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपके परिवार के सभी के नाम एक ही लेटर से हैं। जी, क से आपके नाम शुरू हो रहे हैं, कृष्णा कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा। आप सब सुनना चाहते हैं अनोखी अदा फिल्म से ये गाना।
1: क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

बहुत सारी आपकी ईमेल्स हम तक पहुंच रही हैं, और मैं बता दूं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आप सुन रहे हैं मन भावन, जो एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप हमें ईमेल करते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर, और हम आपकी पसंद के गाने आपको सुनवाते हैं। तो अगला मैसेज हमारे पास जो पहुंचता है वो है मधु किरण का, और मधु किरण हमें मैसेज भेजते हैं, आपके साथ प्रकाश गोगी अनीता वर्मा हैं और आप पुराने श्रोता हैं हमारे, ऐसा

लिखकर भेजते हैं। सीताराम कांगड़ा भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, और आपके साथ है निखिल, बबीता बोट, तन्वी बोट, और आप रोहतक से प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रकाश वर्मा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, धरती कहे पुकार के से एक गाना सुनना चाहते हैं इस फिल्म से, और आपके साथ है प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा। साथ ही मैसेज मिलता है मोहम्मद कमर का, आपके साथ हैं तस्दीक अली मुजफ्फर अली, और गुन्नौर से आदिल कमर भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, ऐसा लिखते हैं आप। सतीश अनेजा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज का मौसम बड़ा बेईमान है, ये गाना सुनना चाहते हैं आप। बिमला अनेजा के साथ चंडीगढ़ से, नईम खान का मैसेज मिलता है विष्णु गार्डन से, आपके साथ है मुजस्सिम, असलम, निसार, अरमान और सरुन भाई। और अगला मैसेज जो हमें मिलता है वो प्रकाश वर्मा का है, आप पिघलता आसमान से गाना सुनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ से आप मैसेज करते हैं हमें। आपके साथ है प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, मुझे लग रहा है दो बार आपका नाम मैंने शामिल किया। मुकेश कुमार हैं प्रोग्राम सुनने वालों में, और नीरज, पूनम, अनन्या, जतिन, काजू, ममता, आप सब हमें हरियाणा से प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसा मैसेज आप लिखकर भेजते हैं। परदेश फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट लिख भेजी है। सत्येंद्र चंसोलिया का मैसेज आता है हमारे पास, और आपके साथ हैं आदर्श, सार्थक, अलौकिक, और जलौन से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। हमराज फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट की है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो अगला गाना है उसकी रिक्वेस्ट हमारे पास रोशन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन ने लिखकर भेजी है। दूसरा आदमी फिल्म से ये गाना आप सब सुनना चाहते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: स्थिर रखना।
1: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
3: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
3: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
2: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
4: तो भाई, आपकी पसंद के गाने आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगला गाना किसकी पसंद का है, इससे बताने से पहले कुछ नाम मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूं। और नवी हसन का मैसेज हमें मिलता है, रिमझिम गिरे सावन ये गाना आप सुनना चाहते हैं। शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद वारसी आपके साथ हैं। और किदवई नगर सिद्धपुरा से जुबैर अली खान, सभिया अंजुमन खान भी आपके साथ हैं। नासिर शेख का मैसेज हमें मिलता है और आप के साथ हैं नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मिखेल और जैनब मुजावर भी आपके साथ हैं। शंकर डोम का भी मैसेज हमें मिलता है, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्लू अंसारी आपके साथ हैं। देव शंकर डोम और प्रभावती भी हमें मैसेज करते हैं। अगला मैसेज है मोहम्मद फरमान का, और आप नरगिस खातून, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलमान के साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं दोलापुरा से। और

मस्कीन दादा भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा से। आपके साथ चंडीगढ़ से हैं राहुल, रचिता, केशु, रिधान खुराना और जॉन पर्ल विलिस डिकॉस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें मैसेज भी लिखकर भेजते हैं। तो देखते हैं कि इसके बाद किसका मैसेज आता है। इदरीस सैफी हमें मैसेज भेजते हैं, ऊंचे लोग फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज जो आया हमारे पास, हरिशंकर बक्सर बिहार से हमें मैसेज भेजते हैं और आपने रिक्वेस्ट की है शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, हरिशंकर बेलदार और प्रभा रानी बेलदार के साथ ये गाना जो अभी आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। प्रिल्यूड म्यूज़िक शुरू हो चुका है इसका, हमराज फिल्म से बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स का ये गाना महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में पहुंच रहा है आप सब तक। हरिशंकर प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अल्ताफ अंसारी के साथ। और अगला मैसेज हमारे पास आता है सुरेश नारंग का, सहारनपुर से आशा सोनाली नारंग आपके साथ हैं और दिलीप रामेकर भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहते हैं कि 3 बजे मैसेज भेजा लेकिन मैसेज खो गया। देखिए मैसेज मिल गया। अगला मैसेज उग्रसेन यादव का हमें पहुंचता है और आप शकुंतला यादव गरिमा के साथ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और चांदनी का हिट सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं। हरिशंकर भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और अगला मैसेज कमलकांत गुप्ता का हमारे पास आता है, आपके साथ श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता हैं।

न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए किसी भी डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब

पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजराबू राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने

आज पांच भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। महिला वर्ग में प्रीति पवार, प्रिया धनघस और परवीन हुड्डा प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और कपिल पोखरिया अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज अत्यधिक

0: up the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूँ

बाद की थी भी दो पद और शोध सहयोगी ग्रेड टू साइबर सुरक्षा का एक पद तथा शोध सहयोगी ग्रेड वन सचिवालय का एक पद भी रिक्त है। इस प्रकार कुल 30 पद रिक्त हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत शर्तों की जानकारी के लिए देख सकते हैं वेबसाइट www.natboard.edu.in। इसके अतिरिक्त 25 से 31 जुलाई 2026 के रोजगार समाचार पत्र में स्कैन कोड के माध्यम से भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। TGT गणित एक पद, TGT हिंदी परामर्शदाता, प्रयोगशाला सहायक, PTI सह मैट्रन महिला, नर्सिंग सिस्टर महिला, ये सब भी एक एक पद। आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट है sschittorgarh.edu.in। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में परामर्शदाता कीट

0: बीपी किए के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। दोनों ही पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए एशियाटिक सोसाइटी की वेबसाइट देखी जा सकती है, जिसका पता है asiaticsociety.culture.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: इंतजार में सावन बरसे।
1: कोई रंग नहीं होता बारिशों के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है।
2: That's right, absolutely, Monish. And I feel that everybody is probably who is in Delhi at least today, and I think in most of the country it's been raining since morning. तो जाहिर सी बात है, सबका दिल यही चाह रहा है कि फिजा इतनी रंगीन है तो क्यों ना घर से बाहर निकला जाए.
1: And as predicted, बिल्कुल ये जो कल कहा गया था बिल्कुल उसी के अनुरूप. काफी अफरा तफरी हालांकि सड़कों पर है इसकी वजह से दिल्ली में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जिसका इंतजार था.
2: Oh yes, long awaited rains that we've been waiting for, because everybody's been saying that El Nino ki wajah se abhi tak barish nahi hui khul ke. But I think the rain gods were quite merciful today, and I think it's a prelude to Saavan jo bahut jald shuru hone wala hai.
1: Ji haan, bahut jald Saavan ka aagaaz hone wala hai, aur shayad isi liye jo hai Delhi par ye meharbani hui hai Indra Devta ki. Namaskar dosto, studio ki ghadi mein baj gaye shaam ke 4:30, waqt hai aapki apni news magazine Parikrama ka. दोस्तों आधा घंटे की हमारी ये जो होगी मुलाकात, इसमें होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, मिलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से, जानेंगे क्या लाए हैं आज हमारे आपके लिए खास. इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहती है हमारी बराबर नजर, और फिर याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन. दोस्तों परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा, और हमारे साथ हैं सायरा मुज्तबा.
2: Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very, very fresh episode of Parikrama. Hazbe Dastur, kyunki naam hai hamare show ka Parikrama, so we'll go and do the Parikrama of our country. We'll go to different parts of our country and see what interesting stories our correspondents have from there. And of course, the last segment, Monish, in which today we'll remember some very, you can say, interesting personalities ki jinki aaj birth ya death

0: एनिवर्सरी है या बर्थडे है एंड वी हैव लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स लाइंड अप इन दैट सेगमेंट बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने 18 साल से कम उम्र और बगैर किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।
0: बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एडजर्न्ड सून आफ्टर असेंबलिंग अमिड रकस।
1: एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा।
0: 16 माओवादी इंक्लूडिंग 6 टॉप कमांडर्स सरेंडर बिफोर सिक्योरिटी फोर्सेज इन झारखंड।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की।
0: 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स सदर्न जापान, सुनामी वार्निंग इशूड।
1: और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
0: And yes, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at some important days that are there that are observed globally or nationally. Today we are going to talk about World Nature Conservation Day and World Hepatitis Day. So while talking about the World Conservation Day, well, there's something that connects each one of us, that is our planet. From the air we breathe to the water we drink, from the forests and rivers to birds, animals and plants, nature makes life possible. World Nature Conservation Day is being observed globally today.

0: दोस्तों, कैलाश खेर के ये सुर और ये दिन, ये दोनों हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन कीमती और सीमित हैं। उन्हें बचाना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है, बल्कि हमारी सेहत, हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से भी जुड़ा है।
1: That's very right, Monish. And in fact, I always quote that interview, of a conservationist, and she said that don't say save nature, say save yourself, because nature has the ability to probably, rejuvenate and reclaim the earth. Because jab hum log ati kar denge, to eventually, nature reclaim karega usko. But what we have to do is we have to ensure that we respect nature so that it ensures a smooth life for the coming generations. We have to save mankind. Mankind, of course, it's very much interconnected. In fact, the basis of mankind is the respect towards nature. And well, did you know that according to the International Union for Conservation of Nature, or IUCN, more than 44,000 species of plants and animals are currently threatened with extinction. That's a powerful reminder that biodiversity is under pressure like never before.
0: दरअसल सारा इसके जो कारण हैं वो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, जैसे पेड़ों की कटाई, रहने की जगह का खत्म होना, प्रदूषण, बढ़ता हुआ दुनिया का तापमान और प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। ये चुनौतियां न सिर्फ वन्य जीवों पर असर डाल रही हैं, बल्कि मौसम के बदलते पैटर्न, खाद्य सुरक्षा और साफ पानी की उपलब्धता के जरिए हमारी अपनी जिंदगी पर भी असर डाल रही है।
1: That's right, Monish. And conservation isn't just about protecting distant forests. It's about the choices we make every single day.
0: दरअसल पानी की हर बूंद सायरा जो हम बचाते हैं, जो हर पेड़ हम लगाते हैं, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करके और अपने आसपास की जगहों को साफ रखने की हर कोशिश से हम प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान करते हैं।
1: That's right. And well, World Nature Conservation Day reminds us that forests, rivers, wetlands, oceans, wildlife and even the soil beneath our feet, they are priceless. They provide us with clean air, safe drinking water, nutritious food, medicines and help keep our climate stable.
0: लेकिन दोस्तों, आज ये प्राकृतिक

0: बगैर जरूरत की लाइटों को बंद कर देना, दोबारा इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल को साथ रखना, स्थानीय पेड़ लगाना, कचरा कम करना या बस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना, इनसे सच में एक बहुत बड़ा फर्क आ सकता है।
1: And conservation is for everyone, whether you're a student, teacher, parent, a farmer, scientist, an artist or a business owner. Each one of us has a role to play. When communities work together, even simple everyday choices create lasting impact.
0: सायरा, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हवा एकदम साफ हो, जंगल फल फूल रहे हो, समुद्र स्वस्थ हो और शहर हरियाली से भरे हो। लेकिन ऐसा भविष्य मुमकिन है, मगर सिर्फ तभी जब हम आज जिम्मेदारी और सावधानी के साथ कदम उठाएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मनीष। सो टुडे लेट्स मेक अ सिंपल प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स टू यूज रिसोर्सेज वाइजली, रिस्पेक्ट नेचर एंड इंस्पायर अदर्स टू डू द सेम। Conservation isn't about perfection, it's about making better choices, one step at a time. And before we conclude, here's a thought to carry with you. We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from future generations.
0: दरअसल हम आज जो भी काम करते हैं, उसी से दुनिया का स्वरूप तय होता है जो आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। आइए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर धरती के रक्षक बनकर इसकी सुंदरता का हम जश्न मनाएं। हम सब मिलकर एक ज्यादा हरे भरे, सेहतमंद और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि जब प्रकृति फलती फूलती है तो हम सब भी फलते फूलते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। एंड दैट विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डेडलाइन इंडिया। वेल, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एवरी ईयर ऑन 28th ऑफ जुलाई द वर्ल्ड कम्स टुगेदर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस व्हिच इज अ डिजीज दैट ऑफन रिमेन्स हिडन अंटिल इट कॉजेस सीरियस डैमेज।
0: और इसीलिए इसे अक्सर कहा जाता है साइलेंट एपिडेमिक, एक खामोश महामारी। हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि उन्हें ये बीमारी है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें सालों तक कोई लक्षण ही महसूस न हो।
1: एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अवेयरनेस एंड अर्ली टेस्टिंग सो इम्पोर्टेंट। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हेपेटाइटिस।
0: दरअसल हेपेटाइटिस लिवर में सूजन की एक समस्या है। ये हेपेटाइटिस वायरस बहुत ज्यादा शराब पीने, कुछ खास दवाओं, जहरीले पदार्थों या ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से हो सकता है।
1: एंड वेल, देयर आर फाइव मेन हेपेटाइटिस वायरसेस, ए बी सी डी एंड ई। अमंग दीज, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज एंड कैन लीड टू सीरियस कंडीशंस लाइक सिरोसिस एंड लिवर कैंसर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड।
0: और अब एक सवाल हमारे सभी सुनने वालों से, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के कई दिनों तक असामान्य रूप से थकान को महसूस किया है?
1: और मे बी यू हैव हैड नौजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, माइल्ड फीवर और पेन इन द अपर राइट साइड ऑफ योर एब्डोमेन?
0: अगर हाँ, तो इन लक्षणों को आप नजरअंदाज न करें। हालांकि ये लक्षण कई बीमारियों में हो सकते हैं, लेकिन ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के शुरुआती संकेत भी हो सकते हैं।
1: Yes, right, and that's why you need to act quick. Well, you need to list the factors: feeling unusually tired or weak, or maybe the general discomfort, loss of appetite. All of these are actually signs of, you can say, hepatitis.
0: जी मिचलाना, उल्टी आना, हल्का बुखार, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी।
1: And well, the bad news is that not everyone experiences these symptoms. Sometimes even in chronic hepatitis B and C, people may remain completely symptom free for years, and that's why wo jo annual checkups hote hain, that is very important.
0: Bilkul Zahira, aur isiliye hum ek zaruri sawal par aate hain, isse ki bimari ka jald pata chalna itna zaruri kyon hai?
1: Well, because detecting hepatitis early allows doctors to start treatment on time, monitor liver health and prevent complications such as liver failure, cirrhosis and liver cancer. And the theme of this year, World Hepatitis Day, is Let's Break It Down, which is a call to remove the barriers that stand between people and the services that can save their lives. Let's hear more from our correspondent.
2: The World Health Organization currently targets the global elimination of viral hepatitis by 2030 to eliminate this disease as a public health threat. On the occasion of World Hepatitis Day, doctors at the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, highlighted the rising burden of liver diseases and stressed the importance of early prevention through healthy lifestyle choices. Addressing a press conference in New Delhi, Professor in the Department of

0: Gastroenterology, Dr. Shalimar said the pattern of liver disease in the country is changing. He noted that while hepatitis B was once the leading cause of liver cancer, but now fatty liver disease has emerged as a major contributor. Talking to Akashvani News, Dr. Shalimar urged people to spread awareness about hepatitis and undergo screening.
1: Hepatitis A amuman bachchon mein dekha jata hai aur hepatitis E badon mein dekha jata hai. Aur jo hepatitis B aur C virus hai, ये इन्फेक्शंस करते हैं जो कि हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक बार जब शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है लिवर में रहते हैं और लंबे समय में लिवर में नुकसान दे जाते हैं। एक अच्छी चीज ये है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हमारे पास आज की डेट में वैक्सीन अवेलेबल है। तो बच्चों में जब ये लगाई जाती है तो ऑलमोस्ट 95% चांस रहता है कि आपको आगे चल के कभी ये इन्फेक्शन नहीं हो। हेपेटाइटिस सी का जो इन्फेक्शन है उसमें भी बहुत अच्छी न्यूज है कि हमारे पास दवाइयां अवेलेबल है जिससे कि हम हेपेटाइटिस सी वायरस को क्योर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई के जो इन्फेक्शन है वो यूजली अमूमन अपने आप ठीक हो जाते हैं।
0: The 2026 campaign calls for turning proven science into action through stronger political commitment, sustained investment and efforts to expand equitable access to prevention, testing, treatment and care. With Aman Yadav, Nitika Gupta for Parikrama.
2: And well, Monish, our government has taken several important steps to prevent hepatitis. In 2018, the Government of India launched the National Viral Hepatitis Control Program to provide free screening and treatment for hepatitis B and C across the country. Also, if anyone wants more information about hepatitis, prevention, testing or treatment centers, there's a National Viral Hepatitis Control Program toll-free helpline 1-800-11-6666. I repeat, 1-800-11-6666.
3: तो दोस्तों, एक फोन कॉल आपके सवालों का जवाब दे सकता है और आपको नजदीकी हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंचा सकता है। इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आइए हम याद रखें कि जागरूकता, शुरुआती जांच और समय पर इलाज न सिर्फ आपकी हमारी अपनी सेहत बल्कि हमारे परिवारों और समुदायों की सेहत की भी रक्षा कर सकते हैं।
2: And before we proceed, Monish, well, President Draupadi Murmu today launched various projects in virtual mode on the completion of 4 years of presidency at the Rashtrapati Bhavan. In her address, she highlighted the nation's development and cultural renaissance. President Murmu said that over the past 4 years, India's rich cultural heritage and sense of self-pride have been revitalized alongside inclusive growth.
4: In 4 years, we have developed the culture of देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नई संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
3: सायरा, ये चलें अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानें क्या लाए हैं आज वो हमारे लिए खास। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं झारखंड के पवित्र देवघर और दुमका, जहां आगामी 30 जुलाई से आस्था का एक ऐसा समंदर उमड़ने जा रहा है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। पवित्र श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम में आयोजित होने वाला ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में अब महज 2 दिन बचे हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस वर्ष झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए समय रहते अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। 150 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर जगह जगह चिकित्सा शिविरों की स्थापना और 2400 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जलार्पण को सुगम बनाने के लिए कतार प्रबंधन की आधुनिक अर्घ्य प्रणाली को अंतिम रूप दे दिया गया है।
6: तैयारी देखकर लग रहा है कि हम लोग सभी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जहां भी सिविल वर्क है, इंफ्रा वाला काम है, आवासन का, शौचालय का, साफ सफाई, बिजली और जो मंदिर परिसर में काम चल रहा है अलग अलग, उनके लिए जो टेंट सिटी वगैरह बनता है।
5: राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इस बार देवघर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के साथ साथ राज्य की लोक कला को भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने जा रही है। देश के कोने कोने से और पड़ोसी देश नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं का अग्रिम जत्था अभी से ही सुल्तानगंज और देवघर पहुंचने लगा है, जिससे चारों ओर बोल बम की गूंज सुनाई देने लगी है।

घर में बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण करने के बाद श्रद्धालु दुमका स्थित फौजदारी दरबार यानी बाबा वासुकीनाथ धाम की ओर रुख करेंगे। निश्चित रूप से 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा यह श्रावणी मेला प्रशासनिक मुस्तैदी, सरकारी सांस्कृतिक पहलों और अटूट जन सहभागिता का एक अनूठा उदाहरण पेश करने के लिए तैयार है। परिक्रमा के लिए रांची से मैं

0: And now we head to the north, to Ladakh, where the Ladakh administration started a series of initiatives to become one of India's largest certified organic farming places. So let's hear more from our correspondent.
1: Ladakh became another place in the country where the government has completely banned the use of chemical and synthetic fertilizer for agriculture purposes. The decision on the imposition of the ban came into effect from 18th of this month through an order of Lieutenant Governor V.K. Saxena. The violation of the order will attract a minimum of penalty of ₹10,000. It is considered as a significant step by UT administration to safeguard Ladakh organic certification effort under the Mission Organic Development Initiative. Yesterday, Lieutenant Governor V.K. Saxena awarded organic certification to 102 more villages situated in Sham, Sanskar, Kargil and Dras district of Ladakh. With this number, a total of 207 villages of Ladakh are now certified as organic certified village. Villages are being converted into organic through the implementation of Parampragat Krishi Vikas Yojana under the National Mission on Sustainable Agriculture. Farmers are educating and mobilizing on organic inputs for agriculture purposes. Yangchan Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
2: अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी साहित्य जगत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन है। पिछले कई साल से ये सम्मेलन साहित्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर विचार विमर्श का एक प्रमुख मंच रहा है। अगले साल जनवरी में पुणे 100वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है और उसकी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। तो आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे संवाददाता की ये जरूरी रिपोर्ट।
3: अगले वर्ष 28 से 31 जनवरी तक पुणे में आयोजित होने वाले 100वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सम्मेलन से पहले 99वें नांदी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पहला मराठी साहित्य सम्मेलन वर्ष 1878 में पुणे में ही आयोजित हुआ था। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए पहला नांदी सम्मेलन भी पुणे में ही आयोजित किया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए हाल ही में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र साहित्य परिषद द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। अब तक राज्य और देश के जिन जिन शहरों में मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुए हैं, उन सभी शहरों में ये 99वें नांदी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही अब तक के सभी सम्मेलन अध्यक्षों के अध्यक्षीय भाषणों का संकलन कर एक विशेष ग्रंथ भी प्रकाशित किया जाएगा। 100वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सभी संबंधित संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। परिक्रमा के लिए माधवी कुलकर्णी, पुणे।
0: And good news for all lovers of space and its mysteries. Well, Indian astronomers, along with their international collaborators, have reported the rare discovery of a blue straggler star, or BSS, caught in the act of formation, providing direct evidence of how such stars are formed or created. Let's hear more in this report.
4: Blue straggler stars are a peculiar class of stars found in star clusters that appear hotter, brighter, and more massive than their peers, and have long puzzled astronomers seeking to understand their origin and evolution. The most widely accepted explanation is that these stars gain mass from a companion or through stellar mergers, effectively rejuvenating themselves. Yet, direct observational evidence of such formation processes has remained extremely rare. To investigate this, astronomers from Indian Institute of Astrophysics and Autonomous Institute of the Department of Science and Technology studied a remarkable binary star system in the old open star cluster Kalinda 261, located about 9,500 light years away. The system was identified as a promising candidate for further investigation, since its properties suggested ongoing interaction between the two stars. The Ministry of Science and Technology informed that astronomers have sought to understand origin and evolution of blue straggler stars for a long time. With Sayukta Yadav's report, Valsa Williams for Parikrama.
0: And And well, now the latest from the world of cinema for cinephiles. Well, veteran Hindi cinema star Rekha will be presented with the prestigious Excellence in Cinema Award at the Indian Film Festival of Melbourne in Australia. Rekha will attend the film festival as the guest of honor.
2: दोस्तों, इस महोत्सव में भारतीय सिनेमा में रेखा के अद्वितीय और असाधारण योगदान का जश्न मनाने के लिए फिल्म उमराव जान दिखाई जाएगी, जिसमें सिलसिला, खूबसूरत इजाजत, घर, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और कोई मिल गया जैसी फिल्में भी शामिल रहेंगी। और मुजफ्फर अली द्वारा निर्देशित उमराव जान रेखा के करियर की अब तक की सबसे निर्णायक फिल्मों में से एक है और इस साल इसकी रिलीज के 45 साल पूरे हो रहे हैं।

0: Indeed, Monish, this was one of those performances or characters that defined the entire career of Rekha and made her one timeless icon. Let's hear one more dialogue from the film.
1: न जाने मोहिन आंखों को क्या हो गया, कभी कभी शमा की रोशनी भी छुप जाती है।
2: अगर हम किसी भी काबिल हो तो हर मदद के लिए हाजिर
1: है। नवाब साहब, आप तो न जाने क्या समझ बैठे, कोई बात भी तो हो, लीजिए लोरी खाइए।
3: और दोस्तों, इस बीच एक्टर पंकज त्रिपाठी को फिल्म फेस्टिवल में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेलबर्न का इंडियन फिल्म फेस्टिवल अगले महीने की 13 से 23 तारीख तक आयोजित होना है। आइए अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की हलचल। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को है जिनका आज जन्मदिन, जयंती या फिर पुण्यतिथि।
0: That's right, Monish. So, who's the first on our list?
3: जी हाँ, सबसे पहले हम अब याद करेंगे, पुण्यतिथि है आज महाश्वेता देवी की, भारत की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका, जिन्होंने बांग्ला भाषा में बहुत ही संवेदनशील और अपने वैचारिक लेखन के माध्यम से उपन्यास और कहानियों के जरिए साहित्य को और समृद्ध बनाया। अपने लेखन के साथ साथ महाश्वेता देवी ने समाज सेवा में भी हमेशा बड़ी सक्रियता से भाग लिया था। 1996 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि महाश्वेता देवी को।
0: That's right. We're also remembering Kumkum, well, the actress of yesteryears on her 10th anniversary, best known for her roles in Aankhein, Lalkaar, Mr. X in Bombay, Dil Bhi Tera, Hum Bhi Tere, Son of India, Kohinoor and many, many more films. Let's

0: और दोस्तों दरअसल 1991 में सलमान खान के साथ जो आई थी फिल्म कुर्बान वो बहुत ही यादगार रही और इस फिल्म में उनके साथ कबीर बेदी और सुनील दत्त भी नजर आए थे। फिर साल 92 में जो रिलीज हुई थी जो जीता वही सिकंदर, उसने तो उनकी किस्मत ही बदल दी और दर्शकों को वो बहुत पसंद आई और आज भी उनके चाहने वाले उनके गीतों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं और हम उन्हें और उनके चाहने वाले दोनों को उनके जन्मदिन की ये मुबारकबाद पेश करते हैं। और दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और सायरा मुश्तबा को ये कार्यक्रम यही समाप्त करने के लिए। आप दोबारा सुनना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट पर, आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ

लेकर गाते गुनगुनाते आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गाते गुनगुनाते, जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं आती हूँ तब आपके लिए आते हैं बहुत सारे सवाल, जिनके जवाब आप हमें लिख भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। तो इससे पहले ये सिलसिला, ये जो कड़ी है, ये शुरू हो, हम सुनते हैं एक प्यारा सा गाना कभी हाँ कभी ना से, और फिर मैं पूछूंगी आपसे कुछ सवाल जिनके सही जवाब आप मुझे लिखकर भेजेंगे हमारी ईमेल आईडी पर, और फिर हम आपके सही जवाब वाले नाम भी यहाँ शामिल करेंगे। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द आंसर देने हैं, और आप इस काम के लिए तैयार हो सकें इसीलिए ये गाना मैं आपको सुनवा रही हूँ कि आप मेंटली भी और फिजिकली भी बिल्कुल सेट होकर बैठ जाएं आंसर लिखने।

तैयार है ना आप हमारे सवाल सुनने के लिए, या आप इन्हें रिडल भी कह सकते हैं, क्विज कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। गाते गुनगुनाते में एंटरटेनमेंट आपका पूरा होने वाला है और ये जानकारी, ये ट्रिविया मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लिखकर भेजेंगे अपने जवाब जो होंगे फिल्म के नाम। तो पहला सवाल आपके लिए है, 90s की शुरुआत में एक रोमांटिक एक्शन फिल्म आई जिसे डायरेक्ट किया राज कंवर ने। ये कहानी है काजल, रवि और राजा की। फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और गानों की तो बस पूछिए मत, सभी चार्टबस्टर रहे। नदीम श्रवण के गानों को अपने लिरिक्स से सजाया समीर साहब ने। फिल्म में मेन लीड के अलावा यानी कि हीरो

बातें गुनगुनाते सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि नवीन भाटिया साहब पहले, दूसरे या तीसरे में जरूर होते हैं। अगर पहले नंबर पे नहीं होते तो दूसरे पे होते, दूसरा नहीं तो तीसरा। और नागेंद्र ठक्कर जो दूसरे नंबर पर आते आते रह गए इस बार, उनका भी नंबर आता है, क्योंकि दोनों फिल्मों के नाम डी से शुरू हो रहे हैं, इसलिए मुझे लगा आपने सही जवाब दिया। हालांकि पहला सही जवाब नवीन भाटिया ने दिया है, इसके बाद दूसरा सही जवाब संकेश पाटिल ने दिया है, और तीसरा सही जवाब गिरीश बम अजिंक्य बम

हालांकि इसके बाद नागेंद्र जी ने सही जवाब लिख दिया है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे में नहीं आए हैं ये, थोड़े कंफ्यूज लगे। पहले आपने दिलवाले लिखा फिर दीवाना लिखा। मैं आपको बता दूं कि फिल्म का नाम है दीवाना, जिस फिल्म की मैंने यहाँ बात की, जिसकी फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए वो

देगा उसे हम नहीं शामिल करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर डिक्लेयर हो चुका है। खैर, आदित्य कालेले ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सतप्रकाश सनोठिया, आपका जवाब सही नहीं है, मैं नाम शामिल कर चुकी थी इसलिए मैंने बताया। संतोष सक्सेना बिल्कुल सही बताते हैं, और सही जवाब देने वालों में सरोज यादव, दिलावर खान रघुवीर नगर से, सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी, डीबी राणा साहब नेहरू विहार से, मुताला महाराष्ट्र से सही जवाब देते हैं विजय रतनमाला कुमकुम सुरलकर, और बबलेश पवार ने भी बिल्कुल सही सही बताया है, और ये भी बताया कि 1992 में आई ये फिल्म, बिल्कुल सही। और बस इसी के साथ सही जवाब जो है ईमेल्स पर जो हमें मिले उनका अभी सिलसिला इतना ही है। आप सबने जिन्होंने सही जवाब दिया बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए और मौके हैं, यानी कि अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे और सवाल पूछने के बाद दीवाना फिल्म से आपको गाना भी सुनवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं जल्दी से कि दीवाना जो फिल्म है ये 1992 में आई, और इसमें ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान जो है वो मेन लीड में इसमें नजर आए, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। तो अगला सवाल जो है वो आपके लिए है, 1990 में महेश भट्ट की एक फिल्म आई जिसके निर्माता रहे गुलशन कुमार। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया, यानी कि उनके दिल के बेहद करीब फिल्मों में से ये एक बन गई है ना। ये कहानी है राहुल की, जो मेहनत करके जाना माना सिंगर बन जाता है और अनु से मिलता है जो एक मॉडल है। इस कहानी को अगर आप जानते हैं पहचानते हैं, आपको जानी पहचानी लग रही है, तो आपको जल्दी से ये जानी पहचानी सी कहानी का फिल्म का नाम लिखकर भेज देना FM Gold AIR Delhi।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई।

भी बिल्कुल सही बताती हैं।

हम आपको एक सुनवाएंगे, बाकी आप सुन सकते हैं। और दिलावर खान ने भी बिल्कुल सही बताया है, निरंजन भलेरो ने बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजा है, जगदीश बजाज है विकासपुरी से, सुदर्शन अनीता से ब्रह्मुखी है, गिरीश बम अजिंक्य बम ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा, विरमगाम से अजीत कुमार भावसार हैं, और विजय सुरलकर रतन मारा सुरलकर ने भी बिल्कुल सही बताया है, संदीप सलूजा नोएडा से बताते हैं सही सही आंसर, और आनंद सिंह का भी सही जवाब हमारे पास आता है, आप मुंबई से हमें

सुनने से पहले आपसे अगला सवाल भी पूछूंगी। अगला सवाल आपके लिए है डेविड धवन की फिल्म से, जिसमें हीरो का यह डबल रोल है। अब डबल रोल में एक हीरो जो है, यानी कि एक कैरेक्टर जो दिखाया गया है हीरो का, वो पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करता हुआ दिखाया है, तो दूसरा जो है वो नेगेटिव किरदार में है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, आनंद मिलन ने म्यूजिक कंपोज किया है और गीत लिखे हैं समीर साहब, कुमार सानू, पूर्णिमा और सुरेश वाडकर, साधना सरगम, अभिजीत भट्टाचार्य, कविता कृष्णमूर्ति, इन सब ने इस फिल्म को अपनी आवाजों से सजाया है गानों के माध्यम से, है ना। तो अगर आप पहचान चुके हैं फिल्म का नाम तो जल्दी से टाइप कर दीजिए fmgoldaiadelhi@gmail.com पर, इसे भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। तब तक हम सुनते हैं आशिकी फिल्म से ये एक बहुत ही खूबसूरत गाना। रिक्वेस्ट आपने एक दोनों ही गाने की भी की थी आशिकी फिल्म से, और मुझे लगता है कि सभी गाने सबके फेवरेट हैं, तो ये वाला सुन लेते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

यानी कि डबल रोल वाले हीरोज को ढूंढा और फिट करने की कोशिश की जो सारे हिंट्स थे। किसी ने जुड़वा भी लिखकर भेजा, डुप्लीकेट जुड़वा, बोल राधा बोल, ये है सही जवाब। और सही, हाँ, गोपी किशन भी किसी ने लिखा है। तो पहला सही जवाब काफी देर बाद हमें मिला और वो उमेश कुमार साहब ने खयाला से लिखकर भेजा है। और टाइम जो कंप्यूटर बता रहा है वो है 5:38 पर आपने सही

फिर बहुत सारे लोग जुड़वा और कुली नंबर वन लिखने लगे, पवलेश पवार साहब ने। तो आप सब जो तीन लोग हैं, डीबी राणा साहब का तीसरे नंबर पर सही जवाब आया और चौथे नंबर पर पवलेश पवार साहब है, आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जुड़वा जो है वो फिल्म का नाम नहीं है, बोल राधा बोल है जिसका मैंने जिक्र किया। और ये जो फिल्म है ना, इसमें ऋषि कपूर और जूही चावला मेन लीड में रहे और ऋषि कपूर का डबल रोल था, उन्होंने किशन मल्होत्रा और टोनी का किरदार इसमें निभाया और बहुत ही बढ़िया फिल्म ये थी। तो आप में से बहुत ही कम लोगों ने इस फिल्म को पहचाना है, थोड़े कंफ्यूज्ड नजर आए, कोई बात नहीं, अगला सवाल भी है। बोल रहा था बोल का टाइटल ट्रैक मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन अगला आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती हूँ। 90s की एक फिल्म है जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया और निर्माता रहे वीरू और वीना देवकर। आनंद बख्शी के लिखे गानों को म्यूजिक से सजाया जतिन ललित ने। मेन लीड्स की अगर बात करें तो वो तो आप लोग गेस करेंगे, पर इनके साथ किस किस ने काम किया वो मैं आपको बता देती हूँ। फरीदा जलाल, अवतार गिल, अचला सचदेव, राजपाल यादव, ये सब भी फिल्म में रहे। ये कहानी है आनंद, कविता और नेहा की, और फिर फिल्म में एंट्री होती है नंदिता की। अगर आपने इस थोड़े से कहानी के प्लॉट से पहचान लिया है फिल्म को, और हमने जो हिंट्स दिए उनसे कुछ निकल कर सामने आ रहा है, फिल्म का नाम कुछ जहन में आता है, तो जल्दी से उसे टाइप करें fmgoal@delhi@gmail.com और सेंड कर दें हमें। सुनते हैं तब तक हम।

पर आते हैं बबलेश पवार जो हैं गांधी

पानीपत से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। और इसके बाद वैशाली बम ने भी रिया के साथ और गिरीश बम के साथ वडोदरा से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेज दिया है। गिरीश बम का और अजिंक्य बम का भी मैसेज आया अलग से हमें। जैमिन जैन है राजकोट से, और इसी के साथ सही जवाबों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आज का जो ये सवाल जवाब का सिलसिला है वो भी इन जवाबों के साथ यहीं समाप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल क्या करे वो फिल्म है जिसमें अजय देवगन, काजोल, महिमा चौधरी और चंद्रचूड़ सिंह ने एक्टिंग की, और जतिन ललित का इसमें म्यूजिक रहा। कहानी तो मैंने आपको बताई, अजय देवगन ने आनंद किशोर का रोल निभाया और नंदिता, कुछ कैरेक्टर नेम्स मैंने आपको बताए थे, नंदिता के रोल में नजर आई काजोल और कविता किशोर के रोल में महिमा चौधरी। तो वहीं सोमदत्त की अगर बात करें तो सोमदत्त का किरदार चंद्रचूड़ सिंह ने जो है इस फिल्म में प्ले किया है। इस फिल्म से मैं आपको गाना सुनवा रही हूँ सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला की आवाज़ में। आप सभी ने बढ़ चढ़कर इस कह सकते हैं क्विज में, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया भी।

इसी के साथ अपराजिता को दीजिए यहीं विदा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जो है आपका सच्चा हम सफर। अपना और अपनों का खूब खास ख्याल रखिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानवाधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक

होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The discussion is underway in Lok Sabha on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, taking cognizance of the recent incidents of the paper leak, Prime Minister Narendra Modi decided that there is a need to further strengthen the legal framework to prevent malpractices.
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
0: Participating in the discussion, Dayanidhi Maran of DMK claimed the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, is the core issue which is not uniform and is against students. The discussion is still underway. Meanwhile, the Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET paper leak issue. The Supreme Court today observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. It also directed the release of minor student protesters arrested during the demonstrations and having no previous criminal records. The court asked the authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has directed the State Home Department to withdraw all cases registered against students who recently staged protests across the state on the NEET paper leak issue. The move is in line with the center's guarantee that no legal action will be taken against students who participated in the protests. India has termed the so-called legislative assembly elections being conducted in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, an attempt by Islamabad to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Vandir Jaiswal called it a cosmetic electoral exercise and said that Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. Meanwhile, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, at least 20 people have been killed and several others are injured after Pakistani security forces opened fire on protesters during a long march organized by the Joint Awami Action Committee at Rawalkot yesterday. According to reports, several of the injured are in critical condition, raising fears that the death toll may increase. The violence coincided with the first phase of legislative assembly elections held in POJK yesterday. Pakistani authorities are primarily targeting the groups calling for boycott of the ongoing polls. President Draupadi Murmu today presided over a special book release ceremony at Rashtrapati Bhavan, marking the completion of 4 years of her presidency. Vice President C.P. Radhakrishnan released 5 commemorative books on the occasion. The government has decided to impose stock holding limits on sugar dealers across the country from the 1st of August till the 30th of November this year. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the move is aimed at curbing hoarding, discouraging speculative trading and ensuring the continuous availability of sugar at reasonable prices. In shooting, Indian pair of Sonam Uttamaskar and Himanshu Dhillon secured the bronze medal in the 10-meter air rifle mixed team event at the ongoing ISSF World Cup in Hangzhou, China today. At the Commonwealth Games, India's Srihari Natraj qualified for the 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland today. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति शर्मा। आज के कार्यक्रम का विषय है गांव का नया स्टार्टअप मॉडल, स्टार्टअप विलेज, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत। जब भी स्टार्टअप की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में महानगरों की तस्वीर उभरती है, तकनीक आधारित कंपनियां, बड़े निवेश, आधुनिक दफ्तर और युवा उद्यमी। लेकिन क्या भारत के गांव भी स्टार्टअप की इस कहानी का हिस्सा बन सकते हैं? क्या सीमित संसाधनों वाला कोई ग्रामीण परिवार भी अपना सफल व्यवसाय खड़ा कर सकता है? और क्या उद्यमिता केवल शहरों तक सीमित है या अब ये गाँव की चौपाल तक पहुँच चुकी है? इन्ही सवालों का जवाब देने का प्रयास करता है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP। वर्ष 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM के अंतर्गत शुरू की गई ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका लक्ष्य केवल छोटे व्यवसाय शुरू कराना नहीं बल्कि ऐसे स्थानीय उद्यम विकसित करना है जो रोजगार पैदा करें, आय बढ़ाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। आज इस योजना के तहत देश भर में 4,32,000 से अधिक ग्रामीण उद्यम स्थापित हो चुके हैं। इनमें लगभग 86% उद्यमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से आते हैं। महिलाओं की भागीदारी भी इस योजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। किसी भी सरकारी योजना की सबसे बड़ी पहचान उसके लाभार्थियों की सफलता होती है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ने देश भर में ऐसे अनेक ग्रामीण उद्यमियों को नई दिशा दी है। इन्हीं में से एक है नागालैंड के युवा उद्यमी वी सेहो किखी, जिनकी प्रेरणादायक यात्रा इस योजना के सकारात्मक प्रभाव और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की सशक्त मिसाल प्रस्तुत करती है। आइए सुनते हैं वी सेहो किखी से उनकी अपनी जुबानी उनकी प्रेरणादायक उद्यमिता की यात्रा।
4: My first haircut was a disaster, but that was 7 years back, and today it's a different story. I've mastered a few haircuts, one of which is the fade undercut. My name is Viseho. I'm 24 years old. I'm a barber. I'm a business owner. There was not a single barber shop in my village, so I decided that I will open the first barber shop once I've mastered the skill. In 2017, the dream came true. My first customer was an uncle who paid me 40 rupees. Here I learned the value of money. Today I'm earning about 8,000 every month. Most of my morning and evening are spent working in this salon. My journey has been challenging, but I also receive a lot of support and encouragement.
3: किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता केवल उसके बजट या लाभार्थियों की संख्या से नहीं आंकी जाती बल्कि इस बात से तय होती है कि वह किसी आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाती है। तो आइए अब एक ऐसी कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपने वर्षों की नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति ली है और अब आप अपने गाँव लौट आए हैं। मन में कुछ नया करने की इच्छा है लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ नहीं आ रहा। ऐसे में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपको सही सलाह दे, व्यवसाय की योजना बनाने में मदद करे और आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराए? आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
5: गांव लौटकर नया सफर, क्या SVEP यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बदल सकती है आपकी दूसरी पारी? जरा सोचिए, करीब 60 वर्ष की उम्र में आपने नौकरी से सेवा निवृत्ति ले ली है। वर्षों तक शहर में काम करने के बाद अब आपने तय किया है कि जीवन की दूसरी पारी अपने गांव में बिताई जाए।

0: आएगी। लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है, अब आगे क्या? क्या केवल पेंशन के सहारे जीवन बिताया जाए, या फिर वर्षों का अनुभव, लोगों से जुड़ने की समझ और थोड़ी सी बचत मिलकर एक नया व्यवसाय खड़ा कर सकती है। मान लीजिए आप अपने गांव में मसाला प्रसंस्करण इकाई, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, डिजिटल सेवा केंद्र, सिलाई इकाई या कृषि उत्पादों की पैकेजिंग का छोटा उद्यम शुरू करना चाहते हैं। विचार तो है लेकिन पूंजी सीमित है, व्यवसाय का अनुभव भी नहीं है और यह भी नहीं पता कि शुरुआत कहां से की जाए। यहीं से शुरू होती है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP की भूमिका। सबसे पहले आपको अपने गांव के स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या ब्लॉक स्तर पर संचालित ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंटरप्राइज प्रमोशन से संपर्क करना होगा। वहां यह समझाया जाएगा कि आपकी व्यवसायिक विचार स्थानीय जरूरतों के अनुरूप है भी या नहीं, यानी गांव में किस उत्पाद या सेवा की मांग है, कच्चा माल उपलब्ध है या नहीं और व्यवसाय टिकाऊ रहेगा या नहीं। यदि आपका विचार व्यवहारिक पाया जाता है तो अगला कदम है। SVEP केवल ऋण देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं मानती। योजना के तहत प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन यानी कि CRPEP आपके साथ बैठकर व्यवसाय की योजना तैयार करते हैं। वे बताते हैं कि शुरुआती निवेश कितना होगा, लागत कैसे निकलेगी, ग्राहक तक कैसे पहुंचना है, हिसाब किताब कैसे रखना है और मुनाफे को दोबारा व्यवसाय में कैसे लगाना है। इसके बाद यदि वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो तो कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड के माध्यम से प्रारंभिक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बैंक ऋण और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाता है। यानी उद्यमी को केवल पैसा ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग तीनों एक साथ मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने गांव में स्थानीय मसालों की पैकेजिंग शुरू की। शुरुआत में प्रतिदिन कुछ ही पैकेट तैयार होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद पैकेजिंग बेहतर होती है, गुणवत्ता में सुधार आता है और स्थानीय हाट के साथ साथ नजदीकी कस्बों की दुकानों तक भी आपकी पहुंच बन जाती है। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाओं और युवाओं को भी काम मिलने लगता है। अब यह केवल आपका व्यवसाय नहीं रहता बल्कि गांव की आय बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। यही SVEP की सबसे बड़ी सोच है, रोजगार ढूंढने वालों को रोजगार देने वाला बनाना। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। आज भी अनेक ग्रामीण उद्यमियों को बाजार तक पहुंच, बेहतर ब्रांडिंग, डिजिटल तकनीक, ई कॉमर्स और प्रतिस्पर्धा जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को ONDC, GEM, डिजिटल भुगतान, आधुनिक विपणन और कौशल विकास कार्यक्रमों से और व्यापक रूप से जोड़ा जाए तो ग्रामीण उद्यमों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में बड़ी मदद मिल सकती है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP इसी सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास है।
1: आखिर ये योजना गांव में किस तरह बदलाव ला रही है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है और क्या ये वास्तव में ग्रामीण भारत के लिए स्टार्टअप संस्कृति का नया मॉडल बन सकती है, आइए सुनते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP, जब गांव बना उद्यमिता का नया केंद्र। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम माना जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी चमक मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित रही। दूसरी ओर ग्रामीण भारत में लाखों लोग ऐसे थे जिनके पास हुनर था पर पूंजी नहीं, व्यवसाय का विचार था पर मार्गदर्शन नहीं और काम करने की इच्छा थी पर अवसर सीमित थे। इसी अंतर को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्टार्टअप विलेज प्रोग्राम यानी SVEP की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवारों से संभावित उद्यमियों की पहचान की जाती है। इसके बाद व्यवसाय की व्यवहारिकता का आकलन किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एंटरप्राइज प्रमोशन यानी BRCEP स्थापित किए गए हैं। इनके साथ ही प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन अर्थात CRPEP कार्य होते हैं। योजना में कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड के माध्यम से शुरुआती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम की सफलता केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र के जालना जिले की भाग्यश्री लोंढे इसकी एक प्रेरक मिसाल है। स्वयं सहायता समूह से छोड़ने के बाद उन्होंने मसाले, पापड़ और अचार बनाने का छोटा सा एक व्यवसाय शुरू किया। SVEP के अंतर्गत मिले 45,000 रुपए के सामुदायिक उद्यम कोष ने उनके व्यवसाय को नई दिशा दी। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के बाद उनका उत्पादन बढ़ गया। वर्ष 2019-20 के महालक्ष्मी सरस मेले में उन्होंने मात्र 10 दिन में 5,00,000 रुपए का कारोबार किया। आज उनका उद्यम ग्रामीण महिलाओं के लिए भी रोजगार का स्रोत बन चुका है।
0: शायद यही कारण है कि आज ग्रामीण विकास की चर्चा केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब केंद्र में है उद्यमिता, आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक विकास, और यही बदलाव विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है अलका सिंह ने। नमस्कार।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः 18 वर्षादूनानां आपराधिक हीनानां छात्र प्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायक्षत। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षापत्र प्रकटन विरोधी संशोधन विधेयकमालक्ष्य संजातः विचार विमर्शः। एयर इंडिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एंड स्पोक प्रतिरूपं प्रवर्तितम्। अनेन तावत् पंजाब राज्यं 27 अन्ताराष्ट्रिय गन्तव्यैः सह योक्ष्यते। झारखंड राज्ये षड्भिः प्रमुख गणनायकैः सह 16 माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण 18 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराध प्रकरणेषु ईशून्य FIR पंजीकरण प्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिण जापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूकम्पः दुरापन्नः सुनामी सतर्कता च प्रसारिता। अपि च छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपरतः दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य बहुषु राज्येषु पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रावोचत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनावधौ छात्राणाम् अथ च आरक्षकाणाम् क्षतेः आरोपेषु काचित् गभीरा तटस्थता च अन्वेषण प्रक्रिया आवश्यकी वर्तते। एतदतिरिच्य न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनावधौ निगडिताः आपराधिक पृष्ठभूमिहीनाः अल्पवयस्काः छात्राः तत्क्षणं मोचयितुं प्रादिश्यत। न्यायालयेन प्रदर्शन सम्बद्धानां साक्ष्याणां रक्षणाय अपि आदेशो प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायपीठेन प्रदर्शनावधौ छात्राणामुपरि आरक्षकाणाम् अत्यधिक बलप्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां 200 क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्ली सर्वकाराय पंजीकृतानां प्राथमिकीनां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुं अनुमतिः प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्र छात्रेषु किमपि कठोर कार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरलम्, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशानां मुख्य सचिवेभ्यः याचिकासु कृतानां आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मन्त्री जीतनराम माझी इत्यमुना सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000 सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्योद्देश्यं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 6-2000 संशोधनम् इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापनकाले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षक क्रियायाः

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार. थैंक यू.
1: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: Patra. And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई। इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज सपाट स्तर पर खुले। दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्दिवसीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. Sensex dipped by 70 points to close at 76,766. Nifty dropped by 11 points to settle at 23,985. The broader market at the NSE displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index rose nearly 0.1%, while the small-cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया, एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.5%

0: 9% की बढ़त दर्ज हुई। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% लुढ़क गए। बीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, the capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remained unchanged.
0: अंतरबैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.85 रुपए पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: आज के बाजार पे अगर नजर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला। एक मामूली गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की तरफ देखें तो बड़ा गहरा असर हमें देखने को मिला तमाम चीजों का। तो इसमें मुनाफा वसूली का कितना योगदान रहा या फिर जो जियो पॉलिटिकल स्थितियां हैं उनका योगदान ज्यादा था या कुछ अन्य?
2: देखिए, अगर वो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भारत की जो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अगर आप पहले सत्र 2-3 सत्र में देखें उसी आज के में तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव था। पर मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ, चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है। और उसी लिए जो गेंस फर्स्ट हाफ में थी वो गेंस न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा उन सेंसेक्स में हुआ है। पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज के जो तेल की जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में वो नोटिसेबल है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का वो ग्लोबल डेवलपमेंट को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है।
0: पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो लगातार 5 दिन तक गिरावट आई, कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला, कारोबार के नजरिए से खरीदारी काफी हुई, लेकिन आज बड़ा नपा तुला रवैया देखने का मिला निवेशकों का।
2: उसका कारण ये है कि जो कल की जो रिकवरी थी बहुत ही शार्प रिकवरी थी और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि उसकी कल जो है वो तेलों के दाम गिरने लगे क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान किया था फ्राइडे को कि वो शायद ये जो युद्ध को और भी आगे ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे, शायद किस तरह से एस्केलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मार्केट का जो सिग्नल जो था वो पॉजिटिव लगा मार्केट को, तो इसीलिए सारी काफ़ी गेंस आई। और उसके साथ का तेलों के दाम $94 था वो करीबन आकर 84 में आ गया। आज भी वही चीज़ हुआ, तेलों के दाम नीचे आ रहे हैं, रुपया इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आज की जो स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वो जो साउथ कोरिया में जो और एशियन मार्केट्स में जो चिप मेकर्स की के लेकर जो हंगामा जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है।
1: AKB, there are two aspects to my question. One is information technology stocks went up by 3.32%, the Nifty IT index, and we saw the shares rising between 4.5% and 3.9%, short covering in this sector. And, you know, these tech stocks, their earnings, the revenue guidance seems to be quite good, including the net profitability. And their earnings are in foreign exchange as well. And there's also the question of the rupee to the dollar and the dollar index is at 101.561. And what we are seeing right now, there's also action by the central bank at the same time, because they are saying

0: में जी. उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और शायद यही मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पोररी चीज़ है, क्योंकि जो ही आप देखेंगे फेड अपन इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तभी तो FIIs का रुख शायद बदल सकता है. तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी, ये सेंटिमेंट बरकरार रहे, उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह.
1: करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते तो फेड का जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
0: इम्पैक्टफुल तो जरूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में. FIIs से पुल आउट जरूर होगा
1: जी.
0: और स्टॉक मार्केट को उसको उसकी जो डेवलपमेंट जो है, इम्पैक्ट है, उसको संभालना पड़ेगा
1: जी. आगे बढ़ते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं. कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है.
2: AKB, my question is on the FMCG sector. We're seeing that the rains are back in the month of July after deficient rains in the month of June. We are seeing in agriculture the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
0: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted. And if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well. But if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
2: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty Index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
0: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
1: आगे बढ़ते हैं. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं. इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था. हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई. बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है. जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई. वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है. AKB, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
0: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है. जून का महीने का नंबर है ये
1: जी.
0: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आईआईपी का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
1: जी।
0: मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम एक सर्ज देखते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं। और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है, वो उसमें ज़रा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है। पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस आईआईपी का जो परफॉर्मेंस है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आशाजनक।
1: एक भी इस पे पावर सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
0: जो ये जो पावर की जो जो आईआईपी में जो आप देख रहे हैं वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
1: जी।
0: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है, ज़्यादातर कंपनियाँ वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है, तो उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर है।
2: जस्ट माई क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, वी हैव द फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
0: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple's mobile phone manufacturing, through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread, and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So this is, that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे। इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी, जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। ये इस साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया। ताइवान का ताइएक्स 4.6% से ज्यादा टूट गया। जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा। उधर प्रमुख यूरोपीय शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। लंदन के फुटसी 100 में 0.5% की तेजी आई और जर्मनी का डेक्स तथा फ्रांस का कैक 40 भी 0.2% ऊपर आकर कारोबार कर रहे थे। एक भी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट, एक बड़ा नंबर है, बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला, तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है, आने वाला है?
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है, ये जो एग्जुबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो है उनकी एक बहुत बड़ी रिविजन हुई है। उस रिविजन से जो जिस डिमांड के तरिए स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक धक्का आया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक

0: रियलिटी चेक है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर, और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है इसको।
1: Moving on to the US stock market, major US stock market indices ended on a mixed note yesterday as investors awaited quarterly earnings reports from major tech companies and the US Fed Reserve's policy decision later this week. The Dow Jones Industrial Average rose 0.5% and the S&P 500 eked out a marginal gain supported by decline in crude oil prices. In contrast, the Nasdaq Composite Index fell 0.2%, marking its fourth straight session of losses as investors continued to sell technology stocks. Meanwhile, the Federal Open Market Committee, FOMC, two-day meeting will begin today. Clearly, there seems to be an overvaluation of tech companies and the reliance on artificial intelligence. Also, how they are raising capital from banks by pledging assets of a technology nature. How do you see the Fed Reserve revising its primary credit, which is at 3.75%, secondary credit 4.25%. What decisions will it take?
0: Well, I think they will definitely review very closely the options of raising interest rates. And at the same time, they will keep in mind the brief that they have got from the US president that the cost of money should not go up. I don't think a decision in favor of a rate hike will be taken in this time, during the end of this week. But the markets have already built in their expectations, at least a couple of rate hikes in this year.
1: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices fell today. Brent crude was trading 1.7% down at $86.85 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz, with 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it's very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texan crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And so therefore, that's the way it will go on.
1: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,41,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी। एकेबी, कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है, और जो भी जिस तरह की स्थिति है उनका कैसा असर उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। डिमांड बढ़ने वाली है, और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इनके जो जो जो येलो मेटल्स जो हैं इनकी भी डिमांड बढ़ेगी, और उनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
2: एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन, सेंसेक्स ड्रॉप 70 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,985। इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोज बाय 7.3% इन जून दिस ईयर, एंड मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी। साउथ कोरियाज कॉस्पी इंडेक्स प्लमिट्स नियरली 11%। And that's it in this edition of Market Mantra for now.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो

0: and 13th overall. India's para swimmers also enjoyed a successful outing, with RVV BK Bodigena and Ali Imam qualifying for the men's 50-meter freestyle S13 final. In the men's 400-meter, Indian sprinter Vishal TK progressed to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया पाठक और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हेपेटाइटिस, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण, डिजिटल निगरानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद श्रेया जी।
3: डॉक्टर एन के अरोड़ा, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या और इसे साइलेंट किलर या साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है।
4: हेपेटाइटिस का एक प्रकार है विषाणु का जो साइलेंट किलर होता है, और एक दूसरा प्रकार है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस को याद रखना, ये वायरस डिजीज है या विषाणु की वजह से होती है, और मुख्यतः चार विषाणु है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी इतना नहीं है महत्वपूर्ण, ई होता है। ए, बी, सी और फिर ई, ये चार किस्म के वायरस हैं जो हमारे जिगर को, यकृत को प्रभावित करते हैं, लिवर को, और उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, वो एक बार हमारे शरीर में, खास तौर पे जब उम्र छोटी होती है, 5 साल से कम उम्र में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो वो फिर निकलता नहीं है और वहीं पे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी, हम आगे बात करेंगे, एक बार शरीर में घुसता है तो बाहर जाता नहीं है, और वो हमारे लिवर के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है, डैमेज करते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारा जो यकृत है, लिवर है, उसमें खराबी होती है। पहले तो हमें, अगर बहुत देर तक चलता रहे तो पीलिया हो सकता है, लेकिन कई बार पीलिया भी नहीं होता, सीधे सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, और फिर बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो इन दो वायरसेस की वजह से जो लिवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है या सूजन आ जाती है, वो एक साइलेंट किलर का काम करती है, क्योंकि 10 से 20 साल 30 साल बाद आपको पता भी नहीं चलता है, और पता सडनली पता चलता है कि हमारा लिवर इतना खराब हो गया है कि खून की उल्टी आ रही है, और उसके अंदर शरीर, लिवर के अंदर गांठें हो जाती हैं और परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं कुछ लोगों में से कैंसर भी हो जाता है, जिसको हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये दो वायरस जो है एक तरह से हमारे लिए साइलेंट किलर है, और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि एशिया में और खास तौर पे भारत में, शुरू में हमने, जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या थी जिसमें हेपेटाइटिस बी सर्कुलेट करता रहता था, और ये जो हमारे हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस है, उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता था। समय के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो अब इसमें कमी आ गई है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई स्वच्छता की कमी की वजह से होता है, चाहे वो स्वच्छता पानी की हो या स्वच्छता भोजन की हो, इन दोनों की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और ये आपको जानकर एक सुखद अनुभव होगा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू करने से, जब घर घर में जो पानी पहुंचा है, स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कम हो गए, क्योंकि हमें साफ पानी मिलने लगा, भोजन में भी सफाई हो गई स्वच्छता की वजह से। वो जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है, उसमें पीलिया हो जाता है, किसी भी उम्र में हो पीलिया होता है, और आमतौर पे दवाई किसी की जरूरत नहीं होती, खाली देखभाल करनी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी केस में, यानी कि 200 केसेस में एक केस ऐसा होता है जिसमें लिवर फेलियर हो सकता है और मृत्यु की संभावना बनती है
3: जी।
4: तो वो एक अलग तरीके से फैलता है, और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक अलग तरीके से फैलता है, और साइलेंट किलर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होते हैं
3: जी। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आज सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि इन नए दिशा निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनसे आम लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है।
4: इन गाइडलाइन में जो मुख्य इनका बिंदु है जिनपे हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि 2030 तक हमें जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर की बीमारी है, उसको बहुत हद तक खत्म करना है और कम करना है। और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो एक बार शरीर में घुस जाते हैं जैसे हमने बताया, और लगातार रहते हैं, तो उनकी जांच का, उनके इलाज का और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का, ये सारा का सारा जो इस नई गाइडलाइन के अंदर है और स्पष्टता से बताया गया है। और अब हर एक सरकारी स्थान पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर पे इस समय तक जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब लगातार, जैसे कि पहले करीब 21 करोड़ लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जांच पूरी करनी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित है, जल्दी बीमारी अधिक बढ़ने से पहले पकड़ा जा सके, क्योंकि आज इनका इलाज उपलब्ध है। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे देश में उपलब्ध हैं, यहीं पे उनका निर्माण होता है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, और वो बहुत ही प्रभावी दवाई है, तो इलाज किया जा सकता है, और जिससे कि सिरोसिस से बचा जा सके, और जिससे जो कार्सिनोमा कैंसर है लिवर का, वो उससे बचा जा सके।
3: तो जैसा कि पहले उत्तर में आपने बताया कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस के, जैसे हमें पता है कि 5 प्रकार बताए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से भारत के लिए सबसे बड़ी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है वो कौन से प्रकार के हेपेटाइटिस से होती है और क्यों?
4: हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें से 4, हेपेटाइटिस डी इतना कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए और ई पानी के दूषित होने से या भोजन के दूषित होने से होता है। जिस तरीके से डायरिया या दस्त की बीमारी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा वातावरण में स्वच्छता आती है, चाहे वो पानी की है, भोजन की है, और जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हुआ, हर घर जल वाला कार्यक्रम आ रहा है, उसकी वजह से सचमुच इन चीजों में बहुत कमी आई है। कुछ साल पहले तक, यानी मैं कहूंगा 10-15 साल पहले तक, हर थोड़े दिन में पता चलता है देश के किसी हिस्से में हेपेटाइटिस ई का खास तौर पे आउटब्रेक्स या एपिडेमिक होता था। और ये जो है, इसकी वजह से बहुत सीवियर बीमारी होती है, और खास तौर पे अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों के लिए तो सफाई का है। हेपेटाइटिस बी और सी का होने का जो तरीका, वो है बी जो है मां से बच्चे, अगर गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जीवन के पहले 5 सालों में अगर एक दूषित सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लड ब्लड दिया जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें से 70-95% संभावना होती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी उस बच्चे में हो जाएगी और वो फिर वायरस बाहर निकलता नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है, दूषित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल से होता है खासतौर पर, ज्यादातर एक आम समझ के लिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ध्यान करना है, एक तरफ तो हमें खाने की और पीने की सफाई रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जब भी इंजेक्शन लग रहा हो तो हमें देखना है कि नई इंजेक्शन और नई नीडल का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए। दूसरी उतनी महत्वपूर्ण बात है कि इंजेक्शन तभी लगाया जाए जब अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा, हमारे द्वारा किया गया, कि लगभग 60-75% समय हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं होती बिना, क्योंकि आजकल ओरल दवाइयों से पूरा लाभ वैसे ही मिल जाता है। तो इंजेक्शन की कमी होनी चाहिए, इंजेक्शन कम से कम होने लगने चाहिए, और जब इंजेक्शन लगाना पड़े तो नए इंजेक्शन और सिरिंज होने चाहिए। और ब्लड सैंपल जब भी चढ़ाया जाए, जब ब्लड किसी को चढ़ाने की जरूरत है तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इस बात को अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सा कर्मी से पूछे कि भैया इसमें हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी की जांच हो गई है कि नहीं हो गई। अब गर्भवती महिलाओं में आजकल जो है प्रसव से पूर्व जो जांच होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की पूरी जांच की जाती है, और अगर हेपेटाइटिस बी मां को है तो उसका इलाज तो अलग से करना होता है जब प्रसव हो जाता है, लेकिन प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण बच जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 साल से कम अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसी बच्चे में हो, खास तौर पे नवजात शिशु में और पहले साल में, तो लगभग 95% संभावना है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको मैं टीका लगा दूं तो फिर टीके से बचाव हो जाए।
3: जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिला है और कैसे उनके लिए एक सुविधाजनक इलाज सरकार ने दिलवाया है?
4: स्वच्छ भारत की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई में एक बहुत शार्प गिरावट आई है। अब हमें हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस या आउटब्रेक्स या एपिडेमिक महामारी के तौर पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और पिछले कई सालों में हमने नहीं सुना है कि बहुत बड़ा कोई आउटब्रेक हुआ। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जांच हो रही है, और इसके अलावा जब नवजात शिशु है, आज की डेट में लगभग 90% से ऊपर प्रसव जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे होते हैं, तो उसी समय नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाता है। तो इस टीका लगाने से अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है भी तो हमारे बच्चे को उससे बचाया जा सकता है और बच जाता है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से समय के साथ जहां हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के 2-3% लोग संक्रमित थे, वो अब 1% से कम, लगभग 0.85 और 0.9% जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो लगभग 0.3%, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1,000 में 3 बच्चे जो है, 3 व्यक्ति हुए हेपेटाइटिस सी, और ये खास तौर पे संक्रमित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल, और खास तौर पे इंजेक्शन की वजह से होता है, तभी मैंने कहा कि इंजेक्शन। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम हर एक सरकारी चिकित्सा संस्था है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, पीएचसी है, सीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच उपलब्ध है आज की डेट में। वहीं हाथ के हाथ आपकी जांच हो जाती है, और उससे एक बार जांच हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ध्यान किया जाता है, और साथ में इंजेक्शन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता
3: है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पहचान और इलाज संभव है। सरकार मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन जागरूकता, समय पर जांच और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपका हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार से

0: युवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: सुर्खियों में

रुखेश रोशन के आगे क्षमा रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे क्षमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर आता है परवाना। जी हाँ, और हम तो ये चाहते हैं कि आप और कहीं ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, क्योंकि आपके लिए रोशन हो चुकी है शम्मा सांझ ढली की रोशनी से। तो जनाब, महफिल पूरी तरह से सज गई है, सिर्फ इंतज़ार है आपका आपका। जहां वक्त हो चला है इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:26:55, आप हैं अपनी ही दोस्त, आप ही अपने ही हम सफ़र रूपा धवन के साथ। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और इस शम्मा की रोशनी के तले चिराग बहुत सारे रोशन हो चले हैं।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
4: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
3: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
4: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
3: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार,

रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

सांझ ढले में रौनक आ चुकी है और शम्मा जो है वो ढल नहीं बच सकती। अभी हमने जला दी है शम्मा और इस शम्मा की रोशनी में बहुत सारी हमें बातें करनी है आपसे, तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसमें आपके साथ है आप ही की दोस्त रूपा। और ये मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है, तो इस मौसम के साथ क्यों ना कुछ और अच्छा सा एक गीत हो जाए आपके लिए।

0: जी, और जनाब मौसम ने अपनी करवट तो बदली और बरसात जो आई झमाझम तो सबके दिलों में एक अलग सी उमंग ही जगा दी। कहाँ तो इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी और हम सब सोच रहे थे कि भाई अब ये गर्मी कब ख़त्म होगी, और वहीं भगवान ने हमारी सुन ली और झमाझम बारिश से हम तो क्या सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबको प्रसन्न कर दिया। तो जनाब बारिश तो हो गई लेकिन कहीं ना कहीं जल भराव भी हुआ है, रास्तों में थोड़ी सी अड़चने तो आएंगी ही। तो जब भी घर से निकले यातायात देखते हुए निकले कि आज के यातायात का क्या बात है, क्या है उसकी न्यूज़ है आज की, तो ये देखकर ज़रूर निकले, थोड़ा सा एहतियात बरते वाहन चलाते समय और आराम से चले, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। यही तो जीना है जनाब, अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चले। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो देखिए कितना अच्छा लगता है, मन को एक अलग ही सुकून सा मिलता है। तो अपने दिल की जो बातें हैं वो भी हमारे साथ साझा करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रूपा है आपके साथ सांझ ढले के सफर में।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है
1: कह

0: जी हाँ, बातें तो बहुत सारी हमें करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे अनुमति लेने का। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सांझ ढले से फिलहाल विदा लेती है रूपा, नमस्कार। आज की
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा

0: आपका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कामों पर असहनीय बोझ न डालें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रूपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोल दिया जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना का लाभ 21 साल से 60 साल तक की उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कुछ श्रेणियों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन ले रही महिलाएं, आयकर देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी महिलाएं और आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाएं शामिल हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जिम्मेदारी और महिलाओं के समग्र विकास को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 20,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र के 6 से 12 दिन तक संचालित होने वाले बड़े कांवड़ शिविरों को अब अधिकतम 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा मिलती रहेगी। उन्होंने बताया कि अन्य सभी श्रेणियों के शिविरों की अनुदान राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कांवड़ समितियों को पर्याप्त सहयोग देकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो नमो भारत कॉरिडोर पर इस महीने की 30 तारीख से लेकर अगले महीने की 14 तारीख तक हर रोज 52 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाने का निर्णय लिया है। NCRTC ने बताया कि अतिरिक्त ट्रेन फेरों की शुरुआत के साथ अब नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध हुआ करेंगी। निगम ने कहा कि तेज, समयबद्ध और विश्वसनीय सेवा के कारण नमो भारत इस अवधि में यात्रियों के लिए प्रभावी विकल्प साबित होंगी। दिल्ली सरकार ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण के दिवस के अवसर पर असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया। इस अभियान में राजधानी के 5 विद्यालयों के 430 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के हरित भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के माध्यम से सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, हरित और पर्यावरणीय रूप से अधिक सशक्त राजधानी के निर्माण के लिए

0: संबंध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग ECI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी काम का असहनीय बोझ न डाला जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। दिल्ली में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए सरकारी, नगर निगम और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को बूथ स्तर के अधिकारियों और जनगणना कर्मचारियों के रूप में बड़े पैमाने पर तैनाती को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की गईं।
1: मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए शिक्षकों की मांग करने का संवैधानिक अधिकार है, फिर भी उसे बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत दिए गए जनादेश का ध्यान रखना चाहिए। ये गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती को नियंत्रित करता है और केवल जनगणना, आपदा राहत और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए ही ऐसी नियुक्ति की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान शिक्षकों को चुनाव संबंधी कार्य सौंपते समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए वैधानिक जनादेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि स्कूल में 6 से 8 घंटे बिताने के बाद शिक्षकों से चुनाव संबंधी कार्य करवाना उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तनावपूर्ण हो सकता है। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि स्कूल के घंटों के दौरान SIR ड्यूटी के लिए किसी भी शिक्षक को तैनात नहीं किया जा रहा था और ये अभ्यास सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सख्त अनुपालन में किया जा रहा था। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख किया।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना रहा है। पिछले 4 वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने में सफलता मिली है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति संपदा के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी नामक खेल क्षेत्र और समर्थ सहपालन शामिल है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हरित और समावेशी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक निशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा, राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरसेप्टर राही का भी शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत का संवैधानिक लोकतंत्र उन संस्थाओं की मजबूती पर आधारित है जो अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक दूसरे का सम्मान करती हैं। ये बात श्री गुप्ता ने आज युवा जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के परिसर का भ्रमण करने आए 45 प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही।
3: श्री विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि शक्तियों का विभाजन संस्थाओं को एक दूसरे से अलग करने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संवैधानिक ढांचा है जिसमें शासन का प्रत्येक अंग संयम, उत्तरदायित्व और अन्य संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करते हुए कार्य करता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षुओं से संवाद भी किया। इसमें भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और संसदीय संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करने में विधायिका की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अलावा श्री गुप्ता ने संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रियाओं और देश की सेवा में संवैधानिक संस्थाओं की साझा जिम्मेदारी के महत्व पर भी बल दिया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने आज द्वारका के सेक्टर 29 में एक आधुनिक डॉग शेल्टर की आधारशिला रखी। श्री संधु ने बताया कि लगभग 6,000 से अधिक वर्ग मीटर में फैली ये सुविधा आवारा कुत्तों के लिए सुरक्षित आश्रय, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसमें आवारा कुत्तों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जनसेवा सदन से रोहिणी तक डीटीसी बस में यात्रा कर क्षेत्र का व्यापक स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों पर यात्रा कर मॉनसून के दौरान शहर की जमीनी स्थिति का आकलन किया और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की समीक्षा की।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा सदन से बस द्वारा निरीक्षण यात्रा प्रारंभ की, जो मधुबन चौक होते हुए रोहिणी सेक्टर 33 के डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने मार्ग में लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए चल रहे अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री गुप्ता ने वर्षा के कारण संभावित जल भराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई व्यवस्था और सड़क किनारे जमा मलबे और कचरे की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जल, वायु, वन और भूमि का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण के प्रति अपने संकल्प को और सशक्त करने तथा हरित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल दिल्ली के निर्माण में साझा जिम्मेदारी निभाने को कहा। मुख्यमंत्री ने आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सभी लोगों से हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए समय पर जांच, टीकाकरण कराने और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार लेने का आह्वान भी किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सही जानकारी और समय रहते उठाया गया कदम अनेक जीवनों की रक्षा कर सकता है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सभी लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सजग जीवन शैली अपनाने को कहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली लोक निर्माण विभाग के एक सहायक अभियंता और एक निजी कंपनी के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें उसी कंपनी का प्रतिनिधि और एक कर्मचारी भी शामिल है। जांच एजेंसी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अपने पद का दुरुपयोग कर रोहिणी स्थित एक निजी कंपनी को विभाग की ओर से सौंपे गए विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुचित आधिकारिक लाभ पहुंचा रहे थे। राजधानी के नरेला क्षेत्र में दिल्ली मादक पदार्थ नियंत्रण विभाग ने हरियाणा के खाद्य और औषधि प्रशासन और दिल्ली पुलिस के साथ दो दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां, रासायनिक कच्चा माल, मैन्युफैक्चरिंग उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिनभर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस। विभाग ने कल भी तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ समितियों की आर्थिक सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली के शिक्षकों पर चुनाव संबंधी कामों का असहनीय बोझ न डाला जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से प्रकृति संरक्षण को जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों

का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्ष ही दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं।
मारन

ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, शर्मिला ने जीता देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता, प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर। गुजरात की देविया नीवा झाला ने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। एमीरा खोसला ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा, अनुभवी रविंद्र जडेजा की वापसी। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला अकेडमी चैंपियनशिप में राउंड ग्लास हॉकी अकेडमी ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, दागे 41 गोल।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से, जहां खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में आज जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। दो बार के ओलंपियन और इस इवेंट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नटराज हीट में सबसे तेज 16 तैराकों में शामिल होकर आसानी से आगे बढ़े। बेंगलुरु के इस तैराक ने अपने हीट में 5वां और कुल मिलाकर 13वां स्थान हासिल करने के लिए 55.58 सेकेंड का समय लिया। 25 वर्षीय तैराक ने शुरुआती 50 मीटर की दूरी 26.26 सेकेंड में तय की और फिर 55.58 सेकेंड में रेस पूरी कर ली। वहीं अनुभवी साजन प्रकाश की चुनौती पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई न कर पाने के बाद खत्म हो गई। वहीं इस समय महिला वेट लिफ्टिंग की 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा देवी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। और लगातार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल भी कई पदक भारत ने अपने नाम किए। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वुमेन्स शॉटपुट F57 वर्ग की फाइनल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 6 प्रयासों में 9.48, 9.58, 9.81, 9.17, 9.37 और 9.60 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में हासिल 9.81 मीटर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस उपलब्धि के साथ शर्मिला ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक अपने नाम किया और यह पदक उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया।
1: बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरी माँ के लिए ये मेडल है। मेरा एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे मेडल लाते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक।
0: दूसरी ओर भारतीय हाई जंप खिलाड़ी सर्वेश अनिल कुशारे ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
2: भारत के सर्वेश अनिल कुशारे, उनका पहला अटेम्प्ट 2.05 मीटर की हाइट पर सफाई से पार किया। सर्वेश अनिल कुशारे का ये अटेम्प्ट कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा। क्लियर किया, कामयाबी सर्वेश के नाम और दावेदारी पेश करेंगे। सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई क्लियर कर ली है।
0: उधर वेट लिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों की 79 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 330 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं महिला वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी सोरा खाइबम ने भारत के लिए 58 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिंदिया रानी देवी ने कुल 199 किलोग्राम के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने स्नैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम उठाया। नाइजीरिया की रफियातु फोलाशादे लावाल ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के सायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सर्वेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और श्रोताओं, हमें अभी अभी खबर मिली है विशाल टीके ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य भारतीय राजेश रमेश बेहद मामूली अंतर से अगले दौर में जगह बनाने से चूक गए। इसके अलावा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी और लॉन बॉल्स में आज भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वेट लिफ्टिंग में आज रात 11 बजे महिलाओं के 69 किलोग्राम फाइनल में हरजिंदर कौर पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लॉन बॉल्स में भी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। महिलाओं के सिंगल सेक्शनल प्ले में नयन मोनी सैकियर आज रात मुकाबला करेंगे। वहीं बॉक्सिंग में महिला वर्ग के 54 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में प्रीति आज रात 10:30 बजे मुकाबला करेंगी और 11 बजे प्रिया का मुकाबला 60 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा और परवीन जो है वो 65 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में हाई जंप फाइनल में पूजा आज मुकाबला करती नजर आएंगी और तैराकी में भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों की 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 हीट्स में RVV BK बुदिग्ना और इमाम अली ने भी अगले दौर में जगह बना ली है और भारत की पदकों की संख्या और प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। उधर राजकोट की देविया निभा झाला ने एशियन गेम्स के 400 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली गुजरात की अकेली महिला एथलीट हैं। एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
4: फाइनल में सोनम और हिमांशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 441.2 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता। एलावेनिल और पार्थ 378.8 की फाइनल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले दोनों भारतीयों ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सोनम ने 317.2 और हिमांशु ने 317.4 पॉइंट के साथ कुल 634.6 अंक के साथ क्वालिफाई किया था। एलावेनिल वालरिविन और पार्थ राकेश माने की जोड़ी ने 634.2 के अंक के साथ अगले दौर में जगह बनाई थी। सोनम ने इससे पहले 2024 में काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप और नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता था। ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था। 20 साल के हिमांशु के लिए कांस्य पदक उनका पहला सीनियर ISSF वर्ल्ड कप पोडियम है। हिमांशु ने इससे पहले 2025 में नई दिल्ली में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और अब बात क्लाइंबिंग चैंपियनशिप पर। भारत की 15 वर्षीय अमीरा खोसला ने इटली के ऑर्ग्रो में वर्ल्ड

0: स्पीड क्लाइंबर्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में किसी भारतीय का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और वैश्विक मंच पर इंडियन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एक और उपलब्धि है। वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व एमीरा श्लोक दादुकर, नील वारके और रुद्र करंदीकर ने किया। दादुकर ने 6.76 सेकंड के साथ 27वें स्थान पर रहे। वारके 35वें जबकि करंदीकर ने 44वां स्थान हासिल किया। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी पर। ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में कल राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पुलसी मुकाबले में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को रिकॉर्ड 41-0 से धूल चटाई। ये हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत बन गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: शुरुआत से ही राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। विरोधी टीम को उनके ही हाफ में दबाए रखा और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाई। टीम के लगातार आक्रामक दबाव का नतीजा ये हुआ कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे 8-0 से आगे थे और दूसरे क्वार्टर में 11 गोल करने के बाद हाफ टाइम तक ये बढ़त तेजी से बढ़कर 19-0 हो गई। टीम ने तीसरे क्वार्टर में 9 और गोल किए और आखिरी 15 मिनट में शानदार 13 गोल दागे, जिससे तमिलनाडु का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया। गोलों की इस ऐतिहासिक बारिश में सलोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्हें 12 गोल दागने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सलोनी को कप्तान रश्मीन कौर और हरमनजोत कौर का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने अटैकिंग सर्कल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए 7-7 गोल किए। रुखसाना लगातार खतरा बनी रही और इस ऐतिहासिक स्कोर में 5 गोल का योगदान दिया, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 4 गोल किए। इस शानदार आक्रामक प्रदर्शन को दिया और मुस्कान गिल के 2-2 गोल ने और मजबूती दी। पूल सी के एक अन्य मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी को 15-0 से रौंद दिया। मध्य प्रदेश की शानदार जीत में नम्मी गीताश्री ने 6 गोल किए, जबकि भाविका ने 5 गोल दागे। ख्वाहिश परमार, चुटकी कुशवाहा, शीतल प्रजापति और जागृति यादव ने भी गोल कर अहम योगदान दिया। प्रतियोगिता के पूल ए मुकाबले में राजा करण हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को 9-1 से हराया। कप्तान राखी ने 5 गोल किए, जबकि शबनम ने 2 गोल दागे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। आइए सुनते हैं अर्जुन की रिपोर्ट कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।
3: बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। ऑफ स्पिनर सारांश जैन को पहली बार भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। 33 वर्षीय सारांश घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 188 विकेटों के साथ साथ 2223 रन भी बनाए हैं। मानव सुथार, गुरनूर बरार, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल और ध्रुव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 नवंबर को उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे।
1: और अब बात शतरंज पर। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडेव वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर जावो खीर सिंदारोव का सामना करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना

0: और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया।

0: वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
2: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
3: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms

0: बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है। और ये सिर्फ खेल से नहीं, और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है।
1: जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा है, उस पर पड़ रहा है?
0: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतर जातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे, उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये
1: जी
0: खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो उसमें शिक्षा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। सपोज इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है। तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
1: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही, इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
0: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है और फिर स्पोर्ट्स एक्सेलेंस है। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और
1: जी
0: इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको। और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ महानगरों में नहीं, छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गांव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। सो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गया है कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है।
1: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, तो इस तरह की जो योजना है तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में, तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है, इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, एशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में, देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
1: जी
0: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है, और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
1: हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है, इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
1: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही है और जो तैयारियां हमारी हैं, उनका कितना योगदान है?
0: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है, उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में, और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं, ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
1: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे, तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
0: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें
1: जी,
0: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में
1: जी,
0: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं और एक माहौल भी बन गया है कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना, एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है, इसी का नतीजा है।
1: हिमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते, ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है।
1: जी
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको

0: रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में हैं,
1: जी
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में।
1: जी
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है।
1: जी हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने, तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: जो बच्चे आते हैं खेल में उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है, बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है।
1: जी
0: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है।
1: जी
0: हमको पीईटीस है, पीईटीस को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है, वो हमारा देयर और आईज ऑन द ग्राउंड। तो ये
1: जी
0: प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है।
1: जी
0: और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। इनके लिए जो भी सुविधा स्कीम कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है।
1: हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल है। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित देश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
4: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy

0: इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दशकों से भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। उन्होंने कहा कि भारत में जैन जी सहित सभी लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का अंत होना चाहिए। पाकिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता पर श्री जायसवाल ने कहा कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, वो किसी भी प्रकार की बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत का दावा नहीं कर सकता। चीन के साथ सीमा व्यापार पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देश पिछले वर्ष 3 निर्धारित व्यापारिक बिंदुओं लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए थे। श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV एजियन ड्रागदार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
0: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: युगांडा में जून के मध्य में अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कोई नया मामला दर्ज न होने के कारण युगांडा को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। इबोला वायरस के दुर्लभ बंडी बुग्यो स्ट्रेन के कारण फैले इस प्रकोप की पुष्टि युगांडा में सबसे पहले तब हुई जब पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DR कांगो से संदिग्ध मामले सीमा पार करके आए।
2: युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पहले मामले कांगो के नागरिकों के थे जो इबोला के इलाज के लिए युगांडा में आए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि युगांडा ने इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों की बारीकी से निगरानी करके इसके प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया और उन्होंने आगे संक्रमण के किसी भी लक्षण के बिना आवश्यक 21 दिवसीय निगरानी अवधि पूरी की। इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार बंडी बुग्यो स्ट्रेन अभी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि वर्तमान में इसके लिए कोई स्वीकृत टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई। बातचीत से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और अमरीका के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करना है।
3: बैठक के बाद जेलेंस्की अमरीकी कैपिटल का दौरा करेंगे जहां वे सीनेटरों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों की उपग्रह तस्वीरें उपलब्ध कराकर मौजूदा जारी संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज राष्ट्रपति जेलेंस्की की अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले वॉशिंगटन पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के चुने जाने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये 8वीं मुलाकात होगी। रवाना होने से पहले श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता कार्यसूची में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनमें सबसे पहले ईरान का मुद्दा होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। इस सफल संचालन से कोलकाता बंदरगाह से विराटनगर तक कंटेनरीकृत माल की सीधी रेल ढुलाई संभव हो गई है जिसमें सीमा पर माल का स्थानांतरण नहीं होगा।
4: इस नई व्यवस्था से पारगमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत और माल प्रबंधन में कमी आने की उम्मीद है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार व्यापार की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि सीधी माल ढुलाई सेवा से आयात और निर्यात माल की आवाजाही

0: यही को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये सेवा परिवहन का एक तेज, अधिक सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि कई अलग अलग स्थानों पर माल के हस्तांतरण की समस्या को कम करके और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करके ये पहल निर्यातकों, आयातकों, लॉजिस्टिक संचालकों और सीमा पार व्यापार में लगे उद्योगों को लाभ पहुँचाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच सीमा पार हिंसा में 57 लोग मारे गए और 342 लोग घायल हुए हैं। इन सभी के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। लीबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने त्रिपोली के पास एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसर में धावा बोल दिया। ये प्रदर्शनकारी लंबे समय से जारी बिजली कटौती को लेकर विरोध कर रहे थे। इससे देशव्यापी ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी बेहतर बिजली सेवाओं और प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा की राष्ट्रीय एकता सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जापान के दक्षिणी कुमामोतो प्रांत में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे क्षेत्र में 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और सड़क संपर्क भी अवरुद्ध हुआ। भूकंप के कारण रेल और परिवहन सेवाओं पर भी व्यापक असर पड़ा है। स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लगभग 3 लाख निवासियों को निर्धारित आश्रय स्थलों पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। चीन के हांगजो में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। युगांडा में अंतिम मरीज के ठीक होने के बाद देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 10:30 लीजिए 10:31 हुए हैं 100.1 MHz पर हर्ष श्रृंगार लेकर देविका हाजिर है। और अगर इस वक्त आपकी खिड़की के बाहर बारिश हो रही है तो बस कुछ पल के लिए दुनिया की आवाजें धीमी कर दीजिए। रात और बारिश दोनों में एक अजीब सी बात होती है ना। दिन की भीड़ में जो एहसास कहीं खो जाते हैं वो रात की खामोशी और बारिश की बूंदों के साथ फिर लौट आते हैं। हर बूंद जैसे कोई अधूरी कहानी कहती है, हर हवा का झोंका किसी की याद लेकर गुजरता है, और ये भीगी रात दिल को इतना करीब से छू जाती है कि शब्द भी खामोश हो जाते हैं।

0: प्रोफेसर प्यारेलाल का गीत आपने सुना, राजेंद्र किशन जी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और आवाज़, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। सुन रहे हैं आप हर श्रृंगार सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
2: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
1: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

0: 10:44 और ठीक 32 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम है हर श्रृंगार और देविका है आपके साथ। और जी हाँ, बात बारिश की हो रही थी। श्रोताओं, सोचिए, अजीब बात है ना, बारिश में भीगने से कपड़े तो सूख जाते हैं लेकिन यादें कभी नहीं सूखती, और हर सावन के साथ वो फिर से भीग जाती हैं। अगर आज इस बारिश में आपके दिल में भी किसी के नाम की दस्तक दी है तो उसे रोकिए मत। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए होती हैं। बारिश हमें यही सिखाती है कि प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास हमेशा साथ होना नहीं, किसी की याद में भी मुस्कुरा पाना है।
1: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

जी हाँ, यकीनन सावन की रातों में ऐसा भी होता है। प्रेम पत्र फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार साहब के बोल, सलिल चौधरी का संगीत और आवाज़ लता मंगेशकर और तलत महमूद साहब की। श्रोताओं, बारिश की बूंदों में जब चांद की रोशनी उतरती है, लगता है जैसे मोहब्बत ने आसमान से ज़मीन तक का सफ़र तय किया है। चांद आज भी वही है, बस फ़र्क इतना है कि पहले उसे तुम्हारे साथ देखा था और आज तुम्हारी यादों के साथ देख रहे हैं। बारिश की हर बूंद पूछती है तुम्हारा हाल और चांद हर रात तुम्हारा पता बताने की कोशिश करता है। कुछ इश्क बारिश जैसे होते हैं, छूकर गुजर जाते हैं, और कुछ चांद जैसे दूर रहकर भी हर साथ, बिल्कुल हर रात भी साथ निभा जाते हैं।

0: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
1: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
0: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा अपनी विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।
2: हर्षिंगर से आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर और वो चांद मुस्काया आखिरी दौ फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बोल मदन मोहन का संगीत और आवाज़ मन्ना डे और लता मंगेशकर की। और हर्षिंगार का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं फिल्म कल आज और कल से।

0: कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं सुनो तो मोना, सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

यहाँ फिलहाल तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आ नहीं रही, मैं जा रही हूँ, और हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। देवी कब से विदा लेती है सुनीत के साथ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। बताती जाती हूँ, ये जो गीत लिखा था वो नीरज साहब ने लिखा था और संगीत था शंकर जयकिशन जी का, आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की। मैं ये भी बताती जाती हूँ कि 11 बजे होंगे सामने।

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित

रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार. थैंक यू.
1: और सबसे पहले नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन. सेंसेक्स ड्रॉप्स 70 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट. सेंसेक्स में 70 अंक की सुस्ती और निफ्टी 23,985 पर बंद हुआ. भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर जून महीने में 7.3% की बढ़त और अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में सबसे ज्यादा लगभग 11% का नुकसान.

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में लगभग 0.1% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.2% की सुस्ती आई. इससे पहले एशियाई शेयर बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के कारण बाजार आज सपाट स्तर पर खुले. दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार चढ़ाव तो होता रहा और अंतर्दिवसीय सत्र के दौरान वे एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended marginally lower today. Sensex dipped by 70 points to close at 76,766. Nifty dropped by 11 points to settle at 23,985. The broader market at the NSE displayed a mixed trend. The mid-cap 100 index rose nearly 0.1%, while the small-cap 100 index fell over 0.2%. Earlier, the markets opened on a flat note, tracking weak cues from the Asian markets. Both the benchmark indices swung between gains and losses and traded within a narrow range during the intraday session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टीसीएस लगभग 4.5% ऊपर आ गया. एटर्नल के शेयर 4% चढ़ गए और टेक महिंद्रा में लगभग 3.9% की बढ़त दर्ज हुई. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर लगभग 7% लुढ़क गए. बीएल में 4.4% की गिरावट आई और एनटीपीसी के शेयर लगभग 2% नीचे आ गए.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, the capital goods dropped 2.4%, power dipped almost 2.4%, and utilities fell more than 1.7%. In contrast, focused IT advanced over 3.4%, IT rose 3%, and realty gained 2.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,629 companies declined, 1,626 companies advanced, and 169 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 4 पैसे मजबूत हुआ और 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.85 रुपए पर बंद हुआ. एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: आज के बाजार पे अगर नजर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिला. एक मामूली गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं, लेकिन एशियाई बाजारों की तरफ देखें तो बड़ा गहरा असर हमें देखने को मिला तमाम चीजों का. तो इसमें मुनाफा वसूली का कितना योगदान रहा या फिर जो जियो पोलिटिकल स्थितियां हैं उनका योगदान ज्यादा था या कुछ अन्य?
2: देखिए, अगर वो भारत की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भारत की जो आज की जो स्टॉक मार्केट में जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अगर आप पहले सत्र 2-3 सत्र में देखें उसी आज के में तो उनमें काफ़ी पॉजिटिव था. पर मुझे असेसमेंट मेरा ये है कि जो एशियन मार्केट में पर्टिकुलरली जो कोरियन मार्केट में जो चिप मेकर्स के साथ जो हंगामा जो हुआ, चिप मेकर्स के ऊपर जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई है लोगों ने एशियन मार्केट्स में ज़्यादातर, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत हमारे मार्केट में भी आया है. और उसी लिए जो गेंस फर्स्ट हाफ में थी वो गेंस न्यूट्रलाइज होकर थोड़ी बहुत मार्जिनल लॉस में 70 पॉइंट जैसे आपने कहा उन सेंसेक्स में हुआ है. पर देखने वाली बात यह है कि कल के जो रिकवरी हुई, स्ट्रॉन्ग रिकवरी, और आज के जो तेल की जो दाम गिरने के बाद भी स्टॉक मार्केट में जो एक स्टेबिलिटी जो आई है पर्टिकुलरली इन द आईटी सेक्टर में वो नोटिसेबल है. और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंटरनल जो एक जो पुल है इंटरनल मार्केट का वो ग्लोबल डेवलपमेंट

0: को ऊपर ओवरकम करके वो दिखा रहा है।
1: पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो लगातार 5 दिन तक गिरावट आई, कल एक बढ़िया दिन देखने को मिला, कारोबार के नजरिए से खरीदारी काफी हुई, लेकिन आज बड़ा नपा तुला रवैया देखने का मिला निवेशकों का।
0: उसका कारण ये है कि जो कल की जो रिकवरी थी बहुत ही शार्प रिकवरी थी, और उसका कारण भी बहुत ही क्लियर था कि उसकी कल जो है वो तेलों के दाम गिरने लगे, क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान किया था फ्राइडे को कि वो शायद ये जो युद्ध को और भी आगे ज़्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे, शायद किस तरह से एस्केलेट करेंगे, कैसे करेंगे, वो मार्केट का जो सिग्नल जो था वो पॉजिटिव लगा मार्केट को, तो इसीलिए सारी काफ़ी गेंस आई। और उसके साथ का तेलों के दाम $94 था, वो करीबन आकर 84 में आ गया, आज भी वही चीज़ हुआ, तेलों के दाम नीचे आ रहे हैं, रुपया इसीलिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो आज की जो स्टॉक मार्केट जो है वो सिर्फ वो जो साउथ कोरिया में जो और एशियन मार्केट्स में जो चिप मेकर्स की के लेकर जो हंगामा जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, बाकी कोई कारण नहीं है।
2: AKB, there are two aspects to my question. One is information technology stocks went up by 3.32%, the Nifty IT index, and we saw the shares rising between 4.5 and 3.9%, short covering in this sector. And, you know, these tech stocks, their earnings, the revenue guidance seems to be quite good, including the net profitability. And their earnings are in foreign exchange as well. And there's also the question of the rupee to the dollar. And the dollar index is at 101.561. And what we are seeing right now is also action by the central bank at the same time, because they are saying that the inflows of FCNR, foreign currency non-resident accounts, have actually gone up by $32 billion, because, you know, the interest on these fixed term deposits, which is for 1 to 5 years, is between 3 and 7.4%. So it appears that the foreign exchange earnings of IT companies is a factor in the short covering that we're seeing right now, while at the same time you're also seeing that the rupee is strengthening, and the government is also saying that the central bank is saying that you also have healthy foreign exchange reserves. How do you see paired the rupee to the dollar, while at the same time also look at the IT index?
0: Well, what is happening right now is at one level, you are seeing that India's external sector is getting the benefit of some of the policy measures that were taken a few weeks ago, which is why the FCNRB deposits are expected to flow in. Many of the private sector banks, even the public sector banks, are reporting decent amount of flows coming in. So as a result, India's balance of payment deficit, which was earlier expected or feared to be much larger, which will not be that much. So this is having a positive impact on the rupee, because this essentially means that India has the ability and the wherewithal and the muscle to deal with its import liabilities without much domestic problem. That is one level. And the other level is that you refer to the IT sector's performance. The IT sector's performance, today's stock market, has done very well. They've almost gone up by 3% or so. Now, this is the reason, is because the India's IT sector is dependent on earnings through their services exports and not so much on the AI boom. I mean, what we are seeing globally right now is a kind of almost like a bloodbath. There was a circuit breaker was triggered in the South Korean market.
2: There's a sell-off in those tech shares.
0: No, there was a circuit breaker, which means that if it is crosses 10%, that the trading comes to a halt. So this is what happened, and this was purely because the over exuberance or overconfidence in the chip industry's ability to come in with greater returns, that has been dashed, and the demand for chips, particularly of the Chinese companies' launch of the new product, has also taken a bit of a hit. Whereas in the Indian IT sector has not been influenced by the chip and the AI thing. They are still the old play of services and IT services play, with the global capability center play, which is why the Indian IT sector is still maintaining growth, whereas the globally there is a bit of a mayhem there.
2: There's always a question of valuation. So now you have the IT index showing a high valuation. The RBI is saying that the rupee is currently undervalued, evidenced by the FCNR deposits as well. While at the same time, the Asian markets, the AI related boom is showing that those shares are actually overvalued. So clearly, this is a valuation story going on right now with IT and how the dollar is performing.
0: To a great extent, yes. Don't underestimate also the role that the crude oil prices have played here. And the crude oil prices have also softened considerably in the last couple of days. So that has also contributed to India's external sector scenario or the outlook.
2: Was there a profit booking in the capital goods sector, which fell by 2.4%? Because there is a leading company in the capital goods sector which has given good numbers in terms of revenue, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, margin, order book and net profitability.
0: Whenever a company, in this case the company that you are referring to, if they come up with decent results, profit booking is par for the course. So I won't be ruling that out.
1: AKB, अगर इस पूरे महीने हम जुलाई के महीने में नजर डालें तो एक सेक्टर रोटेशन हमें नजर आया है, चाहे FIIs के नजरिए देखें या DIIs के नजरिए देखें, एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है. और ऐसे समय जब मॉनसून हमारे यहाँ पर, अभी मॉनसून का सीजन है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है ये निवेश की दृष्टि से सही है या इसका लोगों को फायदा होगा जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं?
0: देखिए, बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, तो जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं IPOs के लिए भी हो सकता है, नंबर वन. नंबर टू, जो मॉनसून की जो बात आपने की, मॉनसून की जो हमारी जो डेफिसिट है वो, हालांकि वो 40% डेफिसिट अब नहीं रही है, अब घटकर 14% हो गई थी, फिर अब बढ़कर 18% हो गई है. तो मॉनसून में जो एग्रीकल्चरल की जो एक इम्पैक्ट होने वाली थी वो अभी भी जो लगता है कि थोड़ी बहुत सीमित है. और तीसरी बात ये है कि जो हमारी जो IT सेक्टर जो है उसमें जो एक जोश दिख रहा है वो FIIs को अच्छा लग रहा है. इसीलिए अगर आप जुलाई का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे, FIIs
1: वही बना रहा था,
0: उतनी तरह पुल आउट नहीं किया उन्होंने
1: जी.
0: उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और शायद यही मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पोररी चीज़ है, क्योंकि ज्यों ही आप देखेंगे फेड पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तभी तो FIIs का रुख शायद बदल सकता है. तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी, ये सेंटिमेंट बरकरार रहे उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह.
1: करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते तो फेड का जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
0: इम्पैक्टफुल तो जरूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में. FIIs से पुल आउट जरूर होगा और स्टॉक मार्केट को उसको उसकी जो डेवलपमेंट जो है, इम्पैक्ट है, उसको संभालना पड़ेगा
1: जी. आगे बढ़ते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं. कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है.
2: AKB, my question is on the FMCG sector. We're seeing that the rains are back in the month of July after deficient rains in the month of June. We are seeing in agriculture the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
0: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted. And if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well. But if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back,

0: outlook is not that bad.
1: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that, you know, capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty Index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
0: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
2: आगे बढ़ते हैं. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं. इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था. हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई. बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है. जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई. वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है. एकेबी, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
0: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है. जून का महीने का नंबर है ये
2: जी.
0: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%. और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी, बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
2: जी.
0: मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक हम एक सर्ज देखते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं. और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है, वो उसमें ज़रा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है. पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस IIP का जो परफॉर्मेंस है, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आशाजनक.
2: AKB, इसमें पावर सेक्टर पे अगर हम नज़र डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
0: जो ये जो पावर की जो IIP में जो आप देख रहे हैं, वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं
2: जी.
0: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है, ज़्यादातर कंपनियाँ वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है, तो उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर.
1: Just my question on manufacturing, we have the figures for the month of July, PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
0: Well, I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple

0: mobile phone manufacturing through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread, and it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth, it should be in double digits. So this is, that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे. इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. ये इस साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया. ताइवान का ताएक्स आज 4.6% से ज्यादा टूट गया. जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया. हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा. एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी. लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट, एक बड़ा नंबर है. बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला है. तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है, आने वाला है?
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है. ये जो एग्जुबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी. पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी रिविजन हुई है. उस रिविजन से जो जिस डिमांड के तरीके स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी, उसमें एक धक्का आया है. और मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर. और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है, उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है.
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz, where 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it's very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texan crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And so therefore, that's the way it will go on.
2: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,41,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी. एकेबी, कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है, और जो भी जिस तरह की स्थिति है उनका कैसा असर है उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी. डिमांड बढ़ने वाली है, और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि इनके जो येलो

0: जो है इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और इनके दाम भी
1: जी
0: थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
1: एकेबी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड मार्जिनली डाउन। सेंसेक्स ड्रॉप 70 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,985। India's industrial output grows by 7.3% in June this year, and most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। द लोकसभा टुक अप द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment 2026 bill incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special task force fast courts for the court day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects the government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP KC Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Bansuri Swaraj, Tejasvi Surya of the BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP, SP, MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiva Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP KC Venugopal, S. Venkatesan of CPIM, Gurumurthy Maddila of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP ET Mohammad Bashir, JMM's

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। नमस्कार जी। हाँ, दिन की हलचल थम चुकी है। देखिए कहीं आसमान की तरफ देखिए जरा, कहीं चांद रात को आसमान से झांक तो नहीं रहा। तारे खामोशी से अपनी कहानी तो नहीं कह रहे। हवाओं में घुली है एक मीठी सी खुशबू। जी हाँ, आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की भागदौड़ को हम और आप यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने दिल की धड़कनों को थाम कर पुरानी यादों, मोहब्बत के कहे अनकहे सिलसिलों और एहसासों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो तो याद बनकर धड़कन में बस जाते हैं, जैसे चांद का बदलना और मौसम का बदलना, लेकिन एहसास का ना बदलना, क्योंकि ये प्यार वाले एहसास कभी नहीं बदलते। किसी की मुस्कान, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो इस खामोश चांदनी से सजी रात में चलिए हम और आप सुनते हैं ये नगमा।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ बातें होठों तक आकर भी कहीं नहीं जाती, इसीलिए दिल उन अल्फाज को कहीं ना कहीं सहारा देता है अल्फाजों के माध्यम से या फिर गीतों, गजलों या शायरी के माध्यम से। एक खत में सिर्फ स्याही नहीं होती बल्कि उसमें होता है इंतज़ार, धड़कने, ढेर सारे अनकहे जज्बात लिखे होते हैं उसमें। और जब कोई रात ऐसी हो जहाँ पर चांदनी रात हो या खामोश रात हो, तब ऐसे में दिल के पन्ने जब हम पलटने लगते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए अपने दिल की बात खत में लिखी है तो ये नगमा ज़रूर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, मिला एक और नया सिलसिला कहानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बड़के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय।

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बैना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बैना।

शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले, हम ही को मुड़ के न देखा, हम ही से कुछ न कहा, इस एहतियात से हम जिंदगी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले, शहर के साथ चले रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले।

0: अगर बात मोहब्बत की जाए तो हमेशा अल्फाज से शुरू नहीं होती, कभी कभी सिर्फ दो नज़रें टकरा जाती हैं और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है। और ऐसे में जब किसी की आंखों का ख्याल आ जाए तो चांदनी रात में भी दिल मुस्कुराने लगता है और तारे भी कहीं ना कहीं हसीन लगने लगते हैं। ये उन चंचल निगाहों में एक ऐसा जादू होता है जो पल भर की मुलाकात को उम्र भर की याद बना देता है।
1: लागा गोरी गुजरिया से

थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन घा। आँख मिल जई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए।
1: इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्यभर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गोयन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, इस वक्त मुझे तुझसे सरोकार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर उस पार भी होगा मगर इस पार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है।

अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अगर यूं ही दिल ये सताता रहेगा तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी ना कभी दिल किसी एक ऐसे इंसान के करीब बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ रहकर जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो प्रेम है, सम्मान है, और वो एक ठंडक है जो हर गर्मी से राहत देती है। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिल्म है दादी माँ, आवाजें हैं मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि दिल की सबसे सच्ची बातें अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं, आंखें कहती हैं। कभी एक नजर जब मुस्कुरा उठती है तो कभी वही नजर दिल के सभी राज भी पढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आंखों की तलाशी ले रही है, हर धड़कन में एक ही नाम शायद ढूंढ रही है। तो अगर आपकी निगाहें भी किसी एक ऐसे ही चेहरे पर ठहर जाती हैं, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खामोशी से आप पर अपना असर दिखा रही है। तो इश्क की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें ही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आंखों की तलाशी पर एक ऐसा ही गीत। फिल्म है दिल और मोहब्बत, आवाज है महेंद्र कपूर साहब की।

फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं। हर घड़ी जागता रहता है।

दुखों का सूरज। नींद आती है मगर रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, दुनिया को कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ दिल को एक पनाह चाहिए होती है। जहां शिकायतें नहीं होती, जहां सिर्फ अपनापन होता है, ऐसे एक रिश्ते की लोगों को दरकार होती है। जहां चांद अपनी चांदनी को खामोशी से अपनी बाहों में समेट लेता है, वैसे ही हर दिल ये चाहता है कि कोई अपना हो जो हमारे दिल की बातों को सुने, एहसास को छुपा ले। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, फिल्म है ममता, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें कीं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए। तूफान ने बाहें फैला दी जिस वक्त किनारे याद आए। दीवार से लगकर सोचूं कि उम्मीद का सारा दिन गुजरा, जब रात हुई हमको भी सब ख्वाब हमारे याद आए। कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब लोग चारों तरफ होते हैं लेकिन दिल फिर भी वीरान महसूस करता है। वो तन्हाई, वो बेचैनी और उन कहे अनकहे जज्बात को अगर कोई समझ सकता है तो शायद वो कोई अपना ही होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि उस दौरान कोई अपना साथ हो। तो ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा गीत जिसने आपकी उस तन्हाई, बेचैनी और अनकहे जज्बातों को समेट लिया है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि उन दास्तानों से बढ़कर दास्तान है, वो एहसास है इसमें जिसमें घुलकर आप अपनी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ये धुन जो हमारे रूह तक उतर जाती है, सुनते हैं कुछ अधूरे ख्वाबों को, कुछ अनकही बातों को और कुछ मीठी यादों को याद करते हैं।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है ना, तो दिल को ना वो उम्र याद रहती है ना दुनिया की कोई रस्म। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उस पल को थोड़ा और जी लिया जाए। और जब दिल बेकाबू होने लगता है, तब प्यार से कई लफ्ज कई बातें दिल से उठती हैं। तो आज एक ऐसा ही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बड़ी ही मासूमियत से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, जिसमें मीठी बेताबी भी है और पहली मोहब्बत की वो कशिश, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। और इस गीत को सुनते ही लोगों की जबान पर, होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। तो चलिए सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ। तेरी यादें हैं शब बेदारियाँ हैं आँखों को शिकायत जानता हूँ। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ।

वो आएगा दिल से दुआ तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो, मिलेगा कोई बन के उनवान भी, कहानी की तुम इब्तदा तो करो। तुम्हारे करम से है ये जिंदगानी, मैं बुझ जाऊंगा तुम हवा तो करो। हजारों मनाजिर निगाहों में है, रुकोगे कहाँ फैसला तो करो। वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो।

और आज सुरमई में चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं, तो अब चलते चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मनहर और सुखविंदर की आवाज में।

और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

जब दिलों में सच्चा प्यार बस जाता है तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। मोहब्बत अपने भरोसे हर इम्तिहान को मुस्कुराकर पार कर लेती है।

सच्चा इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिल की सबसे खूबसूरत इबादत है। इसमें चाहत भी है, सम्मान भी है और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ कोई अपना हो। एक सच्चा हमसफर हर खुशी को दोगुना और हर गम को आधा कर देता है।

प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। किसी अपने की मुस्कान और साथ ही जीवन को हर पल जीने का नया कारण दे देता है प्यार। और जब प्यार जीवन में आ जाए तो जिंदगी उसके बिना अपने आप ही पूरी सी लगने लगती है।

कभी कभी किसी की एक झलक ही दिल की धड़कनों को नई रफ्तार दे देती है। लगता है जैसे रात की खामोशी में, लगता है जैसे रात की खामोशी में चांद खुद मुस्कुराने चला आया हो।

दिल की बातें शब्दों से कम, एहसासों से ज्यादा कही जाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगे तो हर धड़कन एक मीठी दास्तान बन जाती है।

और समय भी कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप बने रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ और मैं जल्द वापस आऊंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए छोड़कर जा रहे हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत दुनिया में सीफेयरर्स यानी नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। BIMCO ICS सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो गई है। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। संगठन की दक्षिण एशिया की कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक इसाबेल लासी ने कहा कि रावलकोट में सुरक्षा बलों द्वारा कथित घातक बल प्रयोग की स्वतंत्र पुष्टि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं के बंद होने के कारण नहीं हो पा रही है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several insignificant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track codes for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Bansuri Swaraj and Tejaswi Surya of BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP SP MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiv Sena, and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP K.C. Venugopal, S. Venkateshan of CPIM, Gurumurthy Madla of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Mohammed Bashir, JMM's Vijay Kumar Hansdak, CPI MP K. Subbarayan, JDS MP M. Malesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi, and Harsimrat Kaur Badal of SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the house to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protest over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records. The court asked authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the protests. Three-judge bench headed by Chief Justice Suryakant was hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations. State governments of Maharashtra, Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against students who have recently participated in the protests on the NEET paper leak issue. The move is in line with the center's guarantee that no legal action will be taken against students who participated in the protests. Meanwhile, in consonance with the Supreme Court order, the government of West Bengal has decided not to take coercive measures against students who participated in the protests. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries at his residence earlier yesterday. The Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. At the Commonwealth Games, India's Sri Hari Nataraj qualified for the semi-final of men's 100-meter backstroke swimming competition at Glasgow in Scotland yesterday. Para-swimmers RVV BK Budigina and Ali Imam also qualified for the men's 50-meter freestyle S13 final. Athlete Vishal TK progressed to the semi-finals of men's 400-meter race. In boxing, Indian boxer Priya Gangest stormed into the women's 60kg semi-finals after defeating Scotland's Niamh Mitchell in the quarter-finals. She joined the fellow pugilist Preeti Pawar in assuring a medal for India. With the win, the Indian boxer progressed to the semi-finals and moved within one victory of securing a place in the gold medal bout. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज में सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार रामलाल और गीतकार हसरत जयपुरी।

आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म नई इमारत से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार बपी लहरी और गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना मन फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार सजीव दर्शन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश

0: ते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया है। प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखी हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries for the government at his residence yesterday. During the meeting, Prime Minister Modi reviewed the future action agenda of ministries and departments, dealing with finance and economy, commerce and industry, and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with the

समय हो गया है 5:11 और 9 सेकेंड और ये समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

सत्य हमारे जीवन की शक्ति है, शिव कल्याण का मार्ग, और सुंदरता हमारे श्रेष्ठ कर्मों में बसती है। जब विचार सच्चे और कर्म पवित्र हों, तब जीवन स्वयं एक सुंदर गीत बन जाता है।

जिंदगी की असली बहार तब खिलती है जब हम अपनी मुस्कान, अपनापन और खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है और यही जीवन की सबसे सुंदर दौलत है।

जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान जगाने में है।